FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 22वीं तिथि तदनुसार 12 जून सन 2026 प्रातः के 5:57:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ हो रही है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेहे के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ

0: ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। कार्यक्रम विचार बिंदु में आइए सुनते हैं संत तुकाराम के विचार।
2: ये अनुभव है कि संसार ईश्वर स्वरूप है, उसी के पास ईश्वर है और उसका दर्शन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दुखी लोगों को जो अपनाता है वही साधु है, देव वहीं पर है। सज्जनों का चित्त बाहर भीतर एक सा रहता है और मक्खन सा मृदु रहता है। जो जगत के आघातों को सहता है वही संत है। संतों के पास अवगुण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे चंदन हर ओर से ही सुगंधित होता है अथवा शक्कर मीठी ही रहती है, पारस का कोई भी अंग सुवर्ण बनाने के गुण से हीन नहीं रहता, उसी प्रकार खोज करने पर भी संतों के पास अवगुण नहीं मिलते। नम्रता बड़ी अच्छी है, इसके सामने किसी का जोर नहीं चलता। नदी की बाढ़ में बड़े बड़े पेड़ बह जाते हैं पर छोटे पौधे वैसे ही रह जाते हैं। समुद्र की बड़ी लहरें भी आएं पर वे ज्यों के त्यों रहते हैं। मनुष्य इतना पराधीन होते हुए भी कितना अहंकारी है। ज्ञान का अभिमान होने से ईश्वर दूर होता है। बच्चे को ज्ञान होते ही माँ उसे दूर कर देती है। पानी का बूंद मोती बनते ही पानी से अलग कर दिया जाता है। काल पुरुष ने आयु की मर्यादा नियत कर दी है, रोज उसमें कमी ही होती जाती है, पर मनुष्य इसका ख्याल भी कहाँ करता है। मन में बसे लोभ अरुआसा, लोभ कहते हैं हर के दासा। इस प्रकार न ईश्वर मिलता है न संसार। जब तक मनुष्य अपनी सब आशाओं का त्याग नहीं करता, अपनी आशाओं का वृक्ष समूल नहीं उखाड़ सकता, तब तक उसे वैराग्य नहीं बनना चाहिए। इससे तो यही ठीक है कि वो गृहस्थ ही बना रहे, नहीं तो न इधर का रहेगा न उधर का। देह रूपी घर छोड़कर बाहर ईश्वर को ढूंढने की क्या जरूरत। देव को मन में न देख तीर्थों में जाकर ढूंढना व्यर्थ है। तुम्हारे अंदर ही परमेश्वर का वास है, जरा आंखें खोलकर देखो। यदि एक बार ये ज्ञान हो गया तो मिथ्या संसार कल्पना बाधा नहीं दे सकती। पूर्ण प्रकाश का सुख भोगने वाले उस पुरुष के सम्मुख दृश्य वस्तुओं का आभास जरा भी नहीं ठहर सकता। उस चैतन्य स्वरूप पुरुष को भोग भोग्य और भोक्ता आदि चिंताएं नहीं सता सकती। जब आग में धातु पड़ती है तो पिघलकर उसी में लीन हो जाती है। वो स्वयं शुद्ध होती है और उसका नाश कोई भी नहीं कर सकता। नदी में जब बाढ़ आती है तब जहाँ बड़े से बड़े पेड़ भी उखाड़ कर फेंक दिए जाते हैं, ऐसी लहरों में भी लावा का घोंसला मजे से रहता है, नदी का पूर उसे उखाड़ नहीं पाता। जो हाथी शत्रु सैनिकों को कुचल डालता है उसी के पैर तले चींटी नहीं मरती। ईश्वर सभी जगह विद्यमान है। माया और ब्रह्म के झगड़े से छुटकारा पाना हो तो ईश्वर में लीनता के सिवा और कोई चारा नहीं। ब्रह्म और माया एक दूसरे से ऐसे संबद्ध हैं जैसे शरीर और छाया। छाया शरीर को छोड़कर नहीं रह सकती, पर यदि शरीर नम्र होकर जमीन पर दंडवत गिर पड़े तो छाया भी उसी में लीन हो जाती है। इसी प्रकार परमेश्वर में लीन होते ही भेदभाव की माया सहज ही दूर हो जाती है। मनुष्य जितना ही ऊंचा होता है उतनी ही ये माया बढ़ती जाती है और जितना वो नम्र होता है उतनी ही माया कम होती जाती है। इसी मन स्थिति का नाम शरणागति है। कर्म का अर्थ यज्ञ आदि वेद विहित कर्म नहीं, अपितु कर्तव्य पालन, ईश्वर सेवन आदि है। ज्ञान का अर्थ है अपने को पहचानना। अनासक्त कर्म और जीव तत्व ज्ञान के बाद मनुष्य के चित्त में भगवत भक्ति उत्पन्न

0: होती है, यही शरणागति है और इस शरणागति में ही सुख है।
1: कार्यक्रम विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे संत तुकाराम के विचार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

आज का दिन है संतोष की देवी माँ संतोषी को याद करने का। गणेश जी की ये प्यारी पुत्री हमारे जीवन के हर असंतोष और दुख को दूर करती हैं। माँ बस सच्चे भाव से ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए आज अपने दिल में संतोष का भाव लाएं और माँ के चरणों में वंदन करें।

अज्ञानता का अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, माँ शारदा के ज्ञान की एक छोटी सी किरण ही उसे दूर करने के लिए काफ़ी है। जिनके हाथों में वीणा और वरदान है, वही हमारी बुद्धि को सही दिशा प्रदान करती हैं। तो आइए इसी पावन भाव के साथ करते हैं माँ शारदा की वंदना।

0: सागर में रहने वाली मछली को उस सागर से ना तो भय होता है ना ही डूब जाने की आशंका। इसी तरह जब हम उस सर्वोच्च शक्ति के सागर के अंश बन जाते हैं तब हमें ना तो किसी स्थिति से भय होता है और ना ही चिंता की आशंका, क्योंकि वो सागर ही हमारा जीवन बन जाता है। उसके वेग को रोकने की शक्ति संसार के किसी भी तूफान में नहीं होती। जितना ही अधिक तूफान आएगा सागर की लहरों की तरह उतना ही अधिक वेग होगा हमारे जीवन में।
1: समाया जा सकता है उसको सब गुणों सहित अपने इस जीवन में। शर्त बस इतनी है, घट भरा होना चाहिए, भक्ति जल से पूरा, रिते कटोरे से

आइए अब चलते हैं देवों के देव महादेव की शरण में, जिन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए विष का प्याला हंसते हंसते पी लिया और नीलकंठ कहलाए। उनके इस पावन और दयालु स्वरूप की महिमा जितनी भी गाई जाए उतनी ही कम है। तो आइए मन को शिव जी की भक्ति में लीन करते हैं और सुनते हैं ये सुंदर भजन।

कार्यक्रम आराधना में आइए अब चलते हैं शक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति माँ भवानी के शरण में, जो अपनी ममता और शक्ति से अपने भक्तों के हर संकट को दूर कर देती हैं और उनके जीवन को खुशियों से भर देती हैं। माँ का ये भवानी स्वरूप हम सब में एक नई ऊर्जा और भक्ति का संचार करता है। तो आइए श्रद्धा भाव से सर झुकाते हैं और सुनते हैं माँ की महिमा से भरा ये सुंदर भजन।

आराधना कार्यक्रम में आज आपने सुने साधना सरगम, सुरेश पाटकर, अनूप जलोटा, शर्मा बंधु और पंडित भीमसेन जोशी के गाए कुछ भक्ति गीत। इसी के साथ आराधना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आज की बात। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात के साथ मैं हूं सौम्या कांडपाल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है 12 जून। आइए डालते हैं एक नज़र आज के दिन की प्रमुख घटनाओं पर। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। साल 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस दिन की शुरुआत की थी ताकि दुनिया भर के करोड़ों मासूम बच्चों के छीने जा रहे बचपन को बचाया जा सके। ये दिन महज एक तारीख नहीं बल्कि उन नन्हे हाथों की पुकार है जिन्हें किताबों के बस्ते की जगह कारखानों, ईंट भट्टों और होटलों के बारी बोझ तले दबा दिया जाता है। हमारा देश और हमारा कानून साफ कहता है कि बच्चों के हाथों में औजार नहीं बल्कि कलम और किताबें होनी चाहिए। और आइए अब चलते हैं साल 1975 में, जब भारत की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया जिसने सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया। आज ही के दिन यानी 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल

शाह ने एक ऐसा साहसिक और ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसकी गूंज दशकों बाद आज भी भारतीय लोकतंत्र में सुनाई देती है। अदालत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को चुनावी धांधली और सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का दोषी पाया। इस फैसले के तहत रायबरेली से उनका निर्वाचन अवैध घोषित भी कर दिया गया और उनके 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। न्यायपालिका के इस एक फैसले ने सिद्ध कर दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान और कानून की संप्रभुता सर्वोपरि है। इस फैसले के बाद उपजे राजनीतिक संकट के कारण आगे चलकर देश में 25 जून 1975 को आपातकाल की नींव पड़ी थी। श्रोताओं, अब बात इतिहास की एक ऐसी मासूम लेकिन अमर आवाज की जिसने पूरी दुनिया के अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। आज ही के दिन साल 1929 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में विश्व प्रसिद्ध यहूदी डायरिस्ट एनी फ्रैंक का जन्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के उस खौफनाक दौर में जब तानाशाह हिटलर के नाजियों द्वारा लाखों यहूदियों पर क्रूर अत्याचार किए गए थे, तब एनी के परिवार को 2 सालों तक एक गुप्त कारखाने में छिप कर रहना पड़ा। उस अंधेरी और डरावनी कोठरी में बिताए हर एक पल के दर्द, डर और उम्मीदों को एनी ने अपनी एक छोटी सी डायरी में दर्ज किया। आज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से मशहूर ये किताब नाजियों के जुल्मों का सबसे प्रमाणिक दस्तावेज मानी जाती है। हौसलों और दमन के बीच इसी लड़ाई का एक और गवाह आज का दिन है। साल 1964 में आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार ने मानवता के पैरोकार और महान जननेता नेल्सन मंडेला को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मंडेला पर अश्वेतों के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाने और सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप था। इस फैसले के बाद उन्हें रोबेन द्वीप की एक संकरी जेल में भेज दिया गया, लेकिन हुकूमत की सलाखें उनके फौलादी इरादों को हिला नहीं सकी। पूरे 27 साल जेल की कालकोठरी में बिताने के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा। उनका यही त्याग रंग भेद के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बना जिसने अंततः दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्रता की नई सुबह दिखाई। श्रोताओं, 12 जून की तारीख वैश्विक स्तर पर नागरिक अधिकारों और इंसान की आज़ादी के लिए भी बहुत बड़ी मानी जाती है। साल 1967 में आज ही के दिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने लविंग बनाम वर्जीनिया मामले में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसने सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ कर रख दिया। अदालत ने अंतरजातीय विवाह यानी अलग अलग जातियों और नस्लों के लोगों के बीच शादी पर लगी रोक को पूरी तरह असंवैधानिक घोषित किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार हर इंसान का बुनियादी और संवैधानिक अधिकार है जिसे रंग या नस्ल के आधार पर छीना नहीं जा सकता। साल 1932 में आज ही के दिन भारत के सुप्रसिद्ध मेट्रोमैन ई श्रीधन का जन्म हुआ। श्रीधन साहब देश के एक ऐसे असाधारण और दूरदर्शी सिविल इंजीनियर हैं जिन्होंने कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो जैसी अत्यधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं का सफल नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी बेदाग ईमानदारी, सख्त अनुशासन और तय समय सीमा के भीतर काम पूरा करने की अद्भुत कार्यशैली से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाकर दिखाया। और चलते चलते आज के दिन कला जगत की एक और महान विभूति को नमन करते हैं। साल 2015 में आज ही के दिन चंडीगढ़ के विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन के शिल्पकार और पद्मश्री विजेता नेक चंद सैनी जी का निधन हुआ। नेक चंद जी ने समाज द्वारा बेकार और टूटी फूटी समझे जाने वाली चीज़ों और कबाड़ से एक ऐसा जादुई संसार बनाया जिसे देखने आज भी दुनिया भर के लाखों लोग जाते हैं। आज भले ही हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी कला हमेशा अमर रहेगी। तो श्रोताओं, ये थी आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा। श्रोताओं, हमारा आज का विषय है बाल श्रम निषेध दिवस। पूरी दुनिया में आज के दिन को बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन क्या वास्तव में ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख है या फिर हमारे समाज के अंतःकरण पर लगा वो एक दाग जिसे हम हर साल याद तो करते हैं पर मिटा नहीं पाते। आज का ये प्रसारण किसी उत्सव का नहीं बल्कि हमारी अंतरात्मा को टटोलने का है। आज हम बात करेंगे उन नन्हे कंधों की जो वस्तुओं का बोझ उठाने की उम्र में मजबूरियों और कारखानों का भारी बोझ उठा रहे हैं। साल 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस मुहिम की शुरुआत की थी ताकि दुनिया भर के करोड़ों मासूम बच्चों के छीने जा रहे बचपन को बचाया जा सके। हमारा देश और हमारा कानून साफ कहता है कि 14 वर्ष से

कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार का श्रम या काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, लेकिन कानून की किताबों से इतर जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं तो सुबह के पहले किरण के साथ लाखों मासूम बच्चे स्कूल जाने के बजाय चाय की दुकानों, होटलों और खेतों की ओर जाते दिखाई देते हैं। ये देखना बेहद पीड़ादायक है कि जो हाथ देश की तकदीर बदलने के लिए बने थे वो आज बर्तनों और औजारों से सने हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि एक बच्चा खिलौनों को छोड़कर काम की तलाश में निकल पड़ा? इसका सबसे बड़ा और कड़वा कारण शायद यही है कि गरीबी और लाचारी। कई बार परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी इन मासूमों के कंधों पर इतनी जल्दी आ जाती है कि वे क ख ग घ सीखने से पहले ही पैसों का हिसाब किताब करना सीख जाते हैं। जिस उम्र में बच्चों को परियों की कहानी सुननी चाहिए, खेलकूद का आनंद लेना चाहिए, उस उम्र में वो समाज के सबसे क्रूर चेहरे का सामना करते हैं। वे काम करते हैं ताकि उनके घर का चूल्हा जल सके, लेकिन इसके बदले में अपना पूरा जीवन, अपनी सेहत, अपना सुनहरा भविष्य हमेशा के लिए दांव पर लगा देते हैं। सवालों के सिलसिले में ये सोचना भी बेहद ज़रूरी है कि इस अंधकार को मिटाने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है। सबसे पहले और बुनियादी ज़रूरत है सख्त कानून और उसका कड़ाई से पालन। बाल श्रम करवाने वाले नियोक्ताओं और ठेकेदारों के खिलाफ त्वरित और सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में एक बड़ा संदेश जाए। इसके साथ ही सरकार को गरीब परिवारों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार के अवसर भी बढ़ाने होंगे, क्योंकि जब तक किसी घर में भुखमरी होगी तब तक मजबूरी में बच्चों को काम पर भेजा जाता रहेगा। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के दायरों को और अधिक सुदृढ़ करना होगा ताकि हर वंचित बच्चे तक स्कूल की पहुंच आसान हो सके, और मिड डे मील जैसी योजनाओं का स्तर इतना बेहतर होना चाहिए कि भोजन के अभाव में कोई बच्चा पढ़ाई न छोड़े। श्रोताओं, अगर हम किसी भी स्थान पर किसी मासूम का शोषण होते देखते हैं तो अपनी आंखें मूंदने के बजाय तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर इसकी सूचना देकर हम अपनी नागरिक जिम्मेदारी निभा सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस दिशा में प्रयास नहीं हो रहा है। भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना जैसी कई बेहतर योजनाएं चलाई हैं ताकि बच्चों को स्कूल तक लाया जा सके। कई गैर सरकारी संगठन, समाज सेवक भी दिन रात इन बच्चों को रेस्क्यू करने और इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये प्रयास उम्मीद की किरण जगाते हैं कि अगर हम सब मिलकर एक ठोस कदम उठाएं तो वो दिन दूर नहीं जब हर बच्चे के चेहरे पर बेफिक्र मुस्कान होगी और उनके हाथों में औजारों की जगह उनकी पसंदीदा किताब होगी। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की विविधा। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में।

0: सुरक्षिता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 58-उत्तरैकशततम नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलतूर भाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित एआई परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य संबद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकरः चिन्तां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्रात् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति, यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्री गोयलः तत्रत्य भैषज उद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन युयू इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानंदः तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना

0: को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है रूपरेखा हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। रात्रि 8:30 पर सुनेगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। ये कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद 7:10 पर आप सुनेंगे श्री राम चरितमानस से आज का प्रसंग। 7:45 पर होगी गांधी चर्चा। दोपहर 12:30 पर महिलाएं सुनती हैं अपना कार्यक्रम घर संसार। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस विषय पर नीलिमा भट्ट, सामाजिक कार्यकर्ता व कार्यकारिणी समन्वयक अमन संस्था के कोऑर्डिनेटर अल्मोड़ा से गीता कनवाल की क्षेत्र संकलित बातचीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं दिन में 1:30 पर। खेती की बातें होंगी दिन में 2:30 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे बकरियों में होने वाले रोग विषय पर डॉक्टर दीपिका बिष्ट की पूर्व प्रसारित वार्ता।

युववाणी। हमारे युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम सुनते हैं शाम 5:15 पर, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा बाल श्रम निषेध दिवस। इसी कार्यक्रम में सिने जगत से के अंतर्गत हमारे आज के कलाकार होंगे गीतकार प्रेम धवन। उत्तरायण होती है इस कार्यक्रम में आपसे मुलाकात शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे खेतों में ना कारखानों में बच्चे जाएं शिक्षालयों में विषय पर श्रीमती ममता पाटनी की वार्ता। हमारे ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम ग्राम जगत सुनते हैं शाम 7:00। इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आज की आवश्यकता। इसी कार्यक्रम में आज चर्चाएं होंगी प्रमाणित बीजों का प्रयोग व उसके लाभ तथा परंपरागत कृषि विकास योजना, और इसी कार्यक्रम में सुनेगा रसायन मुक्त खेती विषय पर भेंट वार्ता। शास्त्रीय संगीत का आनंद आप लेते हैं प्रातः 8:30 पर। लोकगीतों के कार्यक्रमों में लोकमंजरी सुनेगा प्रातः 7:30 पर। सुबह 11:30 पर लोकसुर, उत्तराखंड के लोकगीत दिन में 2:00 और शैल स्वर शाम 5:05 पर। श्रोताओं गीतों और गजलों के कार्यक्रमों में सबरंग आप सुनते हैं सुबह 10:05 पर, सुगम संगीत दिन में 1:15 पर और रात्रि 10:00। इसके अलावा सबरस सुनिएगा रात्रि 8:00। फिल्म संगीत के कार्यक्रमों में हमारे केंद्र से आज आप सुनेंगे प्रातः 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। सुरबहार सुबह 10:35 पर। आज इस कार्यक्रम में एक ही कलाकार के अंतर्गत हमारी आज की अदाकारा होंगी श्रीदेवी। सुबह 11:00 सैनिकों के लिए, दोपहर 12:00 मेरी पसंद, 2:45 पर एक ही फनकार, अपराह्न 3:00 सदाबहार फिल्मी नगमे, शाम 7:40 और रात्रि 10:30 फिल्म संगीत, रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष और रात्रि 9:30 आपके अनुरोध पर। तो श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग।

बेटी की विदाई का दृश्य जितने आनंद और संतोष का अवसर होता है उतना ही करुण और मार्मिक भी। विवाह के हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के मांगलिक समापन के बाद विदाई की घड़ी आ ही पहुंचती है। श्री राम भाइयों सहित वधुओं की विदाई के लिए राजा जनक के महल में पधारे हैं। उन्हें देखने के लिए नगर के अगणित नर नारी दौड़ पड़े हैं। सखियां इन प्रिय पाहुनों के रूप को आंखों में बसा लेना चाहती हैं। रूप के समुद्र सरीखे सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं न्योछावर हुई जाती हैं। जामाताओं को स्नान भोजन कराया गया, किंतु सारा उल्लास महाराज के अयोध्या लौट जाने का समाचार सुन जैसे उदासी में परिवर्तित हो गया। स्नेह से शिथिल हो गई माताएं, पुत्रियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाने लगीं। सखियों ने पुत्रियों से बार बार भेंटती माताओं को जब अलग किया तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी जन्मे बछड़े से गाय को अलग कर दिया हो।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। गायक थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह, संगीत था सतीश भाटिया का। इसी के साथ श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया। हिमालयी राज्यों के लिए विशेष नीति समर्थन और दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता पर दिया जोर। हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और जन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 115 करोड़ रुपए की परियोजना की को मंजूरी दी। और देहरादून में मानसून पूर्व तैयारियों पर केंद्रित 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रही हैं। उनके आगमन को लेकर शासन प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। यहां वे 132 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। दौरे के दूसरे दिन कल राष्ट्रपति भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून में आयोजित पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने राष्ट्रपति निकेतन परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने भी विशेष ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान विभिन्न मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने हिमालयी राज्यों के लिए जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी संरक्षण और आपदा प्रबंधन

0: से जुड़े विषयों पर विशेष नीति समर्थन तथा दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मानव संसाधन विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और युवा सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों की आधुनिकीकरण, स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लासरूम और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस और सेमीकंडक्टर तकनीक जैसे क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा और सेवा के क्षेत्र को जोड़ते हुए समन्वित विकास मॉडल पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती, बागवानी, औषधीय पौधों, योग एवं वेलनेस, पर्यटन और ग्रीन एनर्जी को विकास के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही राज्य को नॉलेज बेस्ड और वेलनेस इकोनॉमी के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करने का प्रयास भी जारी है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 12 वर्षों के कार्यकाल के लिए बधाई दी और अगले वर्ष उत्तराखंड में आयोजित होने वाले कुंभ मेला तथा नंदा राजजात यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से निशी भाटिया।
0: उत्तराखंड में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने के लिए रेरा में व्यापक सुधारों की तैयारी शुरू हो गई है। सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में परियोजनाओं की निगरानी, शिकायत निस्तारण और बिल्डरों की पंजीकरण व्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, असम और हिमाचल प्रदेश की रेरा व्यवस्थाओं का अध्ययन कर उत्तराखंड में बेहतर व्यवस्था लागू करने के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही रेरा के ऑनलाइन पोर्टल को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रणाली से जोड़ने का सुझाव दिया गया, जिससे परियोजना पंजीकरण और अनुमोदन प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी हो सके। बैठक में यह भी प्रस्ताव रखा गया कि रेरा पंजीकरण के बाद स्वीकृत नक्शे में किसी भी बदलाव के लिए परियोजना के कम से कम 2/3 आवंटियों की सहमति अनिवार्य हो। इसके अलावा बिल्डरों और प्रमोटरों की पूर्व परियोजनाओं का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया। समीक्षा के दौरान राज्य में बढ़ रही अवैध प्लॉटिंग और बिना स्वीकृति के निर्माण गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की गई। अधिकारियों ने तय किया कि विकास प्राधिकरणों द्वारा की गई सीलिंग, ध्वस्तीकरण और अन्य कार्रवाई की जानकारी रेरा को भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि खरीदारों को संभावित जोखिम वाली परियोजनाओं की जानकारी मिल सके।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने एकीकृत स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट तथा जन स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के लिए 115,61,00,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। यह परियोजना पूरी तरह केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत संचालित की जाएगी। इसका उद्देश्य कुंभ मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना है।
3: योजना के तहत मेला क्षेत्र में 13,915 शौचालय, 8,065 यूरिनल और 2,000 स्नान गृह स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 4,848 कूड़ादान, 31.38 लाख लाइनर बैग, 491 अपशिष्ट संग्रहण वाहन, 2 ट्रैश बूम और 15 घाट सफाई मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वच्छता व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए स्प्रेइंग मशीनें, फॉगिंग मशीनें, घास काटने की मशीनें, ट्रैक्टर, पीपीई किट और प्राथमिक उपचार किट सहित अन्य आवश्यक संसाधनों की भी व्यवस्था की जाएगी। योजना में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ट्रांसफर स्टेशन सुविधाओं, गैस आधारित शवदाह और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही निगरानी और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए क्लाउड आधारित डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
0: देहरादून में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में कल से मॉनसून पूर्व तैयारियों पर केंद्रित 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों तथा विशेषज्ञों ने भाग लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: कार्यक्रम में राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी ने कहा कि आपदा प्रबंधन में केवल सरकारी तंत्र ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने आधुनिक तकनीकों के साथ स्थानीय समुदाय के पारंपरिक ज्ञान को भी आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण बताया। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्विकास सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदा प्रबंधन एक बहुविभागीय विषय है और इसके लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा के दौरान भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूर्व चेतावनी प्रणाली, बाढ़ प्रबंधन, शहरी बाढ़, जोखिम मूल्यांकन, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियां, उभरती तकनीकों और बहु एजेंसी समन्वय जैसे विषयों पर विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सचिव विनोद कुमार सुमन ने नदी, नालों, झरनों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर रील और सेल्फी बनाने के बढ़ते चलन पर चिंता जताई। उन्होंने सभी जिलों को दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान कर उन्हें नो सेल्फी जोन घोषित करने तथा वहां चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से निशी भाटिया।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि केंद्र सरकार की जनधन, उज्ज्वला और मुद्रा जैसी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों तक पहुंचा है। उन्होंने बताया कि जनधन योजना के तहत उत्तराखंड में 40 लाख से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जबकि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 5 लाख से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और जन कल्याणकारी नीतियों के कारण देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
4: मैं कम से कम 36 लाख लोगों को इसका मुद्रा योजना का लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अपनी गैस सिलेंडर की उसमें 10 करोड़ 57 लाख कितने लोगों को गैस कनेक्शन मिले है और उत्तराखंड में 5,05,000 कितने लोगों को गैस कनेक्शन मिले है।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया। हिमालयी राज्यों के लिए विशेष नीति समर्थन और दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता पर दिया जोर। हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और जन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 115 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी। और देहरादून में मॉनसून पूर्व तैयारियों पर केंद्रित 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाहन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक पंजरी। आइए कार्यक्रम में आपको अब सुनवाते हैं काशीदत्त शर्मा का गाया ये लोकगीत।

काशी दत्त शर्मा के गाए इसी लोकगीत के साथ अब यहीं पर संपन्न होता है कुमाऊं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं गांधी चर्चा।

0: कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए बापू के विचार।
1: शंकराचार्य का एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि समुद्र के किनारे बैठकर कोई घास के तिनके से समुद्र का पानी उलीचना चाहे तो इसके लिए उसे कितना धैर्य और समय चाहिए। ठीक उतना ही समय और धैर्य मन को

0: सुधारने में यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है। लगता है आप उतावले हो चले हैं। वैसे मृत्यु के भय से तो मैं भी मुक्त नहीं हो पाया हूँ। यद्यपि मैंने इस संबंध में बहुत चिंतन किया है, पर तो भी मैं अधीर नहीं हुआ हूँ। मैं सतत प्रयत्न में हूँ और अवश्य ही किसी दिन मुक्त हो जाऊंगा। प्रयत्न का एक भी सुअवसर आप हाथ से न जाने दें, हमारा यही कर्तव्य है। परिणाम की इच्छा या प्राप्ति तो प्रभु के अधिकार की बात है, और इसलिए ये बखेड़ा क्यों? बच्चे को दूध पिलाते समय माता उससे होने वाले परिणाम का विचार नहीं करती, पर तो भी उसका परिणाम तो होता ही है। मृत्यु के भय को दूर करने के लिए, मनोविकारों को नष्ट करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। ऐसा करने से वे दूर हो जाएंगे, नहीं तो वो बात चरितार्थ होगी कि बंदर का स्मरण न करने के प्रयत्न में उसका ख्याल बना ही रहा। हम लोग पाप योनि से उत्पन्न हुए और पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप ही देहाधीन हुए हैं। आप ये सारा मल पल भर में कैसे धो डालने की अपेक्षा करते हैं? सुगम पड़े उस ढंग से रहो, जैसे तैसे प्रभु को लहो।
1: जिस तरह ईसा को इस सत्य का विश्वास था कि ईश्वर संपूर्ण शिव है, उसके जीवन में प्रभु इच्छा का प्रकाश है और वो अपने पिता प्रभु की इच्छा के अनुसार ही चल सकता है, पापी दुखी और बीमार की सेवा ही उसका काम है, उसी प्रकार सत्य ईश्वर है। सत्य क्या है? सत्य भीतर की वाणी है, किंतु विभिन्न व्यक्तियों की सत्य विषयक कल्पना अलग अलग है, क्योंकि मानव मन का विकास सबके लिए एक जैसा नहीं है। जो एक के लिए सत्य है, दूसरे के लिए असत्य हो सकता है। ये साफ बात है कि आदमी आत्मनियंत्रण और आत्मानुशासन के द्वारा साधना के स्तर पर पहुंचे, जहां वो अपने भीतर की वाणी को सुन सके, पहचान सके। इस तरह विज्ञान के प्रयोगों को करने की योग्यता विज्ञान के अमुक शिक्षण के बिना असंभव है, उसी प्रकार आध्यात्मिक प्रयोग की योग्यता के लिए उस क्षेत्र के कतिपय अनुशासन अनिवार्य हैं।
0: तुलसीदास भी कहते हैं कि संकट हो या न हो, पर राम नाम का जप निरंतर जारी रखो। ऐसा करने से ही हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, और हमें जो स्वार्थ सिद्ध करना है वो यही है। अतः जप निरंतर चलता रहे। और राम कौन है, ये तो हमें स्वयं सोचकर निर्णय कर लेना है। राम तो निरंजन है, निराकार है। राक्षसी वृत्तियों का समूह रूपी जो रावण है, दैवी वृत्तियों के अनेक शस्त्रों द्वारा उसका संहार करने वाली शक्ति ही राम है। इस शक्ति की प्राप्ति के लिए स्वयं राम को भी 12 वर्ष की तपश्चर्या करनी पड़ी। अस्तु, आप मन और तन दोनों को एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय न रहने दें, दोनों ही को उत्साह पूर्वक कार्य में लगाए रहें। इसी से सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे। बाकी प्रभु पर तो दृढ़ विश्वास बनाए ही रखना चाहिए। मुझ पर भरोसा करने में तो कोई साहस नहीं है। हृदय पवित्र होना चाहिए। विकार इंद्रियों से विकार को बचाने का उपाय यही है। पर हृदय है क्या चीज, इसे पवित्र कब माना जाए? हृदय स्वयं आत्मा है या आत्मा का स्थान है। इसका पवित्र हो जाना ही आत्मज्ञान की प्राप्ति है। इसके पवित्र हो जाने पर इंद्रियों के विकार आदि ठहर ही नहीं सकते। लेकिन साधारण रूप में हम ऐसा मानते हैं कि हृदय को पवित्र करने का प्रयत्न करना ही हृदय का पवित्र हो जाना है। मुझे आपसे स्नेह है, इसका मतलब इतना ही हो सकता है कि मैं इस स्नेह को बनाए रखने में प्रयत्नशील हूं। प्रेम की वृत्ति यदि अखंड हो जाए तब तो मैं ज्ञानी ही हो गया, पर मैं ज्ञानी तो नहीं हो पाया हूं। जिस किसी व्यक्ति के प्रति मेरा सच्चा प्रेम होगा वो मेरे कथन अथवा हेतु के अर्थ का अनर्थ कदापि नहीं करेगा और वो मेरी उपेक्षा तो कर ही नहीं सकेगा। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि यदि कोई मनुष्य हमें अपना शत्रु मानता है तो इसमें सर्वप्रथम दोष तो हमारा ही है। इसलिए पूर्ण रूप से हृदय की पवित्रता तो अंतिम स्थिति चरम स्थिति है। इस बीच जो जो हमारी अंतर की पवित्रता में वृद्धि होगी विकारों का शासन होता जाएगा। इंद्रियों में तो विकार है ही नहीं। क्षण मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन अथवा मोक्ष का कारण है।
1: और अब प्रस्तुत है एक भजन।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है,

0: उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
0: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहाँ वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर

0: ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितुवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और विल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोडमैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पश्चिम पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Centre signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
3: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over rupees 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
2: Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma said that boundary issue between Assam and Nagaland is a long-standing issue due to which the natural resources lying in the area could not be utilized for the nation.
4: In the area, we see immense potential of hydrocarbon at the initiative of Union Home Ministry, particularly

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन मंसूर और राजशेखर मंसूर का राग शुद्ध नट में गाया ख्याल। आपके साथ तबले पर संगत की थी बालकृष्ण अय्यर ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही पूर्वोत्तर को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा है। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं। चेतावनी में बताया गया कि जालसाज आम तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और पीड़ितों के चेहरे का डेटा एकत्र करते हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों पर भी असर होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी

निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित होते हैं और खरीद सामर्थ्य तथा उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की यात्रा पर उत्तराखंड जा रही हैं। इस दौरान वे देहरादून में 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मुलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान श्री गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और आगे बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने कहा कि ईरान के उच्चस्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति हुई है और इसे ध्यान में रखते हुए ये अचानक बदलाव आया है। श्री ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि नाजुक युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने का समझौता लगभग पूरा हो चुका है। दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सवेरे एक इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि सवेरे करीब 2:25 पर सूचना मिलते ही 8 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और 5 लोगों को बचा लिया गया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। श्रोताओं, हाजिर हैं हम आप सभी के फरमाइशी नगमों और खतों के साथ। आप सभी को सौम्या कांडपाल का प्यार भरा नमस्कार।

कार्यक्रम के आरंभ में आपने प्यार के साइड इफेक्ट फिल्म का एक गीत सुना। जुबिन की आवाज़ थी, मयूर पुरी ने गीत लिखा था, प्रीतम ने संगीत से संवारा था और पसंद किया था। चंडीगढ़ से सुधीर नूतन, संदीप बुगलानी, जगमोहन प्रजापति, जग्गी, शिल्पा, ईशाप्रीत शर्मा, पंकज शर्मा और रोहित शर्मा ने इसी गीत को सुनना चाहा था। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और इनके ढेर सारे साथियों ने, डाबकी रोड अकोला से थे सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव और निशा रानी मंदूरकर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से थे मुकेश गोस्वामी, मधु, आशीष, शिवन्या, उमेंद्र दास और इनके परिवारजन, इसी गीत के इंतजार में सादुल शहर राजस्थान से थे राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और इनके परिवारजन, नेहरू चौक पैठण से थे सूर्य यादव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल सिया, भवानी नगर पैठण से थे आरती अरुण और इनके परिवारजन, सतना मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता थे उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, कमल बलूजा, मधु सागर और इनके ढेर सारे साथी। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से इसी गीत को सुनना चाहा था राधा नामदेव, अभिषेक।

0: अपर्णा और उज्जवल नामदेवनी, और लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता थे मास्टर खेलो परवेज, इमरान अनाज, नवाजिस शेख, दानिश आफरीदी और अमन आफरीदी।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दिस जून मेक एवरी ड्राइव स्मूदर विद द ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। लेस फ्यूल स्ट्रेस, मोर ड्राइविंग प्लेजर।
7: एक्सपीरियंस द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा एंड एंजॉय अमेजिंग बेनिफिट्स अप टू ₹3,75,00,000। ऑफर वैलिड टिल 30th जून।
8: ओन दिस स्टाइल आइकन एट एन EMI ऑफ जस्ट ₹8,999 पर मंथ।
7: एक्सपीरियंस लग्जरी विद अ पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360-degree व्यू कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले एंड 6 airbags एज स्टैंडर्ड।
8: हरे, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल। Visit your nearest Nexa showroom. TNC applies.
9: Nexa.

प्यार किया तो डरना क्या। आइए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत, उदित नारायण की आवाज़ में। गीत लिखा है समीर ने और पसंद किया है अंबाला हरियाणा से। राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और उनके परिवारजन ने। आदर्श नगर भटिंडा परमवीर हाउस से ही अशोक ग्रोवर, प्रवीण नीति, पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा। पोटियागला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक, सीमा और वैभवी साहू। दतरिंगी भट्टापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र और नोखेलाल। इसी गीत को सुनना चाह है निज़ामाबाद नेहरू पार्क से अजीज़ बाई, वसीम महतीन, नैमुद्दीन मोहम्मद, यासीन, शेख चंद्र, शेख सलीम और मौसा करीम। इसी गीत के इंतज़ार में हरियाणा झज्जर से हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया। सहारनपुर से हैं आशा नारंग, सुरेश और सोनाली नारंग। मोटक्का माफी जिला खंडवा से हमारे श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवकिशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। बागपत यूपी से हैं आसिफ अली खान, मोमिन खान, मुस्कान, सादिक अली खान और सारिक अली खान। और दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह।

गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दौदी, प्रमोद कुमार और सौरभ दौदी, जैन मंदिर कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन, आसमा आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी। महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि, नीना जी और स्वप्निल धाड़े। खंडवा मध्य प्रदेश से शालिया डावर, हलीमा जकीरा, आयशा खत्री। धर्मपुरी से ईशा खत्री और जकीरा खत्री। ज़िला बिजनौर शेरकोट से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बीटू भैया, साजदा रानी और हिना कौसल। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पला, करण गीतू, निहारिका हार्दिक और वंश बत्ता। बोड़खेड़ा पितरामल ज़िला उज्जैन से हैं विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दिशा कुश मूरत और इनके परिवारजन। और कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा और हर्षदीप। आइए हमारे सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं गोरा और काला फिल्म का ये गीत। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, आनंद बख्शी का गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: Zune make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360 degree camera, head-up display and safety through 6 airbags.
1: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
0: Also get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: ग्राम आकूट से विनायक बेंडी, मंगला बेंगले, मंगला बेंडी, विजय शुभम, पवन जरिए और संजीव डोबेराय, पंजाब से सतीश मिगलानी, अनमोल और विवान मिगलानी, छबीलपुर गुन्नौर उत्तर प्रदेश से हरवेश कश्यप, अरजीत और दिव्यांश, सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमीला दीपक अनुश्री और आसमा श्याम कुंवर, नरहन स्टेट फुटानी चौक से अमन परासर, बीबी आराध्या, लालू पंडित, नूतन और इनके परिवारजन, गांव बागपत से।

संजय ढींगिया और नमन ढींगिया बीड शहर महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं। नंदकिशोर खट्टी, संगीता साक्षी, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टाउल, पीयूष बिरजू और सखी सहेली ग्रुप बीड शहर से ये सभी सखियां हैं। जयश्री महतरे, कविता, पुष्पा, कमला, मंजूश्री और मीरा राजधानी रायपुर से हैं। नीलू मेघा, डॉक्टर वंदना, बिट्टू कुमार और डॉक्टर आदर्श कुमार अनारकली बाजार जगराव से हैं। दीपिका मल्होत्रा, सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। और इसी गीत के इंतज़ार में हमारे श्रोता हैं जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर जगुताई, साक्षिताई, संचित वयाल, प्रथमेश, स्वामी देशमुख, प्रणाली और सानवी देशमुख। तो आइए हमारे सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं बाघी फिल्म का ये गीत। अरिजीत सिंह और खुशबू जैन की आवाज़ें हैं। गीत और संगीत है मीर ब्रदर्स अनजान का।

0: inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: Enjoy amazing benefits up to ₹25,000. Offer valid till 30th June.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC apply.
2: साथिया, आइए अब आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत साधना सरगम और मधुश्री की आवाजों में। गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत दिया है एआर रहमान ने और पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से हैं डॉक्टर तस्नीम कौशल, इशिता साहनी, प्रियंका झुमरी तलैया से हैं डॉक्टर सोनम वली, नाजनी तबस्सुम और अफजल इब्राहिम, भाटापारा से हैं आर के साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल और मुरली। इसी गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर मालूट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी, गगदीप, आरजू और गुडू ने। राजनगर मधुबनी बिहार से हैं नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत और जयबीरू। इसी गीत के इंतजार में मेहर नगर उमरखेर महाराष्ट्र से हैं अभिजीत ग्वाणकर, राही, सरिता, सिद्धांत ग्वाणकर, प्रिंस एकांश, शैलेश ग्वाणकर, वैशाली, सुमित, ध्वनि और पदी ग्वाणकर। बिलराम गेट कासगंज से हमारे श्रोता हैं असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, अक्रम सैफी, सद्दाम, सोनी और आबाद खान और करुल्ला मुरादाबाद से इसी गीत के इंतज़ार में हैं अयूब खान, इरम, शोएब खान, नावेद खान, जीशान वारसी और इनके परिवारजन।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम गीत निर्झर। आइए अब कार्यक्रम में शामिल करते हैं अपना ये अगला फरमाइशी गीत, जिसे पसंद किया है धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार, विनीत कुमार, कुमारी कृष्टि पटवानी इसी गीत के इंतज़ार में हैं। भिलाई तीन चरौदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदून सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद और इनके परिवारजन इसी गीत के इंतज़ार में। मालियान सरदना मेरठ से हैं अनिल जैन, संयम मुस्कान, मास्टर जीवम जैन आदि, अंश और भव्य जैन फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हैं, गुरविंदर सिंह पाधा, इंद्रजीत कौर, बीबी मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा। छत्तीसगढ़ लच्छनपुर से हैं रामजी साहू, जीवनलाल, निम्मी, शिवम सतीश, मुकेश कुमार और इनके ढेर सारे साथी। जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश कुमार चौहान, मोहिनी कल्पित और बेबी गर्वी। महाराष्ट्र रिंगोली से हैं शाजी बोट के, नंदा हनुमान और उत्तम कुमार बोट के और ऋषि गीत को सुनना चाहा है। वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक परी, खुशी वंदना, स्वाति प्रयाग और इनके परिवारजन ने। तो लीजिए पेश है आप सभी की पसंद पर तनु एट्स मनु फिल्म का ये गीत। शफकत अमानत अली की आवाज़ है और राजशेखर का गीत।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

पाकुड़ झारखंड से हमारे श्रोता हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासो, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। जवाहरनगर दुर्ग उदयपुर से हैं बाबू भाई और भारती देवी। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भानपाल, जयहिंद पाल, विमलेश, दीक्षा, प्रतीक्षा, दिव्यांश बघेल और इनके परिवारजन। नागपुर यूनिवर्सिटी तिवसा से हैं डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर, प्रज्वला, डॉक्टर अपेक्षा अमिन दीवान और कुमारी व्याख्या। विदर्भ संघ जलगांव जंक्शन से हैं डॉक्टर दिनेश काले, वंदना, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन और आदेश कुमार काले। इस गीत को सुनना चाहा है करणवीर हाउस भटिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दीपेंद्र, वरिंद, सिमरन और अभिजीत और पंजाब रेलवे कॉलोनी भटिंडा से ही जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और इनका पूरा परिवार।

आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कलाकार फिल्म का ये गीत। किशोर कुमार की आवाज़ में इंदिवर का लिखा गीत है और संगीत है बप्पी लहरी का। पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश, निखिल प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा, अजमेर राजस्थान से सैयद आलम हाशमी, मोहम्मद आलम, गुलनाज सलमा असद और अरहाम हाशमी। इसी गीत को सुनना चाहा है विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खटके और विनीत खटके ने। नादेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या, सविता। और इसी गीत को सुनना चाहा है शिवाजी चौक कटनी से अनिल अमर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील लालू, सोना मोना, हनी और यस।

श्रोताओं, इस गीत को सुनना चाहा है हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम, सचिन, सतीश, योगेश, कुंदन और प्रदीप, और इसी गीत को सुनना चाहा है डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत, अभिषेक, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, संतोष, दिनेश, समरराज आर्यन, आरोही, इशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा ने। हमारे ये सभी श्रोता हैं ग्राम बहरामपुर MP से।

आइए कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं जंगल में मंगल फिल्म का ये गीत, आवाज़ किशोर कुमार की है, हसरत जयपुरी और नीरज ने ये गीत लिखा है, संगीत शंकर जयकिशन का, पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की है। गुमला झारखंड से हैं SM जावेद और शाहीन सुल्ताना, अकोला महाराष्ट्र से हैं रमाकांत कुलकर्णी, चित्रा रानी, प्राजक्ता पराग पाठक, प्रियंका अभिषेक, पल्लवी गिरीश, देश पांडे, इसी गीत को सुनना चाहा है। कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, नयन और सोमांशु पांडे ने, बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निकहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। जवाहरनगर दुर्ग से RC कामड़े, करुणा कामड़े, मध्य प्रदेश से हैं दिलीप मालाकार, सुनीता, योगेश, मुस्कान और इनके परिवारजन, पंडरपुर से हैं जाकिर मुलाणी, सुमैया, सुबान, सलमा, मुमताज़, दिलशाद, नासिर और बादशाह मुलाणी, और राजविराज नेपाल से हैं श्याम कुमार हाकू, तारा देवी, रंजन, कल्पना राय हाकू, सुनैना, सुकन्या, पिंकी, खुशबू, श्रुति, पूजा, पूर्णिमा और सनी हाकू।

और इसी गीत के इंतज़ार में हैं लाला बाजार अल्मोड़ा से बाबा फरहान संजू सामिया आफिया मुमताज़ अमान नीलोफर शन्नू और शब्बू।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात आप सभी के फरमाइशी नगमों और खतों के साथ। तब तक के लिए सौम्या गांडपाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू की उपस्थिति में ये पत्र हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और पीड़ितों के चेहरे का डेटा एकत्र करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनीतिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जा रही हैं। इस दौरान वे देहरादून में 132 एकड़ क्षेत्र में बने राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IAM में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान श्री गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के तुगलकाबाद

0: क्षेत्र में आज सुबह एक इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि तड़के करीब 2:25 पर सूचना मिलते ही 8 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और 5 लोगों को बचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सब रंग।

0: सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
1: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
0: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
1: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
0: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
1: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
2: क्या किसी कारणवश शिक्षा का सपना रह गया अधूरा, तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के साथ कीजिए पूरा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड, जो आपको बेसिक शिक्षा, OBE, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के 103 से अधिक कोर्स के साथ साथ प्रशिक्षण देकर भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए NIOS क्षेत्रीय केंद्र देहरादून से दूरभाष नंबर 01352532592 अथवा वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग। आइए कार्यक्रम में आपको अब सुनवाते हैं ए हरिहरन की गाई गजल।

भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई इसी गजल के साथ अब यहीं पर संपन्न होता है सुगम संगीत का कार्यक्रम सपरंग। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप अखिलेश चंद्र गैरोला से सुनिए प्रादेशिक समाचार। नैनीताल जिले के प्रसिद्ध कैंची धाम क्षेत्र में वर्षों से पर्यटन सत्र और धार्मिक आयोजनों के दौरान लगने वाले यातायात जाम से राहत मिलने की उम्मीद बन गई है। रातीघाट के पास शिप्रा नदी पर बाईपास के साथ निर्मित बैली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इसके साथ बाईपास मार्ग के यातायात के लिए खोलने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। दूसरी ओर 15 जून को बाबा नीब करौरी महाराज के स्थापना दिवस मेले के लिए पुलिस और प्रशासन ने व्यापक यातायात और सुरक्षा योजना लागू की है, जिससे हजारों श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। वहीं पुलिस ने श्रद्धालुओं से निर्धारित पार्किंग और शटल सेवा का उपयोग करने और जारी यातायात परामर्श का पालन करने की अपील की है। कैबिनेट मंत्री व श्रीनगर विधायक डॉ. धन सिंह रावत ने 3 दिवसीय थलीसैंण भ्रमण के दौरान थलीसैंण भ्रमण के अंतिम दिन चौथान को बड़ी सौगात दी। उन्होंने थलीसैंण क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 250 लाख रुपए की लागत से निर्मित 3 किलोमीटर लंबे मैखुली देवराड़ी गणतखाल मोटरमार्ग के सुधार और डामरीकरण कार्य का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी, साथ ही क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही मंत्री द्वारा देवराणी देवी बुंगीधार में 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले खेल मैदान का शिलान्यास किया गया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का कहा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 14 जून को होने वाली स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी आशीष चौहान का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। परीक्षा के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिलाधिकारी द्वारा बैठक की गई, जिसमें सभी जोनल और सेक्टर मैजिस्ट्रेट को परीक्षा केंद्रों का पूर्व निरीक्षण करने, केंद्र व्यवस्थापकों के साथ समन्वय बनाए रखने और जैमर, सीसीटीवी कैमरे, फेस ऑथेंटिकेशन ऐप सहित सभी व्यवस्थाओं की गहन जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आज सैन्य सम्मान के साथ अग्निवीर रोहित रावत को अंतिम विदाई दी गई। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक घाट पर किया गया। घनसाली क्षेत्र के मेंडू सिंधवाल गांव निवासी 21 वर्षीय अग्निवीर जवान रोहित रावत 10 जून को जम्मू में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे। 20 गढ़वाल राइफल्स में तैनात रोहित रावत 1 साल पहले ही भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। कल शाम ही रोहित का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गाँव पहुंचा है। आसपास के गांव के लोग भी मेंडू सिंधवाल गांव पहुंचे और शहीद रोहित को श्रद्धांजलि दी गई। उत्तराखंड क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड से जुड़े लक्ष्य रायचंदानी को भारतीय पुरुष अंडर 19 टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है, जबकि प्रियांशु का मल्टी डे 4 दिवसीय टीम में चयन हुआ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की जूनियर क्रिकेट कमेटी ने श्रीलंका दौरे के लिए दोनों प्रारूपों की टीमों की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम 3 वनडे और 2 4-दिवसीय मैच खेलेगी। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने इस उपलब्धि को उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण करार दिया है। वहीं BCCI सदस्य और CAU के पूर्व सचिव माहिम वर्मा ने कहा कि लक्ष्य रायचंदानी का उपकप्तान बनना पूरे उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। बागेश्वर जिले में सुबह हुई आकाशीय बिजली की चमक और गरज के साथ तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। लगातार हुई बारिश के चलते

0: पे सरयू और गोमती नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों की निगाहें जलस्तर पर टिकी हुई हैं। इधर प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। नदियों में सिल्ट की मात्रा बढ़ने से पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। कई क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है और साथ ही लोगों से अनावश्यक रूप से नदी नालों के समीप न जाने की अपील की गई है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के कुछ हिस्सों में आज भी मौसम बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून समेत टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश, ओलावृष्टि के अलावा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी बिजली चमकने और तेज दौर की बारिश के साथ तूफान चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि प्रदेश के 4,200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने का भी अनुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर यह है आकाशवाणी देहरादून। सुबह के 10:35 हुए हैं। अब प्रसारित कर रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे विविध कलाकारों के स्वर में जौनसारी लोकगीत।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार।

श्रोताओं, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पर्दे से उतरकर सीधे हमारे दिलों में घर कर लेते हैं। आज रेडियो के सफ़र में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ही हस्ती की कहानी जिनकी आँखें बोलती हैं, जिनके पैर थिरकते तो समा बंध जाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी की। आज हम उनकी यादों की महफिल सजा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनके सुपरहिट गानों के ज़रिए। सफ़र की शुरुआत करते हैं उस दौर से जब उन्होंने पूरे देश के दिलों पर बिजली गिराई। सुनिए ये सुपरहिट गाना। तो आइए आज सुरबहार कार्यक्रम में एक ही कलाकार के अंतर्गत सुनते हैं अदाकारा श्रीदेवी पर फिल्माए कुछ फिल्मी नगमे।

0: exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: श्रोताओं, श्रीदेवी जी का और फिल्म संगीत का रिश्ता बड़ा अनोखा है। 80 के दशक में जब उन्होंने नैनों में सपना इस गीत पर अभिनय किया तो मटके और रंग बिरंगे बैकग्राउंड के बीच भी उनकी अदाओं ने जादू को बरकरार रखा। वो संगीत की हर थाप को पहचानती। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल हूँ या बप्पीदा, हर म्यूजिक डायरेक्टर जानता कि अगर गाना श्रीदेवी पर फिल्माया जा रहा है तो वो सिर्फ हिट नहीं, सुपर हिट होगा। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं उस रेट्रो दौर में जहाँ चूड़ियों की खनक ने हर दिल में काबू कर लिया।

0: presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
2: Canada desh to, aap jante hi honge. कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ करोड़ों परिवारों का कल्याण
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के
4: दोस्तों श्रीदेवी जी के बारे में एक बात मशहूर थी उन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती उनकी आंखें पूरा सीन बयां कर देती थी याद कीजिए फिल्म नगीना का वो गाना जब सपेरे की बीन बजती और श्रीदेवी जी अपनी आंखों से वो गुस्सा और सम्मोहन बिखेरती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा मैं नागिन तू सपेरा गाने में उन्होंने संगीत को सिर्फ एक धुन नहीं रहने दिया बल्कि उसे एक विजुअल ड्रामा बना दिया तो आइए उसी आइकॉनिक धुन को रेडियो पर महसूस करते हैं

दोस्तों, वक्त का पहिया घूमता रहता है, और एक लंबे ब्रेक के बाद जब हमारी चांदनी ने इंग्लिश विंग्लिश में वापसी की तो लगा ही नहीं कि वो कभी दूर गई थी। नवराई माझी गाने में उनकी वही पुरानी सादगी और मिठास दोबारा देखने को मिली, और फिर साल 2017 में आई फिल्म मॉम, AR रहमान साहब का म्यूज़िक और एक माँ के जज्बात। वो गाना ओ सोना तेरे लिए, आज जब उस गाने को सुनो तो दिल भर आता है। रहमान साहब की रूहानी आवाज़ मानो उनकी विदाई का गीत बन गई। लेकिन कलाकार कभी मरते नहीं, वो अपने संगीत, अपने अभिनय में हमेशा जिंदा रहते हैं।

तो श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद है श्रीदेवी जी के इन गानों ने आपके दिन को थोड़ा और खूबसूरत बना दिया होगा। तब तक के लिए सौम्या कांडपाल को दीजिए अनुमति, सुनते रहिए हमारा स्टेशन। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार, FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: फौजी भाइयों, कार्यक्रम के आरंभ में आपने पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गीत सुना महेंद्र कपूर की आवाज में।
1: Into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: Enjoy amazing benefits up to Rs. 25,000. Offer valid till 30th June.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
0: कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत। देव कोहली ने ये गीत लिखा है और राम लक्ष्मण ने संगीत।

0: June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
1: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
0: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: फौजी भाइयों, आइए अब आपको सुनवाते हैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये गीत, अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में। महबूब का ये गीत है और संगीत इस्माइल दरबार का।

कार्यक्रम के समापन में आइए आपको सुनवाते हैं रूप कुमार राठौर और सोनू निगम की आवाजों में सरफरोश फिल्म का ये गीत।

अभी फौजी भाई सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाह्न के 11:30 हुए हैं और इस समय श्रोताओं के लिए हम लेकर आए हैं कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकसुर। शुभारंभ कर रहे हैं गढ़वाली लोकगीत के साथ, कलाकार हैं संतोष खेतवाल।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
3: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.

0: Taurus, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special.
3: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
2: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6-year bands.
3: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
2: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
4: Nexa.
5: बिना ISI के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
6: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
5: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
6: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
5: झगड़ा मिटाएं,
6: विश्वास जगाएं।
7: जागो ग्राहक जागो।
8: लोकसुर कार्यक्रम उस समय आप आकाशवाणी कैलमोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं गढ़वाली लोकगीत समूह स्वरों में।

लोक सुर में श्रोता भी सुन रहे थे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीत। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजू पांगती का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, हमारा देश, हमारी भारत भूमि संगीत की भूमि रही है। शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है, आकर्षित किया है। पौराणिक कथाओं की ओर अगर हम चलें तो भगवान शिव को भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक माना जाता है। इस परंपरा से जुड़े अन्य देवताओं में भगवान ब्रह्मा, देवी सरस्वती और गंधर्व कहलाने वाले दिव्य प्राणी इस समृद्ध हमारी जो विरासत है उसमें शामिल हैं। गंधर्वों से लेकर मुनियों तक और फिर मानव जाति तक भारतीय शास्त्रीय संगीत की यात्रा और विकास आज भी जारी है और अनादिकाल से शास्त्रीय संगीत के समर्पित उपासक भारत के शास्त्रीय संगीत के कलाकार अपना जीवन अपनी कला को समर्पित करते आए हैं। गायन, वादन, नृत्य की त्रिवेणी से संबद्ध अनेक दिग्गज कलाकार हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की परंपरा को, इस समृद्ध विरासत को सदा ही आगे बढ़ाया है। और यूं तो शास्त्रीय संगीत का अपना एक इतिहास है, एक परंपरा है, एक विरासत है। वैसे ही अगर हम फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में भी एक से बढ़कर एक जो ये दिग्गज कलाकार हुए हैं, इन्होंने अपनी आवाज़ का जादू चलाया है। और आज मेरी पसंद हमने सजाया है ऐसे ही खास कलाकारों से जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की परंपरा को जीवंत रखा और फिल्मों में उनकी गायकी का जादू, उनकी गायकी की जो एक खूबसूरती है उसे हमने महसूस किया है, सुना है। तो शुभारंभ कर रहे हैं जाने माने उस्ताद आमिर खान के आवाज़ से। फिल्म है बैजू बावरा, शकील बदायूनी का गीत है और नौशाद का संगीत। आइए सुनते हैं। और हाँ, उस्ताद आमिर खान के साथ जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित डीबी पलुस्कर ने भी इस गाने में उनका साथ दिया है। तो आइए ये बेहद खूबसूरत, बेहद समृद्ध आवाज़ का हम भी आनंद लेते हैं, सुनते हैं ये गाना बैजू बावरा फिल्म से।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने में रेडियो का, आकाशवाणी का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक से बढ़कर एक कलाकारों को आप नित्य हमारे केंद्र से, आकाशवाणी के अनेक केंद्रों से सुनते ही आ रहे हैं। और शास्त्रीय संगीत की बात करें तो विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत का आयोजन हमारे विविध केंद्रों द्वारा होता है, जिसमें आकाशवाणी संगीत सम्मेलन शामिल है। इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को रात्रि में संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रविवासरीय संगीत सभा के जरिए भी आप शास्त्रीय संगीत की इस परंपरा के जो संवाहक रहे हैं, जो कलाकार रहे हैं, महान कलाकार, उनको सुनते आ रहे हैं। और जैसा कि आज कुछ ऐसे महान कलाकारों की आवाज़ से सजे फिल्मी गाने हम मेरी पसंद में आपके लिए लेकर आए हैं, तो अब चलते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर, जिसे गाया है विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

विदुषी किशोरी अमोनकर भारतीय शास्त्रीय संगीत की महानतम महिला गायिकाओं में से एक रही हैं। वो जयपुर अतरौली घराने से ताल्लुक रखती थीं और उनकी माता मोगूबाई कुर्दिकर ही उनकी गुरु भी थीं। किशोरी जी का संगीत अपनी भावनात्मक गहराई, नवीनता और पारंपरिक रागों के गहन भावों के साथ व्यक्तिगत रूप से हम सुनते आए हैं और व्यक्तिगत रूप से वो जो प्रदान करती थी अपनी गायकी के जरिए लोगों से जुड़ती थी वो अपने आप में बेमिसाल कमाल रहा। वो अक्सर जयपुर अतरौली की पारंपरिक शैली से हटकर धीमी गति और भावनात्मक अनुगूंज पर भी जोर देती थी, जिसमें तकनीकी सटीकता और कलात्मक रचनात्मकता का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता था। उनकी प्रस्तुतियां गहरी भावनाओं को जगाने और दर्शकों के साथ आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने की क्षमता के लिए जानी जाती रही हैं। किशोरी जी की दिनचर्या में उनका कठोर रियाज और निरंतर सीखना शामिल रहा, जिसे वो ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका मानती थीं। उन्होंने फिल्मों के लिए गीत गाए और ख़ासकर जो 1964 में आई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने, इस फिल्म का जो शीर्षक गीत है वो किशोरी अमोनकर जी की ही आवाज़ से सजा है, जो आज भी उतना ही सुरीला, उतना ही दिल को छू लेने वाला है जितना उस दौर में लोगों ने इसे सुना है। और ये हमेशा के लिए, या यूं कहिए सदाबहार गीत बनकर शास्त्रीय संगीत की परंपरा को जीवंत किए हुए है। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और रामलाल का मधुर संगीत है। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, अब एक और महान शास्त्रीय संगीत के दिग्गज कलाकार की बात करते हैं। नाम है उनका पंडित छन्नूलाल मिश्र। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया में बनारस घराने के शीर्षस्थ और दिग्गज कलाकार के रूप में जाने जाते हैं पंडित छन्नूलाल मिश्र जी। ख्याल गायकी के साथ साथ ठुमरी की पूरब अंग शैली में अपनी अद्वितीय महारत के लिए आप मशहूर रहे हैं। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता पंडित बद्री प्रसाद मिश्र से आपने प्राप्त की। इसके बाद किराना घराने के उस्ताद अब्दुल गनी खां और संगीतज्ञ ठाकुर जयदेव सिंह से भी संगीत की बारीकियां आपने सीखी। वो न केवल ख्याल और टप्पा ठुमरी गाते थे, बल्कि उप शास्त्रीय विधाओं जैसे ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी और होरी, इन सभी विधाओं में भी एक समृद्ध विरासत के वो धनी थे। तो फिल्म में भी उनकी आवाज़ का जो है मोहक अंदाज हमने देखा है, सुना है। फिल्म है आकर्षण, आरक्षण, फिल्म का नाम है आरक्षण, और पंडित छन्नूलाल मिश्र की आवाज़ है। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा है, शंकर एहसान लॉय का संगीत है। तो आइए सुनते हैं आरक्षण फिल्म से पंडित छन्नूलाल मिश्र के स्वर में ये मधुर तराना।

श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक और जानी मानी मशहूर सुप्रसिद्ध गायिका रहीं विदुषी शोभा गोटू। उन्हें विशेष रूप से ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता है। हालांकि उन्हें शुद्ध शास्त्रीय संगीत पर महारत हासिल थी, लेकिन उप शास्त्रीय संगीत की विधाएं जैसे ठुमरी, दादरा, कजरी और होरी में उनके भावपूर्ण गायन ने उन्हें अद्वितीय प्रसिद्धि दिलवाई। उनकी माँ मेनकाबाई शिरोडकर एक पेशेवर नृत्यांगना थी और उस्ताद अल्लादिया खान की शिष्या थी, तो शोभा जी को संगीत की पहली शिक्षा अपनी माँ से ही प्राप्त हुई। बाद में उन्होंने उस्ताद भुर्जी खान, उस्ताद नत्थन खान और उस्ताद धम्मन खान जैसे दिग्गज उस्तादों से शास्त्रीय और उप शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। वो अपने दमदार और भावपूर्ण स्वर के माध्यम से गीतों में अभिनय यानी भाव लाने के लिए जानी जाती रही हैं। उन्होंने पूरब शैली की ठुमरी के तत्वों को अपनी गायकी में शामिल करके एक खास तरह की शैली विकसित की। उन्होंने कुछ बहुत ही खूबसूरत मराठी नाटकों, फिल्मों में अपनी आवाज़ दी और शास्त्रीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। एक गाना इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं, ठुमरी अंग का ही एक पारंपरिक गीत है, मैं तुलसी तेरे आंगन फिल्म से। आपने ज़रूर सुना होगा, सैया रूठ गए मैं मनाती रही। विदुषी शोभा गोटू जी का स्वर है, आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

और अब श्रोताओं बात करते हैं जानी मानी एक और गायिका की, नाम है बेगम परवीन सुल्ताना। बेगम परवीन सुल्ताना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक सुप्रसिद्ध गायिका रही हैं। असम में जन्मी, अपने पिता इकरामुल मजीद से उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने आचार्य चिन्मोय लाहड़ी और उस्ताद दिलशाद खां से भी शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। अपनी सुरीली आवाज़ और तकनीकी कुशलता के लिए आप जानी जाती हैं। ख्याल और ठुमरी अंग में उत्कृष्ट आपकी गायकी है। आपकी आवाज़ की विशेषता आपकी विशाल रेंज है जो कई सप्तकों तक फैली हुई है, जिससे वो निम्न और उच्च स्वरों को सहजता से पार कर पाती हैं। और फिल्मों की बात करें तो उनके पार्श्व गायन से सजा एक गीत आपने ज़रूर सुना होगा। फिल्म कुदरत से साल 1981 में ये फिल्म आई। आरडी बर्मन द्वारा संगीतबद्ध ये गीत शास्त्रीय संगीत के सार को बॉलीवुड की संवेदनशीलता के साथ खूबसूरती से मिलाता है और इस गीत ने बेगम परवीन सुल्ताना जी को अपार प्रसिद्धि दिलाई। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

तो श्रोताओं, मेरी पसंद में आज बस इतना ही। अंजु पांगती को दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं, दिन के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार।

0: स्वागत है बहनों आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार में। आप सभी को आपकी बहन गीता अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। बहनों आज के कार्यक्रम में हम करेंगे आपसे कुछ और नई रोचक विषयों पर चर्चा और साथ ही करेंगे आप सभी का मनोरंजन कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। बहनों बचपन मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील चरण होता है। इसी अवस्था में बच्चे के व्यक्तित्व विचारों आदतों और मूल्यों का निर्माण होता है। एक सुरक्षित और सुखद बचपन बच्चे को शारीरिक मानसिक भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके बच्चों पर निर्भर करता है। यदि बच्चों को सुरक्षित वातावरण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उचित स्वास्थ्य सुविधाएं और विकास के अवसर प्राप्त होते हैं तो वे आगे चलकर देश के जिम्मेदार जागरूक और सफल नागरिक बनते हैं। बहनों सुरक्षित बचपन का अर्थ केवल बच्चों को शारीरिक खतरों से बचाना नहीं है बल्कि उन्हें हर प्रकार के शोषण हिंसा भेदभाव बाल श्रम बाल विवाह और मानसिक उत्पीड़न से सुरक्षित रखना है। प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि उसे प्यार सम्मान और सुरक्षा मिले। परिवार ही बच्चों की पहली पाठशाला होता है। इसलिए माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का कर्तव्य है कि वे बच्चों को स्नेहपूर्ण वातावरण प्रदान करें उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें और उन्हें सही मार्गदर्शन दें। क्योंकि बहनों परिवार से मिलने वाला प्रेम और सुरक्षा बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है साथ ही उनके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। बहनों शिक्षा सुरक्षित बचपन का एक महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षा बच्चों को ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उन्हें अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक बनाती है और विद्यालय बच्चों को सीखने सोचने और अपने कौशल को विकसित करने का अवसर देते हैं। इसलिए प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके। साथ ही बहनों स्वास्थ्य भी सुरक्षित बचपन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बच्चों को पौष्टिक भोजन स्वच्छ पानी नियमित स्वास्थ्य जांच और आवश्यक स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए। स्वस्थ बच्चे ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल परिवार समाज और सरकार सभी की साझा जिम्मेदारी है। बहनों आज के समय में बच्चों की सुरक्षा के सामने कई चुनौतियां मौजूद हैं। बाल श्रम बाल तस्करी बाल विवाह घरेलू हिंसा साइबर अपराध और नशीले पदार्थों का प्रभाव बच्चों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। इन समस्याओं से बचने के लिए हम सभी को समाज को जागरूक होना आवश्यक है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए साथ ही बच्चों को भी उनकी सुरक्षा अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे किसी भी प्रकार के खतरे को पहचान सकें और उससे बच सकें। इसलिए बहनों सुरक्षित बचपन ही सुदृढ़ भविष्य की आधारशिला है। जब बच्चे सुरक्षित शिक्षित स्वस्थ और खुशहाल होंगे तभी वे अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति परिवार समाज और सरकार का कर्तव्य है कि वे बच्चों के अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें ऐसा वातावरण प्रदान करें जहां वे बिना भय के सीख सकें। क्योंकि सुरक्षित बचपन किसी भी बच्चे के उज्जवल और सफल भविष्य की नींव होता है। इसलिए सुदृढ़ भविष्य के लिए प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और खुशहाल बचपन मिलना ही चाहिए। तो बहनों ये तो थी कुछ बातें सुदृढ़ भविष्य के लिए सुरक्षित बचपन इस विषय पर। और अब आइए कार्यक्रम में आगे लेते हैं ये अंतराल।
1: Into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built

0: Express every single day.
1: Enjoy amazing benefits up to rupees 25,000. Offer valid till 30th June.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC apply.
1: This June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
0: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
1: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
5: बहनों, आज है 12 जून और आज के दिन को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में। बहनों, यह दिन बच्चों को उनके बचपन, शिक्षा और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार दिलाने पर जोर देता है, ताकि उन्हें काम के बोझ से बचाया जा सके। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम की वैश्विक सीमा पर ध्यान केंद्रित करना और बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास करना है, ताकि बच्चों के बचपन को खुशहाल बनाया जा सके। तो बहनों, आइए इसी क्रम में कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर नीलिमा भट्ट, सामाजिक कार्यकर्ता व कार्यकारिणी समन्वयक अमन संस्था की कोऑर्डिनेटर से की गई ये क्षेत्र संकलित बातचीत।
6: स्वागत है नीलिमा जी आपका हमारे कार्यक्रम घर संसार।
7: धन्यवाद गीता जी।
6: नीलिमा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बाल श्रम क्या है और किस उम्र तक के बच्चों को बाल श्रमिक माना जाता है।
7: बाल श्रम एक सामाजिक कुप्रथा है, और अगर हम देखें तो भारत के अंदर 5 से 14 साल के 1 करोड़ बच्चे जो है वो किसी न किसी प्रकार के बाल श्रम में काम में लगे हुए हैं। इसके अलावा खतरनाक कार्यों में भी बच्चे लगे हुए हैं जिनकी उम्र 14 से 17 वर्ष है। तो जहाँ तक एज की बात है, तो जो बाल श्रम बाल एवं किशोर श्रम संशोधन अधिनियम 2016 है वो ये कहता है कि 18 साल से नीचे का कोई भी बच्चा जो काम में लगा हुआ है वो बाल श्रमिक है। इसी के साथ साथ आपका जो बच्चों के लिए कानून है, जो जेजे एक्ट है, वो भी 18 साल तक के बच्चों को बच्चा मानता है, और बच्चों को लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकार समझौता है वो भी ये कहता है कि 18 साल से नीचे के बच्चों को बाल श्रम में नहीं लगाना चाहिए, उससे उनका संरक्षण करना चाहिए। तो 18 साल से नीचे के बच्चे जो काम कर रहे हैं वो बाल श्रमिक है। और बाल श्रम को अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी काम जो बच्चे कर रहे हैं, चाहे उनको उसके बदले पैसा मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, पर अगर वो काम कर रहे हैं और उससे उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, और उसके साथ साथ अगर उनके खेलने के घंटे भी कम हो रहे हैं, तो वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं कामगार बच्चे और बाल श्रमिक बच्चों में आते हैं।
6: जी नीलिमा जी, उन कारणों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे जिसके कारण बच्चे बचपन में ही काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
7: देखिए, हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो 1 करोड़ बच्चे काम कर रहे हैं, जो 2011 की जनसंख्या कहती है, उसमें कहीं ना कहीं इसका जो एक बड़ा कारण है वो बेरोजगारी है। परिवारों की जो आर्थिक स्थितियां बहुत खराब होती है बच्चों की, जिसकी वजह से वो काम पे निकल जाते हैं। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो सामाजिक जो जागरूकता की कमी है। बाल श्रम को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए वो हमारे समाज के अंदर नहीं है। जो विभिन्न प्रकार की असमानताएं हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं जो ऐसे तबके हैं जो हाशियत है, उस तरीके के बच्चे ज्यादा बाल श्रम की तरफ जाते हैं। और जो सस्ते श्रम की जो मांग है, क्योंकि जो बिजनेस के अगर हम पूरे उसको देखते हैं तो जो सस्ता श्रम की जो मांग है कि सस्ते में हमें कौन मिलेगा, तो वो भी एक कारण है जिसके कारण बच्चे बाल श्रम में जाने के लिए मजबूर होते हैं।
6: नीमा जी, पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों से मजदूरी करवाने से बच्चों के जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं?
7: ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बच्चे जो है वो आज के नागरिक हैं और कल जो है वो भारत का भविष्य है। तो हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, वो हम बच्चों के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं, उन्हें कैसी एजुकेशन देते हैं, उनको हम उसकी कैसी नर्चरिंग करते हैं, उसके आधार पर जो है चीजें तय होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बच्चों के जो बाल श्रम होता है, देखिए बच्चों को बहुत घंटे काम करना पड़ता है, तो शारीरिक नुकसान है उनके साथ, स्वास्थ्य के बहुत सारे जो है नुकसान होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है, अगर हम भारत का

0: अगर देखे तो एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारे बच्चे, बड़ा परसेंटेज जो है बच्चों का काम कर रहा है, तो बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी उनको नुकसान है, उनके मानसिक विकास उससे रुकता है, भावनात्मक संबंधी बहुत परेशानियां आती है, और उसके साथ साथ बहुत सारे शोषण का शिकार भी बच्चे होते हैं। आप कहीं भी देखिए, ढाबे पे ही देखिए, बच्चा काम करते हुए मिलता तो लोग उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, किस तरीके से हम उसके साथ व्यवहार करते हैं, और वो व्यवहार करते दिन वो बच्चा उसी तरीके का व्यवहार से वह समाज से करेगा, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं हमसे सीख रहा है। तो एक तरीके से जो हम कहते हैं कि जो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो वो ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं बच्चों की जो ग्रोथ है उसको भी और देश की ग्रोथ को भी बालश्रम की वजह से प्रभाव डालता है।
1: नीलिमा जी, अगर कोई व्यक्ति बच्चों से मजदूरी करवाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, और बाल मजदूरी करने वाले बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की सुरक्षा के लिए आपकी संस्था क्या क्या प्रयास कर रही है?
0: देखिए, क्योंकि अभी एक संशोधन हुआ है कानून में, बाल एवं किशोर श्रम संशोधन अधिनियम, जो कि 2006 में आया है, और वो ये कहता है कि 6 साल तक से नीचे के बच्चों को जो है काम नहीं करवाना है। उस कानून के अंदर ये प्रावधान है कि अगर कोई बच्चे को काम पर लगा रहा है तो उसको सजा भी हो सकती है, क्योंकि एक अपराध है बाल श्रम करवाना, 6 महीने से 2 वर्ष की कैद हो सकती है, 20,000 से 50,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें जो कानून है उसके अंदर सजा का प्रावधान भी है। इसके अलावा जो किशोर न्याय बाल अधिनियम देख लेख संरक्षण अधिनियम है, और उसकी धारा 75 और 79 में जो ये कहती है कि बच्चों से अगर किसी तरह का आर्थिक रूप से बच्चों का शोषण किया जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जुर्माने की कार्रवाई भी की जा सकती है। और दूसरा, जब बच्चों के, क्योंकि बच्चा तो श्रम में किसी न किसी परिस्थिति की वजह से आया है, तो उसके पुनर्वास की बात भी कानूनों के अंदर की गई है, जिसमें जैसे बहुत सारे जो समाज कल्याण की योजना है उसके साथ जोड़ने की बात है। इसके अलावा अगर जो भी बच्चे को लेकर जो कंपनसेशन जो जाएगा उसको बच्चे के ऊपर लगाया जाएगा। इसके अलावा जिला स्तर पर एक योजना है जो स्पॉन्सरशिप की योजना है, जिसमें बच्चे को 4,000 रुपए महीने की स्पॉन्सरशिप मिलती है। तो इस तरह की योजनाओं से भी बच्चों को जोड़ करके उनको जो है समाज की मुख्यधारा के साथ जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त एक जिला बाल कल्याण समिति होती है, अगर से भी कोई भी बच्चे जो बाल श्रम से मुक्त कराए जाते हैं उन्हें 24 घंटे के अंदर जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, और वो जो है बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों के पुनर्वास, उन सारे कार्यक्रमों को तय करती है। तो हम मतलब कानून में बहुत सारे इस तरीके प्रावधान है कि इन बच्चों को मुक्त करके किस तरीके से उनका पुनर्वास किया जाएगा। इसके अलावा सरकार का एक पैंसी करके पोर्टल भी चलता है, जिसमें अगर बाल श्रम कोई करता दिख रहा है तो वहाँ पे सूचना, मतलब वहाँ पे आप शिकायत भी कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के प्रावधान कानून के अंदर है।
1: जी नीलिमा जी, बाल श्रम को रोकने के लिए अनेक कानून होने के बावजूद बाल मजदूरी अभी भी समाज में जारी है, आप इसका क्या कारण मानती हैं?
0: ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इतने सारे कानून होने के बाद और शिक्षा पे इतना काम होने के बावजूद भी आज जो है बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं। देखिए, इसका एक बड़ा कारण तो ये है कि जो भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं वो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, वो कहीं ना कहीं बाल श्रम में जाएंगे। तो जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं वो एक मतलब बड़ा कारण है कि जिन बच्चे शिक्षा से बाहर हो रहे हैं गरीबी के कारण और दूसरी चीजों के कारण, या कोई बच्चा फेल हो जाता है तो वो एक कारण है। दूसरा कारण जो आर्थिक स्थितियां हैं परिवारों की, और बच्चों को हम जो है सस्ते श्रम की जो मांग है और उसमें हम बच्चे को सस्ते श्रमिक के रूप में देखते हैं, क्योंकि बच्चे से काम कराना बहुत आसान है, तो बच्चे से बच्चा सवाल नहीं कर सकता, बच्चा जो है अपने काम के घंटों को लेकर के बोल नहीं सकता है, बच्चे से आप ज्यादा काम करा सकते हो थोड़ी सी प्रलोभन देके, तो वो सारे के सारे सामाजिक कारण है। समाज के अंदर जो जागरूकता की कमी है कि भाई हम तो चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़े, लेकिन हम जो है दूसरे के बच्चे को अपने वहाँ काम के लिए ले आना चाहते हैं, तो ये भी एक जो सामाजिक सोच है। और इसके अलावा गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कानून का कमजोर क्रियान्वयन, निरक्षर तंत्र की कमी, ये सब चीजों के रीजन है बाल श्रम को जो बनाए हुए हैं आज समाज के अंदर। तो मुझे तो ये सारे कारण लगते हैं, मुझे लगता है कि अगर इन सारे कारणों पे काम किया जाए तभी हम बाल श्रम को खत्म कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, बाल श्रम या बाल अपराध के होने से बचाने के लिए क्या कोई चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है जहां पर शिकायत दर्ज की जा सकती है?
0: जी बिल्कुल, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098 नंबर है, जिस पर शिकायत कर सकते हैं, और ये बच्चों के लिए टोल फ्री नंबर है। इसके अलावा हम जो है जो जिले स्तर पर जिला बाल कल्याण समितियां हैं वहां शिकायत कर सकते हैं, हम जो लेवल इंस्पेक्टर्स होते हैं वहां पर शिकायत कर सकते हैं, और बाल श्रम को रोकने के लिए टास्क फोर्स भी बनाई जाती है जो हर महीने जाकर के बाजारों में और अल्मोड़ा जिले के अंदर भी वो लोग निरीक्षण करते हैं, जिसमें कुछ सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, कुछ जुवेनाइल पुलिस यूनिट के लोग होते हैं, इसके अलावा सरकार का जो डीएलएस है वहाँ से व्यक्ति होता है, CWC से होते हैं, तो ये लोग पूरा निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि कई दुकानों में बच्चे काम तो नहीं करें। तो इस तरीके जो लोग हैं, चाइल्ड लाइन हो, लेबर अधिकारी हो, संप्रवर्तन अधिकारी हो, या फिर इस तरह के टास्क फोर्स के लोग, तो उनको किसी को भी शिकायत की जा सकती है, पुलिस में भी शिकायत की जा सकती है। तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से बच्चों को हम लोग शिकायत करके मुक्त करवा सकते हैं। 2013-14 के आसपास हमने

0: रखा था हरलवा ब्लॉक से काम करते थे, वहाँ बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट थे जो बाल मजदूरी कर रहे थे, जैसे वो नीचे का काम करते थे उस एरिया में। तो हमने उन बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किया, हमने उनके साथ बेस्ट कोर्सेज चलाया, उसके बाद उनको स्कूलों में एडमिशन दिया, क्योंकि आज के दिन आईटी एक्ट भी आ गया। तो जब उन बच्चों को एडमिशन मिला तो उसके बाद हमने देखा कि वो बच्चे पढ़ाई की तरफ गए। तो इस तरीके से हम लोग अभी करीबन 56 ऐसे बच्चे जो पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं, जो आर्थिक बहुत गरीबी में रहते हैं, उन लोगों को स्कूलों के साथ जोड़ने के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान करते हैं और उनको कॉपी किताब की हेल्प करते हैं, विद्यालय में जाकर उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है वो देखते हैं कि कोई बच्चा विद्यालय में जा रहा है नहीं जा रहा है, उन लोगों के लिए विद्यालय के बाद कुछ समय ट्यूशन सेंटर चलाते हैं जिसमें बच्चे आते हैं पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा एक अभियान है जो CACL बोलते हैं, कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो कि सामाजिक संस्थाओं का ही एक नेटवर्क है जो नेशनल लेवल पर है और स्टेट में भी है। तो हम लोग उस नेटवर्क के जरिए भी सरकार के साथ लगातार इस पर ही बातचीत कर रहे हैं कि बाल श्रम का जो कानून है जो संशोधन अधिनियम है उसमें बदलाव किए जाए, कुप्रथा को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। तो ये दोनों इस तरह पर हम लोग काम कर रहे हैं, हम बच्चों के साथ भी सीधे काम कर रहे हैं और हम सरकार के साथ भी लगातार इसको लेकर के बात कर रहे हैं।
1: जी बहुत अच्छी बात, और आपकी संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है समाज में जागरूकता फैलाना कि बच्चों का बचपन बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि ये बाल श्रम कानून से खत्म मतलब पूरी तरीके से खत्म होता है, कानून का एक जरिया होता है चीजों को बनाए रखने का, लेकिन सामाजिक चेतना उससे ज्यादा बड़ी चीज होती है। और क्योंकि बहुत जरूरी है कि समाज के अंदर इस बात को लेकर के मतलब जहाँ हमको दिखता है कि बच्चा कहीं काम कर रहा है तो हम सब लोगों के अंदर गुस्सा आना चाहिए कि भाई ये सब छोटा बच्चा कैसे काम कर रहा है, है ना। तो जब तक इस तरह का समाज हमारा नहीं बनेगा तब तक बच्चों का बचपन बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम जो है इस तरह के समाज को बनाने की तरफ जाएं, हर व्यक्ति बाल श्रम का विरोध करे, हर व्यक्ति ये सोचे कि ये मेरा बच्चा है जो श्रम कर रहा है। जैसे हम अपने बच्चों के बारे में चिंतित रहते हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में चिंतित रहते हैं, वैसे अगर हम उन सारे बच्चों के बारे में चिंतित रहेंगे जहाँ हम देख रहे हैं ऐसे लोगों का बाइकआउट किया जाए, जहाँ बच्चे जो है सामाजिक रूप से जो हम बहिष्कार करते हैं, जैसे हम लोग स्कूल के काम करते हैं जहाँ भी उनके बच्चे काम करते हैं दिखते हैं, तो हम नियोक्ता के पास जाके बोलते हैं कि आप कोई गलत कर रहे हैं और बच्चों को आप काम पे नहीं कर सकते, और उसके जरिए हमने बहुत सारे बच्चों को वापस घर भिजवाया। तो इस तरीके से सामाजिक बहिष्कार हम लोग अपने स्तर पर कर सकते हैं और बच्चों को शिक्षित करने की तरफ बढ़ सकते हैं, बच्चों को स्कूलों के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चा स्कूल में है तो वो बाल श्रम से बचा होगा, लेकिन जैसे ही बच्चा ड्रॉप आउट होगा स्कूल से बाहर होगा तो पोटेंशियल बाल श्रम होगा। कुछ तरीके मैं कहना चाहूंगी कि अगर हम ये सब करेंगे तो समाज में इसको लेकर जरूर जा सकता है।
1: जी नीलिमा जी, समाज सेवा का कार्य आप कर रही हैं, तो बच्चों के भविष्य के बारे में और आज मनाए जा रहे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी?
0: जी मैं तो यही कहना चाहूंगी कि देखिए हर बच्चे को जो है एक सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक है, और ये बच्चों का मानव अधिकार है कि बच्चे बाल श्रम में न जाएं। बच्चा होने के नाते ये उनका अधिकार है और ये एक वैश्विक रूप से ये बच्चों के अधिकार जो है प्रतिस्थापित है। तो हमको बच्चों की शिक्षा के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, हम लोग मिलकर के मतलब एक ऐसे समाज बनाने की तरफ बढ़े जहाँ बच्चे बाल श्रम ना बने। क्योंकि हम लोग एक 45 डेज का कैंपेन चलाते हैं, कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर में, जो हमारा 30 अप्रैल से शुरू होता है, जो कि नेशनल चाइल्ड लेबर डे होता है, एंटी चाइल्ड लेबर डे होता है, और जो 12 जून तक खत्म होता है जो इंटरनेशनल एंटी चाइल्ड लेबर डे है। तो इन 45 दिनों में हम लोग बच्चों के लिए विभिन्न तरह के जागरूकता कार्यक्रम, बच्चे अपनी बात कैसे कह सकते हैं, जो बच्चे काम कर रहे हैं उनकी क्या परिस्थितियां हैं, वो कैसे आकर के अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं सरकारों के साथ, NCPCR के साथ, और जो भी कंसर्न अधिकारी हैं इन सारे लोगों के बीच में, तो बच्चों के अभिव्यक्ति को पहचाने का काम भी करते हैं। और उसके साथ साथ ये एक मौका है जिसमें हम जो है इस तरह की चीजों को रोकने के लिए एक तरीके से हमको लगता है कि हम जो है खड़े हो सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हर बच्चा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और जो इसके मानवाधिकार है उसको मिले।
1: जी नीलिमा जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर बहुत अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर नीलिमा भट्ट, सामाजिक कार्यकर्ता व कार्यकारिणी समन्वयक अमन संस्था की कोऑर्डिनेटर से की गई ये क्षेत्र संकलित बातचीत। और बहनों, आइए अब कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाते हैं बचपन की खुशियों को संजोता ये खूबसूरत सा गीत, क्योंकि बचपन हर गम से बेगाना होता है।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: बहनों, आज है शुक्रवार और आज का हमारा खास सेगमेंट होता है फैशन फ्राइडे। तो आइए आज इसी क्रम में हम बात करते हैं प्राकृतिक सुंदरता को निखारते घरेलू ब्यूटी टिप्स के बारे में। बहनों, सुंदर दिखना हर किसी की चाहत होती है, लेकिन सुंदरता केवल महंगे सौंदर्य प्रसाधनों से नहीं आती, बल्कि असली सुंदरता स्वस्थ त्वचा, साफ सुथरी आदतें और आत्मविश्वास से निखरती है। मैंने हमारे घर में ही ऐसे कई प्राकृतिक चीज़ें मौजूद हैं जो त्वचा और बालों की देखभाल में बहुत उपयोगी हैं। तो आइए जानते हैं कुछ आसान और प्रभावी घरेलू ब्यूटी टिप्स जिन्हें अपनाकर आप अपनी प्राकृतिक सुंदरता को और अधिक निखार सकती हैं। मैंने बात करते हैं चेहरे की सफाई की। दिन में कम से कम 2 बार चेहरा साफ पानी और हल्के फेस वॉश से धोना चाहिए। इससे धूल मिट्टी और अतिरिक्त तेल हट जाता है और त्वचा में ताजगी बनी रहती है। इसके अलावा बहनों, नेचुरल रंगत के लिए जरूरी है पर्याप्त पानी पीना, क्योंकि पानी हमारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और त्वचा को प्राकृतिक चमक प्रदान करता है। इसलिए नेचुरल रंगत के लिए आपको 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए।

साथ ही बहनों, त्वचा को निखारने के लिए बेसन दही और हल्दी का मिश्रण बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसे सप्ताह में एक या दो बार चेहरे पर लगाने से त्वचा साफ व चमकदार बनती है। साथ ही बहनों, शहद की हल्की मसाज से भी त्वचा को नमी प्राप्त होती है और त्वचा मुलायम बनती है। इसके अलावा बहनों, आँखों के नीचे काले घेरे और थकान को कम करने के लिए खीरे के टुकड़ों या गुलाब जल का उपयोग किया जा सकता है। ये आँखों को ठंडक पहुँचाने के साथ साथ ताजगी भी प्रदान करता है। बहनों, स्वस्थ और लंबे बाल हमारी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, इसलिए स्वस्थ और सुंदर बालों के लिए सप्ताह में एक या दो बार नारियल या सरसों के तेल से हल्की मालिश करें। साथ ही संतुलित आहार और पर्याप्त नींद भी बालों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। तो बहनों, महंगे उत्पादों के बजाय प्राकृतिक घरेलू उपायों को अपनाएं, स्वस्थ सुंदर जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। और अब आइए कार्यक्रम में करते हैं आपका मनोरंजन। इस

मैनू इस गीत के साथ अपनी बहन गीता कनवाल को दीजिए आज के घर संसार कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। अगले अंक में होगी आपसे फिर से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी मैंने सुन रही थी कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमरीका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: समाचार। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन। खेल जगत और उत्तराखंड में शोक की लहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय देहरादून दौरे पर। जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। देहरादून जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सत्यापन का कार्य तेजी से जारी। अब तक 1,33,000 से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए गए। और पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कोर्ट और देवल गांव का भ्रमण कर पॉलीहाउस आधारित खेती और लिलियम पुष्प उत्पादन गतिविधियों का निरीक्षण किया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। भारतीय राष्ट्रीय राइफल के संघ के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव के अनुसार राणा ने कल रात दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे मूल रूप से उत्तरकाशी जिले के नैनबाग चिलामू के रहने वाले थे। उनके निधन की खबर से खेल जगत और उत्तराखंड में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसपाल राणा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि जसपाल राणा ने निशानेबाजी में अपनी असाधारण उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित किया। श्री मोदी ने कहा कि उनका निधन भारतीय खेल जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जसपाल राणा के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि निशानेबाजी के क्षेत्र में जसपाल राणा का असाधारण योगदान, ऐतिहासिक उपलब्धियों और युवा खिलाड़ियों को दी गई प्रेरणा ने भारत को वैश्विक स्तर पर गौरवान्वित किया। श्री धामी ने कहा कि उनका निधन खेल जगत, उत्तराखंड और पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय देहरादून दौरे पर हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी कर दिया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति आशियाना परिसर में 132 एकड़ के क्षेत्रफल में विकसित किए जा रहे अत्याधुनिक राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का अवलोकन करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने नैनीताल जिले के सैनिटोरियम रातीघाट कैंची बाईपास मार्ग का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही बेली ब्रिज का शुभारंभ किया। लगभग 19 किलोमीटर लंबे इस महत्वपूर्ण बाईपास मार्ग का निर्माण 37 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ ही कैंची धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि बाईपास मार्ग के निर्माण के बाद कैंची धाम क्षेत्र में लगने वाले भीषण जाम से बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और कर्णप्रयाग सहित समूचे कुमाऊं क्षेत्र के यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और समयबद्ध आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।
1: आज तक जब पूजनी महाराज जी के मंदिर कैंची धाम पर हम लोग आते हैं या फिर देश की और विदेशों से भी जनता आती है, लंबे समय तक रुकना पड़ता है। कभी कभी जो मरीज हैं वो भी फंसे रहते हैं, बड़ा कष्ट होता था। हमारी सरकार ने जो बाईपास दिया, पहले से पैदल मार्ग जैसा था, वो आज पूरा बन गया है। इसके 8 किलोमीटर तक डामरीकरण हो गया है, शेष भाग में प्रगति पर है। इस तरह से जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, अभी लगने वाला है 15 जून से, तो उस समय जो परेशानी है काफी होती है। अब एक वैकल्पिक मार्ग जो सीधे बाहर रातीघाट भेज देगा, जिन जिन को यहाँ से जाना होता है, तो ये सुविधा उनको हो जाएगी कि अब उस जाम में फंसना नहीं पड़ेगा।
0: अवैध निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने बताया कि अवैध निर्माण के अलावा अवैध प्लॉटिंग और व्यावसायिक निर्माणों को लेकर भी सख्ती से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की टीमें व्यावसायिक भवनों में लिफ्ट, अग्निशमन और सीसीटीवी की व्यवस्थाओं की स्थिति की जांच कर रही है, ताकि सुरक्षा के मानक बने रहें और किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
2: दो तरह की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। जैसा मैंने पहले भी बताया था, एक तो इस वर्ष की आपदा में जहाँ जहाँ नाले खालों में अतिक्रमण था और जो बारिश से क्षतिग्रस्त हुआ, उस पर हमने बहुत सख्ती से कहा है कि जहाँ भी जल स्रोत है उस पर निर्माण कार्य न होने दिया जाए या अवैध निर्माण जो है उनको

0: हटाया जाए। इसके साथ ही साथ जो अवैध प्लाटिंग है, अवैध प्लाटिंग के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारे व्यावसायिक निर्माण बड़े स्तर पर हो रहे हैं, उनके जाँच के साथ ही साथ हमने जो उनमें लिफ्ट प्रयोग हो रही है, जो उनके फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, अग्निशमन की वहाँ पर व्यवस्था है कि नहीं, CCTV कैमरे ठीक हैं कि नहीं, उसका भी अलग से हमने निर्देश जारी किया है कि सभी लोग जितने भी इस तरह के कमर्शियल हैं जहाँ पर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा होती है, वो सुरक्षा के जो पहलू हैं, जो मानक हैं और जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी भी जांच करें।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
2: देहरादून जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत मतदाता सत्यापन का कार्य तेजी से चल रहा है। जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग की टीमें घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रही हैं। अब तक जिले में 1,33,000 से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि SIR अभियान के तहत घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं और मतदाताओं को सत्यापन उनका किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंच बनाकर प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए।
3: SIR को लेके हम लोगों की मल्टीपल ECI के लेवल पे भी जो डायरेक्शंस मिले हैं या CEO ऑफिस की तरफ से डायरेक्शंस मिले हैं, वो नीचे डिसेमिनेट कर दिए गए, और हाउस टू हाउस सर्वे जो अभी हमारा स्टार्ट हुआ है उसको भी हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इस संबंध में कहीं कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो मेरे द्वारा ERO या SDMs को बता दिया गया है कि वो कंटिन्यूअसली पॉलिटिकल पार्टीज के टच में रहें और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में और जो ECI की डायरेक्शन है उनके अकॉर्डिंगली ही फर्दर इस पूरे हाउस टू हाउस सर्वे को कंडक्ट करें।
2: पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कोट विकास खंड के कोट और देवल गांव का भ्रमण कर पॉली हाउस आधारित खेती, सब्जी उत्पादन तथा लिलियम पुष्प उत्पादन गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं और उत्पादन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
4: यहाँ पे नरेश जी हैं, एक यहाँ प्रगतिशील किसान, उनका काफी बड़ा उन्होंने कलेक्टिव फार्मिंग के रूप में इस पूरे एरिया को विकसित कर रखा है और उसमें लहसुन, खीरा आदि जो थोड़े से नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं वो भी उन्होंने उगाया और इसे काफी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है और साथ में हमारे कुछ और महिलाओं को भी रोजगार उनके माध्यम से मिला है। तो इस बार हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी यही निर्देशित किया है कि इसको मार्केटिंग में जो भी सपोर्ट हो वो उपलब्ध कराएं और साथ में हमारे जो ये प्रॉफिटेबल, जैसे लहसुन का काफी अच्छा हम लोगों ने प्रॉफिट रेशियो देखा, साथ में लिलियम का अच्छा प्रॉफिट रेशियो है, तो इस तरीके के 10 क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करके हम वो हाई प्रॉफिटेबल क्रॉप्स को इस बार और ज्यादा प्रमोट करें, उनको और ज्यादा सब्सिडी के लिए भी ज्यादा कॉम्पोनेंट उसके लिए रखें, पॉली हाउसेज आदि भी उसी हिसाब से हम लोग इस पर देने का प्रयास करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में व्यापक जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। 12 साल विकास के, जन कल्याण के संदेश के साथ मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारी विधानसभा स्तर पर प्रवास कर जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को लेकर संवाद करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि 12 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारियां तय की हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान भविष्य के चुनावों में पार्टी के जनाधार को और मजबूत बनाने का आधार बनेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन, खेल जगत और उत्तराखंड में शोक की लहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय देहरादून दौरे पर, जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। देहरादून जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सत्यापन का कार्य तेजी से जारी। अब तक 1,33,000 से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए गए और पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कोट और देवल गांव का भ्रमण कर पॉली हाउस आधारित खेती और लिलियम पुष्प उत्पादन गतिविधियों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: FM 100.8 MHz पर हम

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। आगाज कर रहे हैं उस्ताद नसीम अजमेरी के कलाम से, आवाजें भूपिंदर सिंह मिताली सिंह की।

अनुराधा पौडवाल की गायी से गजल के साथ सुगम संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1305।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
1: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
1: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
1: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
1: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
1: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
1: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
1: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
1: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
1: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
1: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
1: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
1: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
1: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
3: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
3: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
3: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
3: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
3: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा

आ पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे।

0: AIR at 90.
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोकगीत। शुरुआत कर रहे हैं गढ़वाली लोकगीत के साथ। गायिका है संगीता जोशी।

कुमाऊनी लोकगीत प्रकाश रावत के स्वर में अभी आपने सुना और आप समापन कर रहे हैं एक गढ़वाली लोकगीत से। कलाकार हैं जीत सिंह नेगी।

0: उत्तराखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। अब समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
3: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल

डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए

0: प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं IMO के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपये और प्रतिमाह 24 लाख रुपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जाँच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि NTA ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि NEET UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है।

0: एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकानी यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है बकरियों में होने वाले रोग। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर दीपिका बिष्ट।
1: पशुपालक बंधुओं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा पशुपालन से जुड़ा हुआ है। पशुधन भारत की राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। खास तौर पर अधिकतर भूमिहीन अथवा सीमांत किसानों की आय का प्रमुख साधन भेड़ व बकरी पालन है। भेड़ बकरियां प्रायः नैसर्गिक वनस्पतियों, सार्वजनिक चारागाहों, फसलों के अवशेषों एवं चारा पेड़ों की पत्तियों पर पाली जाती हैं, जिसमें लागत कम एवं लाभ अधिक मिलता है। इसी कारण बकरियों को गरीब की गाय भी कहा जाता है। बकरी पालन के क्षेत्र में अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि पशु स्वस्थ एवं उत्पादक हो। वर्तमान बदलते परिवेश में सुविधाजनक आवागमन के साथ ही संक्रामक रोगों के फैलने की दर भी बढ़ी है। बकरी पालन के क्षेत्र की यदि बात करें तो PPR पेस्टिसाइड्स

रूमिनेंट्स या बकरी प्लेग इन्हीं संक्रामक रोगों में से एक अत्यंत घातक रोग है। पीपीआर बकरियों और भेड़ों की एक विषाणु जनित संक्रामक बीमारी है। इससे बकरियों और भेड़ में बुखार, मुंह में घाव, दस्त, निमोनिया और बकरी की मौत तक हो जाती है। पीपीआर रोग में मृत्यु दर आमतौर पर 40-70% होती है, जो बहुत गंभीर मामलों में 100% तक बढ़ सकती है। वर्ष 2017 में छपे एक अध्ययन के अनुसार भारत में बकरी पालन क्षेत्र में पीपीआर रोग से सालाना लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यदि हम पीपीआर बीमारी फैलने के कारणों के बारे में बात करें तो पशुओं के निकट संपर्क में रहने से यह रोग फैलता है। बकरियों में भेड़ों की अपेक्षा यह रोग जल्दी फैलता है। पीपीआर वायरस बीमार जानवर की आंख अथवा नाक के श्रावों, लार और मल में पाया जाता है। बीमार जानवर के छींकने और खांसने से यह हवा के माध्यम से तेजी से फैलता है। संक्रमित वायु बूंदों में विषाणु का प्रसार 10 मीटर तक हो सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से यह रोग संक्रमित चारे, पानी तथा बर्तनों के द्वारा भी फैल सकता है। इसके अतिरिक्त रोगी पशु के संपर्क में आए व्यक्ति के जूतों, कपड़ों एवं हाथों द्वारा भी विषाणु एक स्थान से दूसरे स्थान अथवा पशु को फैल सकता है। अतः जो व्यक्ति रोगी पशु की देखभाल कर रहा हो उसे स्वस्थ पशु के पास नहीं जाना चाहिए। पशु मेले, सांझा चराई और झुंड में नए पशुओं को मिलाया जाना रोग के फैलने में सहायक हैं। सभी उम्र और दोनों लिंग नर अथवा मादा अति संवेदनशील होते हैं। 4 महीने से 1 साल के बीच के मेमने बकरियों को पीपीआर रोग होने का खतरा अधिक होता है। रोग के लक्षणों की यदि बात की जाए तो पीपीआर संक्रमण होने के 2-7 दिन में इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यह रोग अचानक तीव्र बुखार जिसमें तापमान 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होता है और मुंह और जीभ में छाले पड़ जाते हैं, जिससे अत्यंत दुर्गंध और होठों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। दस्त से शरीर में पानी की कमी के कारण पशु कमजोर और उसकी चमड़ी सूखी हो जाती है। दस्त में कभी कभी खून भी आता है। पशु चारा खाना व जुगाली करना बंद कर देता है। पशु को लगातार छींकों के साथ आंखें और नाक से साफ पतला श्राव निकलता है, जो कि बाद में द्वितीयक जीवाणु संक्रमण से चिपचिपा गाढ़ा और पीला हो जाता है। यह गाढ़ा पीला श्राव जब नाक और मुंह के आसपास सूखकर पपड़ी बन जाता है तो आंखों की श्लेष्मा भी लाल हो जाती है। निमोनिया के कारण पशु घरघराहट के साथ कठिनाई के साथ सांस ले पाते हैं। पशु तेजी से सांस लेते हैं, कभी कभी इतनी तेजी से कि छाती और उदर की दीवार, जिसे हम डायफ्राम भी कहते हैं, सांस के साथ गतिशील दिखती हैं। अत्यधिक पतले दस्त और निमोनिया से कभी कभी 4-6 दिनों में ही पशु की मृत्यु हो जाती है। गाभिन पशुओं में गर्भपात हो सकता है। कुछ बकरियां ज्वर होने के 10-12 दिन तक मर जाती हैं, जबकि अन्य पशु लंबी रोग मोचन अवधि के बाद स्वस्थ हो जाते हैं। पीपीआर रोग के निदान के बारे में यदि बात की जाए तो इसका निदान मुख्यतः 3 प्रकारों से किया जा सकता है। पहला, लक्षणों द्वारा, जिसमें ज्वर, मुंह एवं जीभ में छाले, पपड़ी, दस्त, निमोनिया, कमजोरी, गर्भपात इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा रोगी मृत पशु के पोस्टमार्टम द्वारा भी इसका निदान किया जा सकता है। पोस्टमार्टम में आहार नाल में खून की बढ़ोतरी के कारण लाल रंग की बढ़त हो जाती है। रक्त श्राव के निशानों में आंतों में जेब्रा मार्किंग बन जाती है। नाक की नसिका झिल्ली से रक्त श्राव व अपरदन होने लगता है। फेफड़े में पीप युक्त निमोनिया होता है और नीले धब्बों के साथ लाल रंग के फेफड़े दिखाई देते हैं। वायु मार्ग में लसलसा श्राव भरा रहता है, जिसके कारण पशु को सांस लेने में तकलीफ हो रही होती थी। प्लीहा, जिसे हम स्पीन भी कहते हैं, उसमें सूजन दिखाई देती है। किडनी एवं मूत्र की थैली में रक्ताधिक्य पाया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा प्रकार है जिससे हम इस रोग का निदान कर पाते हैं, वह है प्रयोगशाला में नमूनों की जांच से। इसमें लार व नाक से निकले हुए श्रावों,

0: वह पोस्टमार्टम से लिए गए ऊतकों के नमूनों की प्रयोगशाला में जांच की जाती है। प्रयोगशाला में निर्णयात्मक निदान किया जाता है। इस हेतु स्वर्ण मानक तरीका विषाणु का पृथकीकरण या वायरस आइसोलेशन माना जाता है, परंतु इसमें समय अधिक लगता है। कम समय में अत्यधिक संवेदनशील एवं विशिष्ट जांच हेतु पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तथा सैंडविच अलाइजा तकनीकों द्वारा विषाणु की पहचान की जाती है। इसके अलावा पशु के खून में विषाणु के विरोध में बने प्रतिपिंडों की जांच हेतु कॉम्पिटेटिव अलाइजा तथा विषाणु उदासीनीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। पीपीआर रोग से बचाव हेतु कई तरीके आजमाए जा सकते हैं, लेकिन इस रोग से बचाव का जो पुख्ता तरीका है वह है भेड़ और बकरियों का टीकाकरण। यह एकमात्र प्रभावी तरीका है। लाइव एटेन्यूएटेड पीपीआर वैक्सीन, जो कि आईवीआरआई मुक्तेश्वर द्वारा विकसित है, मार्केट में कई फर्मों में उपलब्ध है। टीकाकरण से पहले भेड़ और बकरियों को कृमिनाशक दवाई देनी चाहिए। टीकाकरण से भेड़ और बकरियों को 3 साल से अधिक समय तक पीपीआर रोग से बचाया जा सकता है। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए 2005 से 2016 के दौरान शुरू किए गए सामूहिक टीकाकरण अभियानों के कारण बीमारी के प्रकोप में 75% से अधिक की कमी आई है। मरी हुई भेड़ और बकरियों को जलाकर पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए एवं उनके संपर्क वाली वस्तुओं का पूर्ण रूप से निस्तारण कर देना चाहिए। बाड़ों और बर्तनों को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। उपचार और सावधानियां भी इस रोग के होने पर इसे फैलाव से रोकती हैं। वायरल रोग होने के कारण पीपीआर का क्योंकि कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, इस हेतु केवल लाक्षणिक उपचार किया जाता है। सबसे पहले स्वस्थ बकरियों को बीमार भेड़ और बकरियों से अलग रखा जाना चाहिए, ताकि रोग को नियंत्रित और फैलाव होने से बचाया जा सके। इसके बाद बीमार बकरियों का इलाज शुरू करना चाहिए। पीपीआर महामारी फैलने पर तुरंत ही नजदीकी सरकारी पशु चिकित्सालय में सूचना देनी चाहिए। फेफड़ों के द्वितीयक जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए पशु चिकित्सक द्वारा निर्धारित ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। आंख, नाक और मुंह के आसपास के घावों को दिन में 2 बार रुई से साफ करना चाहिए। इसके अलावा मुंह के छालों को 0.1% पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल दवा भी कहते हैं, अथवा 5% फिटकरी के घोल से साफ करने के बाद 5% बोरोग्लिसरीन लगाने से बहुत फायदा मिलता है। बीमार बकरियों को पोषक, स्वच्छ, मुलायम, नम और स्वादिष्ट चारा खिलाना चाहिए। रोगी क्षेत्र की भेड़ व बकरियों के आवागमन पर पूरी तरह से रोकथाम लगा देनी चाहिए। पशुशाला को नियमित रूप से फिनाइल से धोना है एवं उसके आसपास चूना पाउडर का छिड़काव करना है। प्रवेश द्वार पर फुटपाथ का प्रबंध करें, ताकि प्रत्येक व्यक्ति या वाहन प्रवेश करते व निकलते समय उसका प्रयोग करे। फुटपाथ में लाल दवा का घोल बनाकर डालें एवं इसे प्रतिदिन बदलें। यदि हम पीपीआर रोग के उन्मूलन की बात करें, तो पीपीआर रोग के उन्मूलन हेतु भारत देश में विश्व के अन्य देशों के साथ मिलकर पीपीआर रोग उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है। इसका वर्तमान उद्देश्य 2030 तक पीपीआर रोग को विश्व से उन्मूलित करने का है। इसके अंतर्गत पूरे देश में व्यापक स्तर पर सभी भेड़ बकरियों को पीपीआर का टीकाकरण कराया जा रहा है। साथ ही पशुओं में प्रतिरक्षा का स्तर को मापने हेतु विभिन्न नैदानिक किटों का भी निर्माण एवं उपयोग किया जा रहा है। कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे पशुपालकों, टीका बनाने वाले व्यावसायिक फर्म के लोगों, पशु चिकित्सकों आदि को अपनी भूमिका का सही प्रकार से वहन करने हेतु प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आशा है कि हमारा देश व पूरा विश्व पोकनी रोग की भांति पीपीआर रोग मुक्त हो जाएगा।
1: बकरियों में होने वाले रोग, खेती की बातें कार्यक्रम में डॉक्टर दीपिका बिष्ट से ये जानकारी अभी श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल

लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, ये दोनों ही प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। शाम 5:05 पर शैल स्वर कार्यक्रम में आज सुनिएगा हेमंत सिंह लोधियाल के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत। संध्या 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा बाल श्रम निषेध दिवस। सिने जगत से के तहत सुनिएगा गीतकार प्रेम धवन के बारे में। आज का इतिहास भी युवा साथी सुनेंगे। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम प्रसारित होगा जिसमें आज चर्चा का विषय रहेगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में वार्ता प्रसारित होगी। खेतों में ना कारखानों में बच्चे जाएं शिक्षालयों में, वार्ताकार होंगी श्रीमती ममता पाटनी। संध्या 6:41 पर भक्ति संगीत सुनिएगा। आज शर्मा बंधु और मोहम्मद रफी के स्वर में भजन आपको सुनवाएंगे। शाम 7 बजे ग्राम जगत कार्यक्रम प्रसारित होगा जिसमें आज की बातें होंगी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आज की आवश्यकता विषय पर। चर्चा सुनिएगा प्रमाणित बीजों का प्रयोग कर लाभ, प्रयोग और उसके लाभ। इसके अलावा एक और चर्चा सुनिएगा परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 7:40 पर, रात 9:15 पर इंद्रधनुष में, रात 10:30 पर सुगम संगीत लेकर हम आएंगे सबरस में रात 8 बजे और रात 10 बजे। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। हाँ श्रोताओं, आपको ये भी बता दें आज रात 9:30 पर श्रोता फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आपके अनुरोध पर भी सुन सकेंगे। तो श्रोताओं, ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

AIR at 90. आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। 2:45 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। और श्रोताओं, एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने बहुत कम आयु में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, एक के बाद एक हिट फिल्में देकर उन्होंने अपने आप को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया। 3 साल में 20 फिल्में देकर उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ और विवाह किया, और मात्र 19 साल की आयु में ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गईं। ये दास्तां है बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दिव्या भारती की। और आज एक ही फनकार में फनकार हैं मशहूर अभिनेत्री दिव्या भारती।

तो श्रोताओं, दिव्या भारती किसी फिल्मी परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखती थी। एक साधारण परिवार से वो आई थी और जब वो कक्षा 9 में पढ़ती थी तभी उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और शुरुआत उन्होंने तेलुगु फिल्म से की थी और उनके फिल्मी करियर में ये फिल्म सुपरहिट रही और वो साउथ इंडस्ट्री की सुपरस्टार बन गई। उन्हीं दिनों राजीव राय ने विश्वात्मा फिल्म में दिव्या भारती को सनी देओल के ऑपोजिट कास्ट किया। इस फिल्म का गीत सात समंदर पार, ये गाना बेहद सुपरहिट रहा। जो आज भी सुनो तो बहुत अच्छा लगता है। आइए सुनते हैं।

दिव्या भारती के लिए कहते हैं कि वो बेहद खुश मिजाज व्यक्तित्व की धनी थी और सभी के साथ काफ़ी मिलजुल कर रहा करती थी। खूब मस्ती करना उनकी आदत थी और बहुत मेहनती थी। उन्होंने एक से बढ़कर एक चर्चित फिल्मों में काम किया, रंग, शोला और शबनम, दीवाना, विश्वात्मा, जान से प्यारा, गीत, दुश्मन जमाना, बलवान, दिल आशना है, दिल का क्या कसूर जैसी कई हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया और अपने दौर की वो सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शुमार थीं। जाने माने निर्माता निर्देशक साजिद नाडियाडवाला से उन्होंने विवाह किया और वो हिंदी अंग्रेज़ी के अलावा मराठी भाषा बोलने में भी निपुण थी। दिव्या भारती की आखिरी फिल्म क्षत्रिय थी, जिसमें सनी देओल, संजय दत्त और रवीनाथ टंडन उस फिल्म में थे और साल 1993 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई।

श्रोता अभी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार, और आज फनकार थी मशहूर अभिनेत्री दिव्या भारती। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं, अपराह्न के बजे हैं 3, लेकर हम आए हैं सदाबहार फिल्मी गीत।

सदाबहार फिल्मी गीत के सभी श्रोताओं को अंजू पांगते का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, हमारी जिंदगी एक राग में बजने वाला साज नहीं, बल्कि इसके साथ सब रंग जुड़े हैं। खुशी के, गम के, मिलन और जुदाई के एक मुकम्मल इंद्रधनुष आप कह सकते हैं सात रंगों वाला। सात रंगों के ख्वाब हों या सात रंगों के सुर, सभी हमें हर दम लुभाते हैं। इन्हीं रंगों से सराबोर हमारी जिंदगी का हर लम्हा है। ये कायनात, प्रकृति, सभी कुछ रंगों की खूबसूरती लिए है। यूं तो प्रकृति के कण कण में

खूबसूरती है, चारों ओर एक से बढ़कर एक रंग बिखरे पड़े हैं। और इन्हीं रंगों में रंग बिरंगे फूलों का जिक्र हो तो बात कुछ और ही होती है, क्योंकि रंग बिरंगे फूल भी हमें कुछ न कुछ प्यारा सा संदेश देते हैं, चाहे उनके मुस्कान की बात हो। जिंदगी में नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ढूंढने की बात हो, हंसने खिलखिलाने की बात हो, हर दम एक खूबसूरत नज़रिए के साथ जिंदगी की बात हो, जिंदगी को जीने की बात हो, तो फूलों से सीखिए। फूल हर दम हमारे साथ जिंदगी को आसान बनाने की एक कोशिश करते हैं अपने मुस्कुराहट के साथ। तो आइए हम भी मुस्कुराते हुए ये प्यारा सा बाजार फिल्म का नगमा सुनते हैं आपके साथ।

लता मंगेशकर और तलत अज़ीज़ की आवाज़ों में बाज़ार फिल्म का नगमा आपने सुना। मखदूम मोहिउद्दीन के बोल थे और खय्याम की तर्ज। श्रोताओं, आजकल आसमां की ओर देखिए तो काले काले ढेर सारे बादल नज़र आ रहे हैं। बादल हैं तो बरसना लाजमी है और ज़रूरी भी है। भीषण गर्मी के बाद बारिश की बूंदें बरसकर हमें सुकून से भर देती हैं और आजकल बारिश भी खूब हो रही है। कुछ ऐसे में यूँ गुनगुनाने की बात बन जाए तो ऐसा तराना सुना जाए।

ये थे लता मंगेशकर, तलत महमूद, उसने कहा था फिल्म में, शैलेंद्र के बोल और तर्ज बनाई थी सलिल चौधरी ने। अगला गाना काला बाजार फिल्म से है, आशा भोसले मन्ना डे की आवाजें, शैलेंद्र का गीत और एस डी बर्मन का संगीत है। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें होंगी, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें होंगी, जमी पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है।

सदाबहार फिल्मी गीत के तहत खूबसूरत सदाबहार नगमे आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं। अगला सदाबहार गाना आंधी फिल्म से लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं, शब्द रचना गुलजार की और धुन तैयार की है आरडी परमन ने। आप गर इन दिनों यहां होते, आप गर इन दिनों यहां होते, हम जमीन पर भला कहां होते। वक्त गुजरा नहीं अभी, वरना रेत पे पांव के निशा होते।

तो श्रोताओं, गीत और नगमों के इस मोड़ से जाते हुए हम भी अब प्रोग्राम के आखिरी मोड़ पर आ चुके हैं, यानी इस कार्यक्रम का समापन का गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिल्म देवता से किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, शब्दकार गुलजार और संगीत से सवारा है राहुल देव बर्मन ने। आइए सुनते हैं आज के इस सदाबहार फिल्मी गीत का आखिरी तराना, जो कि है बहुत ही खूबसूरत।

तो श्रोताओं, सदाबहार फिल्मी गीत के संग आपका साथ आज यहीं तक। अंजू पांगती को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपके सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस समय शाम के 5 बजने वाली हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा आरंभ हो रही है। हमारी सायंकालीन सभा के ये प्रसारण इस समय आकाशवाणी पिथौरागढ़ से मीडियम वेव 187.3 मीटर अर्थात 1602 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बागेश्वर से भी रिले किए जा रहे हैं। सभा के आरंभ में हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्री अमरनाथ यात्रा करने के भक्तों के सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में ये बात कही। गृह मंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। श्री शाह ने तीर्थ यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियों को समन्वित प्रयास करने चाहिए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि एनटीए नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वे नामांकन रद्द किए जाने के चुनाव अधिकारियों के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारियों ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छुपाने पर मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द किया था। सरकार ने

0: खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरतों का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास संकल्प को दोहराया है। सीमा सुरक्षा बल BSF, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की 57वीं सीमा समन्वय बैठक 8 से 21 जून तक नई दिल्ली में BSF मुख्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान आपसी तालमेल वाली गश्त को और मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने, वास्तविक समय में जानकारी साझा करने में सुधार और सीमा पार आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त प्रयासों को तेज करने पर सहमति बनी। वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन सोमवार को गोवा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है पवन ऊर्जा आकांक्षा से वृद्धि तक। यह आयोजन सतत विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं की रूपरेखा को आकार देने में मील के पत्थर के रूप में काम करेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सम्मेलन में पवन ऊर्जा क्षेत्र के अगले चरण में ऊर्जा की मांग में वृद्धि पर चर्चा होगी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में PV सिंधु ने चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में अब सिंधु का मुकाबला जापान की अकानो यामागुची से होगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में कल रात तक बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। घरेलू शेयर सूचकांक आज 2% की मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1695 अंक के उछाल के साथ 75,528 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz पर ही आकाशवाणी अल्मोड़ा है। शाम की 5:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैलसर। शैलसर में आज के कलाकार हैं हेमंत सिंह लोधियाल और साथी

हेमंत सिंह लोधियाल और साथियों की गाई इस कुमावनी लोकगीत के साथ ही हमारा आज का शैलस्वर कार्यक्रम संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले हमारी इस सभा के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। पहले इस सभा के शेष प्रसारणों का विवरण सुनिए।

आज रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम हमारी दिल्ली केंद्र से रिले होगा। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार संध्या 7:30 पर हम अपने देहरादून केंद्र से रिले करेंगे। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत आप सुनेंगे संध्या 7:40 पर, रात्रि 9:15 पर, रात्रि 10:30 पर और फरमाइशी फिल्मी गीतों के साप्ताहिक कार्यक्रम आपके अनुरोध पर रात्रि 9:30 पर। अब से थोड़ी देर बाद शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपने दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आज इस कार्यक्रम में सुनिए सिने जगत से कार्यक्रम, इसके अंतर्गत आपको जानकारी देंगे गीतकार प्रेम धवन के बारे में। उत्तरण कार्यक्रम शाम 5:45 पर प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रीमती ममता पाटनी की वार्ता, खेतों में ना कारखानों में बच्चे जाए शिक्षालयों में। भक्ति संगीत में कुछ भजन सुनिए संध्या 6:41 पर। संध्या 7:00 ग्राम जगत कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा प्रमाणित बीजों का प्रयोग व उसके लाभ। सबरस कार्यक्रम सुनिए रात्रि 8:00 और रात 10:00 पेश होगा सुगम संगीत।

हमारी कल की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होगी प्रातः 5:55 पर। 6:05 पर आप सुनेंगे विचार बिंदु और आराधना कार्य में कुछ भजन सुनिए प्रातः 6:10 पर। आज की बात कार्यक्रम आप सुनते हैं प्रातः 6:40 पर। विविधा कार्यक्रम प्रसारित होगा कल प्रातः 6:50 पर। प्रातः 7:10 पर हम लेकर आएंगे श्री रामचरितमानस गान पाठ से अगला प्रसंग। लोकमंजरी कार्यक्रम में नवीन विष्ट और साथियों के गायी कुमाऊनी लोग भी सुनिए प्रातः 7:30 पर। हमारी सायंकालीन सभा में रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम हमारी दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। आकाशवाणी देहरादून से संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार रिले होंगी। हमारे केंद्र से शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम आप सुनिए प्रातः 8:30 पर। फिल्म संगीत सुनिए फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर में प्रातः 9:05 पर। सुरबहार में प्रातः 10:35 पर। 11 बजे सैनिकों के लिए कार्यक्रम में दिन में 12 बजे फिल्म संगीत मेरी पसंद में। फिल्म संगीत एक फनकार में 2:45 पर। अपराह 3 बजे सदाबहार फिल्म गीत में। संध्या 7:40 पर फिल्म संगीत में और इंद्रधनुष कार्यक्रम में रात्रि 9:15 पर। सबरंग कार्यक्रम पेश होगा 10:05 पर। महिलाओं का कार्यक्रम अर्पण हम लेकर आएंगे दिन में 12:30 पर। कल इस कार्यक्रम में पोषण की पाठशाला में सुनिए स्वास्थ्य का खजाना मौसमी पहाड़ी फल विषय पर श्रोताओं से ही प्रभा पांडे की बातचीत। सुगम संगीत सुनिएगा दिन में 1:15 पर। श्री शंकर की बांग्ला कहानी का हिंदी रूपांतर नाटक हनीमून सुनिए दिन में 1:30 पर। दोपहर 2 बजे उत्तराखंड के लोकगीत और 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम प्रसारित होगा। सायंकालीन सभा में शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे वाणी। उत्तरायण कार्यक्रम 5:45 पर। भक्ति संगीत में भजन होंगे 6:40 पर। संध्या 7 बजे किसान भाई सुनेंगे किसान वाणी। सबरस कार्यक्रम पेश होगा रात्रि 8 बजे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले हमारी सभा के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों की। FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी प्रिय श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र पवन का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, नई नई बातें और कुछ खास पेशकश। तो साथियों, आज के इस अंक में हम सर्वप्रथम आज की बात में बातचीत करेंगे बाल श्रम निषेध दिवस के बारे में। साथ ही इस दिवस के अवसर पर आप सुनेंगे एडवोकेट चंदन सिंह बोरा के साथ हमारी भेंट वार्ता। उसके बाद अंक विशेष के अंतर्गत सिने जगत और अंत में इतिहास के पन्नों से आप जानेंगे आज का इतिहास। और दोस्तों, बातचीत व जानकारी के साथ साथ मनोरंजन का सिलसिला भी जारी रहेगा, जहां हम आपको सुनवाएंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत आज की बात के साथ। साथियों, प्रतिवर्ष 12 जून को विश्व भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सन 2002 में की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य बाल श्रम की समस्या के प्रति

0: लोगों को जागरूक करना तथा प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण बचपन का अधिकार दिलाने के सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना है। दोस्तों, बच्चे किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। उनका स्थान विद्यालयों, खेल के मैदानों और रचनात्मक गतिविधियों में है, न कि कारखानों, होटलों, खदानों या फिर अन्य श्रम प्रधान कार्यों में। बाल श्रम न केवल बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। दोस्तों, सरकारों के साथ साथ समाज की भी यह जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा शिक्षा और अपने सुनहरे भविष्य से वंचित न रहे। आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी जागरूक बने और बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ मिलकर आवाज उठाएं। तो साथियों, इस दिवस के अवसर पर बाल श्रम से जुड़े विभिन्न पहलुओं को जानने समझने के लिए आइए सुनते हैं एडवोकेट चंदन सिंह बोरा के साथ हमारी ये खास बातचीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं सिविल कोर्ट हल्द्वानी और हल्द्वानी टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य एडवोकेट चंदन सिंह बोरा जी। तो सर, सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी।
0: जी, आज 12 जून के दिन बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और सर, इसी दिवस को लेकर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जब हम बाल श्रम शब्द सुनते हैं तो अक्सर अलग अलग धारणाएं बनती हैं। तो सर्वप्रथम आप हमें बताएं कि कानूनी दृष्टि से बाल श्रम का क्या मतलब है।
1: देखिए पवन जी, कानूनी दृष्टि से बाल श्रम का अर्थ है कि किसी भी बच्चे से ऐसा काम या मजदूरी करवाना जो कानून के द्वारा प्रतिबंधित हो या जो उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा या उसका समग्र विकास जो है उसमें बाधा उत्पन्न कर। कुल मिला के ऐसा है कि कोई भी बच्चा जो कि कहीं पे काम कर रहा है और उस काम को करने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसके हेल्थ पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है और उसकी जो सोशल सिक्योरिटी होती है उस पर फर्क पड़ रहा है और जो उसका पूरा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास जो भी होता है वो अवरुद्ध होता है और उस बच्चे की उम्र जो है 14 वर्ष से कम की आयु की होती है, तो वो बच्चा अगर रोजगार में लगा है तो उसे बाल श्रम कहा जाता है जो कि पूरे भारत में प्रतिबंधित है।
0: जी, तो सर इसी संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार लोग यह नहीं समझ पाते कि कौन सा कार्य बाल श्रम की श्रेणी में आता है और कौन सा कार्य नहीं, तो इसे सरल शब्दों में कैसे समझाया जा सकता है।
1: देखिए पवन जी, जैसा कि मैंने कहा कि कोई बच्चा जिससे मतलब कोई भी अगर वो कार्य करवाया जा रहा है उससे उसकी शिक्षा अवरुद्ध हो रही है
0: जी,
1: उसका शारीरिक मानसिक विकास अवरुद्ध हो रहा है तो बाल श्रम की श्रेणी में आता है। लेकिन आप इसको इस चीज से नहीं जोड़ सकते कि कोई बच्चा घर पे कार्य कर रहा है, कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे उसकी पढ़ाई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है
0: जी।
1: वो अपना पढ़ाई करता है, शिक्षा पे पूरा ध्यान दे रहा है, उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है या कोई भी जो उसके बचपन की जो गतिविधियां हैं उस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो बाल श्रम की कैटेगरी में नहीं आएगा। बस बच्चे की शिक्षा और उसका जो मानसिक शारीरिक विकास होता है उसमें बाधा न बने, वो बाल श्रम नहीं माना जाए
0: जी। तो सर ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने हमें बताई। आज के समय में भी हम देखते हैं कि बाल श्रम कहीं ना कहीं हमारे समाज में मौजूद है, तो आपके अनुसार इसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं।
1: देखिए पवन जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कई सालों से, कई 100 सालों से चली आ रही है ना, आज भी कई जगह पे बाल श्रम मौजूद है
0: जी।
1: अब इसके कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कारण तो इसका है आर्थिक तंगी, गरीबी
0: जी।
1: अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वह ये समझता है कि मैं अपने बच्चे से बाल श्रम करवाऊं, कुछ कार्य करवाऊं ताकि वह आय अर्जित करके हमारी मदद कर सके। लेकिन ये सही बात नहीं है, क्योंकि एक बच्चा कितनी आय अर्जित कर सकता है ना
0: जी।
1: और अपनी शिक्षा और अपने बचपन के जो उसके दिन होते हैं, खेलने कूदने के समय, सीखने की उम्र में, उस समय अगर वो बाल श्रम कर रहा है तो ये एक गलत चीज है। दूसरा इसका जो कारण है वो है शिक्षा तक पहुंच। अब देखिए, समाज का काफी ऐसा बड़ा एक क्षेत्र आज भी भारत में मौजूद है जिसके पास शिक्षा की पहुंच नहीं है, मतलब जो शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहा है वो शिक्षा के लिए जागरूक नहीं है
0: जी।
1: तो शिक्षा का अभाव भी एक बहुत बड़ा इसका कारण है। दूसरा बेरोजगारी और कमाई, जो मैंने आपको बताया कि गरीबी, और इसके साथ साथ बच्चे जो होते हैं वो कम पैसों में भी काम कर लेते, कोई भी व्यक्ति उनको कम पैसों पे प्रलोभन देके अपने पास कार्य करवाता है
0: जी,
1: है ना। और एक इसका और

0: कारण है पलायन। अब ऐसा होता है कि गरीब इलाके से जब व्यक्ति बाहर जाता है अपने परिवार को साथ लेके जाता है आय अर्जन के लिए, तो वहाँ पे अगर उसे उतना ही आय अर्जित नहीं हो पाती है जिससे कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, तो वह अपने बच्चों को भी बाल श्रम की तरफ भेजता है, उनसे कहता है कि आप भी आय अर्जित करो। तो ये कई कारण है हमारे समाज में बाल श्रम।
1: बिल्कुल सर। अब यदि हम इस विषय के दूसरे पहलू की बात करें तो बाल श्रम का एक बच्चे के जीवन पर, उसकी शिक्षा पर और उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: देखिए पवन जी, अब बाल श्रम से ऐसा होता है कि बच्चे की सबसे पहली जो होती है कि उसके शिक्षा पर असर पड़ जाता है, उसकी शिक्षा अधूरी रह जाती है, क्योंकि जब वह कार्य कर रहा होता है तो उसके पास इतना समय नहीं हो सकता कि वह विद्यालय जाए, शिक्षा अर्जन करे या पढ़ सके। तो शिक्षा अगर जहाँ से अधूरी हो जाती है तो उसके साथ साथ उसका कौशल विकास भी रुक जाता है,
1: जी
0: जो

0: विद्यालय जाए, शिक्षा अर्जन करे या पढ़ सके। तो शिक्षा अगर जहाँ से अधूरी हो जाती है तो उसके साथ साथ उसका कौशल विकास भी रुक जाता है।
1: जी,
0: जो भविष्य में उसका जो बेहतर रोजगार के अवसर, अगर पढ़ लिख के वो एक अच्छी जगह पहुंच सकता है तो उसके अवसर कम हो जाते हैं। और तीसरा ये हो सकता है कि बाल श्रम अगर कहीं पे कर रहा है बच्चा तो उसका शोषण होना बिल्कुल तय है और उस पर हिंसा होना, इसका भी खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अगर वो कहीं पे कार्य कर रहा है तो अपने शारीरिक और मानसिक विकास के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है।
1: जी,
0: तो उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल सर, आप हमारे श्रोताओं को यह बताइए कि हमारे देश भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए कौन कौन से प्रमुख कानून बनाए गए हैं।
0: देखिए मोहन जी, भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए कई संवैधानिक कानूनी प्रावधान बनाए गए।
1: जी,
0: अगर हम जैसे हम बात करें बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, जिसका संशोधन रूप 2016 में आया है।
1: जी,
0: इसके अंतर्गत क्या होता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कहीं भी कार्य करना पूर्ण रूप से निषेध है।
1: जी,
0: इसके साथ साथ किशोर की परिभाषा इसमें दी गई है कि 14 से 18 वर्ष का जो आयु वर्ग का बच्चा होगा वो किसी भी खतरनाक खदानों में या फैक्ट्रियों में काम नहीं करेगा। इसके साथ साथ एक प्राधिकरण भी इसमें बना दिया गया, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। और इसके साथ साथ एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये एक मतलब बाल श्रम रोकने के लिए एक माइलस्टोन मील का पत्थर साबित हो सकता है, जिसके अंतर्गत ये मैंडेटरी कर दिया गया, ये कानूनन ये संवैधानिक अधिकार दे दिया गया बच्चों को कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। इसके साथ साथ भारत की संविधान का अनुच्छेद 24, इसके अंतर्गत ये अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। यह बच्चों की के लिए एक मतलब मौलिक संवैधानिक सुरक्षा है।
1: अच्छा।
0: और इसके साथ साथ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39E नीति निदेशक तत्वों में यह मेंशन है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों का शोषण, बच्चों का स्वस्थ विकास हो और उन्हें ऐसी परिस्थितियों में काम न करना पड़े जो उनके शारीरिक या मानसिक विकास को नुकसान पहुंचाए। ये कुछ कानून भारत में बनाए गए हैं बाल श्रम को रोकने के लिए।
1: सर, यदि हम आपसे जानना चाहें कि माना कोई व्यक्ति किसी बच्चे से मजदूरी करवाते हुए पाया जाता है तो उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान या फिर दंड निर्धारित किए गए हैं?
0: कोई भी व्यक्ति अगर इस कानून का उल्लंघन करता है, बच्चों से काम करवाता है, उसे काम पर रखता है, तो उसे कम से कम 6 महीने से लेकर 2 साल तक का कारावास हो सकता है या 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। और अगर उस व्यक्ति द्वारा बार बार इसकी पुनरावृत्ति कर दी गई, उसे रोकने के बाद उसकी शिकायत होने के बावजूद वो फिर से दोबारा बाल श्रम करवाता है, अपने वहाँ 14 वर्ष से कम बच्चों को रखता है, तो उसे फिर 1 साल से 3 साल तक की सजा हो सकती है।
1: सर, जैसे कि आपने अभी बताया था कि जो बच्चे फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं या कारखानों में काम कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ कानून भारत देश में बनाए गए हैं, लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि अगर कोई बच्चा घरों पर, दुकानों पर या ढाबों पर या छोटे छोटे प्रतिष्ठानों में अगर वह काम कर रहा है तो क्या उनके लिए भी यही कानून लागू होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल पवन जी, कानून केवल बड़े उद्योगों पर ही नहीं, घरों पर भी हो सकता है लागू, दुकानों पर, होटलों पर, ढाबों पर या कोई भी कार्य जो लैब होती है या कोई भी प्रतिष्ठान हो, हर जगह यह कानून लागू होगा। यदि वहाँ बच्चों को अवैध रूप से काम करवाया जा रहा है बच्चों से, तो यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा।
1: जी,
0: जैसे मान लीजिए आप घरों पे ही काम करवा रहे हैं या दुकानों पे या ढाबों पे कहीं पे भी कार्य करवा रहे हैं, उससे तो उसकी शिक्षा तो प्रभावित हो ही रही है ना, उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी, उसके मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ रहा है, तो ये स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्रियों में, खदानों में ही काम करना निषेध है, ये हर जगह कहीं पे भी बच्चों से काम करवाना।
1: बिल्कुल सर, यह बहुत महत्वपूर्ण बात आपने हमें बताई। कई बार सर हम समाज में देखते हैं कि लोग गरीबी का हवाला देकर बाल श्रम को उचित ठहराने की कोशिश करते हैं, तो सर आप इस तर्क को किस प्रकार से देखते हैं?
0: देखिए, अब गरीबी तो वास्तविकता है।
1: जी,
0: गरीबी वास्तविकता है, लेकिन बाल श्रम करवाना उसका कोई समाधान नहीं है। बच्चा, एक बच्चा कितनी आय अर्जित कर सकता है? वो अपनी गरीबी तो मिटा नहीं सकता आय अर्जन से,
1: बिल्कुल
0: ना ही वो अपने घर का खर्चा चला सकता है। तो बच्चों से शिक्षा छुड़वाकर उनसे काम करवाना, ये गरीबी का कोई इलाज नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: तो अगर बच्चा बचपन में पढ़ लिख जाए तो वो, हर बच्चे के अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो फ्यूचर में कुछ बड़ा कर सके। तो अभी बचपन में ही उससे बाल श्रम करवा के उसकी शिक्षा से अगर उसे वंचित कर दिया जाए तो फिर गरीबी का चक्र ये निरंतर बनना रहेगा। अगर गरीबी भगानी है तो बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, उनसे बाल श्रम ना करवाया जाए जिससे कि गरीबी का चक्र टूटे, वो शिक्षित हो और उसके लिए भविष्य में कई प्रकार के रोजगार के अवसर पैदा होंगे, तो उसे कई अवसर मिलेंगे अगर वो शिक्षित है। तो गरीबी इसका कोई वो नहीं है, गरीबी सिर्फ एक वास्तविकता है, उससे हमें लड़ना होगा और बच्चों को उनकी शिक्षा पूरी करनी देनी होगी।
1: वास्तव में सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू आप

0: आपने हम सभी के बीच में रखा। इसी क्रम में सर, अगर हम बात करें हमारे नागरिकों की, तो यदि किसी नागरिक को कहीं बाल श्रम होता हुआ दिखाई देता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे उसकी शिकायत कहाँ करनी चाहिए और इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी?
1: सबसे पहले तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पुलिस इसका सबसे बड़ा समाधान है। तुरंत अगर कोई भी क्विक एक्शन अगर कोई आदमी लेना चाहे
0: जी,
1: तो स्थानीय पुलिस को सूचना दे सकता है। दूसरा, जिला श्रम विभाग होता है हर जिले में, वहाँ पे आदमी संपर्क करके शिकायत दे सकता है, सूचना दे सकता है। इसके साथ साथ आज हर किसी के पास हम देख रहे हैं कि मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, तो व्यक्ति क्या कर सकता है 10-98-1098-1098 पर कॉल करके वहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकता है। और इसके साथ साथ जिला प्रशासन या बाल कल्याण समिति को भी सूचना दे सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें अगर आप कोई सूचना दे रहे हैं या कोई शिकायत कर रहे हैं तो आपकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रखी जाती है
0: जी।
1: तो इस तरह से हम कहीं पे भी इन जो मैंने बताई आपको बातें, स्थानीय पुलिस हो या श्रम विभाग हो या 1098 हो या जिला प्रशासन हो या बाल कल्याण समिति हो, यहाँ पर आप सूचना या कम्प्लेन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभा सकते हैं
0: जी। कहीं ना कहीं सर, यह बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी जानकारी आपने हमें बताई। और सर, अगर हम बात करें हमारे युवाओं की, क्योंकि युवा ही किसी देश का भविष्य होता है, तो हमारे जो युवा साथी हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वे सब बाल श्रम उन्मूलन में किस प्रकार से अपना सकारात्मक योगदान दे सकते हैं?
1: देखिए पवन जी, आपने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, क्योंकि युवा और विद्यार्थी ये मतलब बाल श्रम को रोकने के लिए की फैक्टर साबित हो सकते हैं
0: जी।
1: क्योंकि युवाओं द्वारा या विद्यार्थियों द्वारा क्या हो सकता है कि जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं
0: जी।
1: आज का युवा देखिए, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कितना एक्टिव है, छोटी सी बातें कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है और समाज के हर एक आदमी तक वो बात आसानी से पहुँच जाती है। तो इस तरह से जागरूकता अभियान चलाकर, या जो स्कूल छोड़ चुके बच्चे हैं, कोई बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है, उसके कोई साथी ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और बाल श्रम कर रहे हैं, तो वो अपने साथियों को प्रेरित कर सकता है
0: जी।
1: और दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल है तो सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो आदमी सोशल मीडिया के द्वारा भी, जो भी हमारा युवा पीढ़ी या विद्यार्थी वर्ग है, ये सोशल मीडिया के द्वारा भी जागरूकता अभियान चल सकते हैं और इन चीजों के नकारात्मक परिणामों को सोशल मीडिया से जन जन तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ कई एनजीओ जो होती है, स्वयंसेवी संस्थाएं जो आजकल समाज में एक्टिव है, तो उनके साथ हमारा युवा और विद्यार्थी जुड़कर इस बाल श्रम जैसे विकार को रोक सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: सर,
1: ये बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं आज के युवा और विद्यार्थी।
0: बिल्कुल सर, युवाओं की भूमिका पर आपने जो बात हमसे साझा की, उस पर हम पूरी तरह से सहमत हैं। और अंत में बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, मेरा संदेश तो यही है कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। एक बच्चे का अधिकार ये है कि वो अपने बचपन को बचपन की तरह बिताए, जो खेल कूद वाले दिन है उसके ऐसे बिताए, शिक्षा अपना स्कूल जाए, और इस तरह के जो मतलब बच्चे के हाथ में, मतलब कुल मिलाकर जब जहाँ बच्चे के हाथ में किताबें होनी चाहिए, उसके हाथ में कोई औजार नहीं होने चाहिए
0: जी,
1: है ना। तो हम सब समाज के हर व्यक्ति की यह सोशल लाइबिलिटी है, उनका एक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है कि बाल श्रम जहाँ पे भी उनको होता हुए दिखाई दे उसका विरोध करें, उसकी शिकायत संबंधित विभाग को दें और ऐसा होने से रुकें, और अपना एक जिम्मेदार नागरिक होने की भावना को व्यक्त करें, अपनी भूमिका निभाएं।
0: जी सर, बिल्कुल, आपने एक बहुत ही जरूरी और आवश्यक संदेश हमारे श्रोताओं को दिया है और हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं से यही अपील करते हैं, बाल श्रम की रोकथाम केवल सरकार या किसी एक संस्था की नहीं बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। और सर, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपने इस दिवस को लेकर बहुत उपयोगी और सारगर्भित जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे विश्व बाल श्रम दिवस के अवसर पर एडवोकेट चंदन सिंह बोरा के साथ हमारी भेंटवार्ता कार्यक्रम में। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे सिने जगत के साथ।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है।
3: अरे?

0: डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा,
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये पर
5: साथियों, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में अंक विशेष के अंतर्गत अब पेश है सिने जगत, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस गीतकार की, जिसकी लेखनी ने देशभक्ति को स्वर दिया, प्रेम को शब्द दिए और संवेदनाओं को अमर गीतों में ढाल दिया। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं प्रख्यात गीतकार, संगीतकार और नृत्य निर्देशक प्रेम धवन की। 13 जून 1923 को अम्बाला में जन्मे प्रेम धवन हिंदी सिनेमा के उन बहुआयामी रचनाकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने गीत लेखन, संगीत निर्देशन, नृत्य निर्देशन और अभिनय चारों क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने लाहौर के FC कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की, जहां उनके सहपाठियों में मशहूर शायर साहिर लुधियानवी भी शामिल थे। आगे चलकर दोनों ने हिंदी साहित्य और फिल्म जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी। साथियों, कॉलेज लाइफ से ही प्रेम धवन साहित्य, कला और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे। बाद में वे इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी IPTA से जुड़े, जहां उन्हें पंडित रविशंकर और पंडित उदय शंकर जैसे महान कलाकारों के सानिध्य में संगीत और नृत्य सीखने का अवसर मिला। यही प्रशिक्षण उनके रचनात्मक व्यक्तित्व की मजबूत नींव बना। फिल्मी दुनिया में प्रेम धवन का सफर 1940 के दशक में शुरू हुआ। उन्होंने गीत लेखन के साथ साथ नृत्य निर्देशन भी किया। लेकिन दोस्तों, यदि प्रेम धवन को सबसे अधिक किसी बात के लिए याद किया जाता है तो वह है उनकी गीत रचना। उन्होंने ऐसे गीत लिखे जो समय की सीमाओं को पार कर आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। चंदा मामा दूर के, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन ए वतन हमको तेरी कसम, और मेरा रंग दे बसंती चोला, ये सभी अमर गीत आज भी लोगों के दिलों में अपनी विशेष जगह बनाए हुए हैं। साथियों, प्रेम धवन की विशेषता यह थी कि वे गीत लिखने से पहले पात्र और परिस्थिति को पूरी गहराई से महसूस करते थे। उनके गीत केवल शब्दों का संयोजन नहीं थे, बल्कि भावनाओं की सजीव अभिव्यक्ति थे। यही कारण है कि उनके गीत दशकों बाद भी उतने ही प्रासंगिक और लोकप्रिय हैं। दोस्तों, उनकी प्रतिभा को देश ने भी सम्मान दिया। भारत सरकार ने उन्हें साल 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त उन्हें फिल्म नानक दुखिया सब संसार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 7 मई सन 2001 को मुंबई में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी जीवित हैं। प्रेम धवन का नाम उन रचनाकारों में लिया जाएगा जिन्होंने गीतों को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें संवेदनाओं, संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति बना दिया। तो साथियों, मशहूर गीतकार प्रेम धवन को याद करते हुए आइए सुनते हैं उनके द्वारा लिखा गया ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी अपने रेडियो मित्र पवन के साथ। कार्यक्रम में आइए अब जानते हैं आज यानी 12 जून का इतिहास। दोस्तों, 12 जून साल 2016 में आज ही के दिन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता था। साल 1994 में आज ही के दिन दुनिया के सबसे बड़े ट्विन जेट विमान बोइंग 777 ने पहली उड़ान भरकर नया कीर्तिमान स्थापित किया था। 12 जून सन 1962 में आज ही के दिन अमेरिका के तीन कैदी कड़ी सुरक्षा वाली जेल एल्कट्राज से भागने में कामयाब हुए थे। साथियों, आपको बता दें कि इस जेल से भागना नामुमकिन समझा जाता था और वर्ष 1898 में 12 जून को ही फिलीपींस को स्पेन से आज़ादी मिली। इसी के साथ इतिहास में आज के दिन कुछ महान हस्तियों का निधन भी हुआ था, आइए जानते हैं। 12 जून सन 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मान

0: नित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि सी नारायण रेड्डी का निधन हुआ था। तो साथियों, ये थी देश और दुनिया के इतिहास से जुड़ी आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। कार्यक्रम में आगे बारी होगी आज के प्रश्न की, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल।
1: जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चला है आज के प्रश्न का, लेकिन उससे पहले कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कल हमने प्रश्न पूछा था, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कब हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है 11 जून सन 1897 को। और साथियों, इसी के साथ अब प्रस्तुत है हमारा आज का प्रश्न। प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हम अपने कल के संस्करण में आपको बताएंगे। और श्रोताओं, इसी के साथ अब समय हो चला है कार्यक्रम के समापन का। अभी अपने दोस्त पवन को दीजिए अनुमति, कल फिर आपसे होगी मुलाकात युववाणी कार्यक्रम के एक और नए संस्करण के साथ। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रही थी अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है उत्तरायण कार्यक्रम।

उत्तरायण कार्यक्रम सुननी सभी श्रोताओं के लता का पूर्वक नमस्कार। स्वागत श्रोता हमारे कार्यक्रम उत्तरायण में। श्रोताओं, आज 12 जून हूँ, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाई जा। यह शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2002 में करी गई। जैक मुख्य उद्देश्य बाल मजदूरी जो कि एक समस्या छू उसके उजागर करण और इके जड़ बे खत्म करने के लिए सबू में जागरूकता फैलाने छू। यह दिनक यह महत्व छू, यह दिन के मनाने के महत्व छू कि यह दिन दुनिया भर में लोगों और सरकारी जो संगठन छन उनके बाल श्रमक लीजिए कदम उठाने के लिए प्रेरित करन छू और बच्चों के उनर अधिकार दिलान ताकि हर बच्चे के शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षित बचपन मिल सको। जो कि बाल श्रमिक जो हम बाल श्रम नामते ना है करानू वो वीक वील उन्हें जो बचपन छू और एक स्वस्थ जीवन छू खत्म हैगा। तो भारत तक संविधानक तहत 14 वर्ष बे कम उम्र जो नामतीन हनी उनके कोयले खतरनाक कारखानों खदानों या अन्य जोखिम भरी कामों में लगान जो छू वो अपराध मानी जा, बिल्कुल सख्त मना छू। तो किले कि अगर नानन बच जो बच्चे छन अगर इनके पढ़ाई नहीं कराल और शिक्षा नहीं लेगा तो जो आने वाले देशक भविष्य छू हमर उल्ले खतरे में पड़ सको। किलेकि हर बच्चक अधिकार शिक्षा छू और सबू के शिक्षा पुरपुर अधिकार छू। एक लीजिए जो नांतिनाक बचपन हूँ वो काम में ना बल्कि उनके शिक्षित जो छू हमके करण छे ताकि हमारे जो नांतिन छू अगिन के पढ़ो लिखो और आने वाले जो देशक भविष्य छू वो उन्हों पर निर्भर करो। तो एक लीजिए बाल श्रम निषेध दिवस आजक दिन मनाई जा और सबू के यो ध्यान दें कि नानतीन जो छन वो शिक्षित हणक लीजिए छन, उनर बचपन एक शिक्षित शिक्षा के लीजिए और वीके दगड़ दगड़ उनर जो स्वस्थ स्वास्थ्य छू और जो बचपन छू हंसी खिलन और मतलब अगिन के बढ़ने के लीजिए हूँ। तो उनके यो जो कारखान हनी या अन्य जो काम हनी उन पर नीथो पड़ते हैं। क्योंकि जो छू बचपन में सबों का अधिकार हो शिक्षा लेन एक जो अपन जो बचपन छू के जन। तो यह कह लीजिए यह दिवस के आज मनाई जाए ताकि कोई ले नानतीन जो छू वो कोई ले यह कामक बोझल नी दबी रहो। तो श्रोताओं कार्यक्रम में हम अगेन आपको अगर बातचीत करूँ पहले आपको सुनानू यह गीत।

0: શ્રોતાઓ, કાર્યક્રમે અલ્લે આપુલ યો ગીત સુનો. ગાયક કલાકાર છે અનિલ કુમાર.
1: આપકો પતા હૈ જો સપના કુછ વિકસિત દેશો કી બેટિયા ભી નહીં દેખ સકતી હૈ, વો સપના ભારત કી બેટિયા સાકાર કર રહી હૈ. બેટી બચાઓ બેટી પઢાઓ સે લેકર કે સેના મે સ્થાયી કમિશન તક, ડ્રોન સે લેકર ફાઈટર જેટ્સ ઉરાને તક, ભારત કી બેટિયા નામુમકિન કો મુમકિન કર રહી હૈ.
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है.
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
3: बिना ISI के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो.
4: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो. सारा सामान ISI का ही है.
3: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है.
4: ये तो है. ISI के निशान वाला सामान लाएं,
3: झगड़ा मिटाएं,
4: विश्वास जगाएं.
5: जागो ग्राहक जागो.
0: और श्रोता, कार्यक्रम के अखिन बढ़ानो आपको सुनानो एक वार्ता. खेतों में ना कारखानों में बच्चे जाएंगे शिक्षालयों में. और यो वार्ताकार छी श्रीमती ममता पाटनी.
6: बाल श्रम निषेध दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है. इसे पहली बार 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा शुरू किया गया था. इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में बाल श्रम की गंभीर समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसे जड़ से खत्म करने का प्रयास करना है. बाल श्रम निषेध दिवस के मुख्य बिंदु जैसे बच्चों के शोषण, अवैध मजदूरी को रोकना और उन्हें शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य प्रदान करना है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संयुक्त राष्ट्र और ILO के सहयोग से विश्व स्तर पर समर्थन प्राप्त करना है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाना है. भारत में इसे नियंत्रित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं अभिनय अधिनियम 1986 लागू है. संयोग और भागीदारी, यह दिन सरकार, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों को बाल श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए एक मंच प्रदान करता है. बाल श्रम को समाप्त करने के लिए क्या कारगर उपाय हैं? सबूत हमें यह बताते हैं कि बच्चों को सिखाने में लगाना चाहिए, ना कि काम करने में. विश्व के कई हिस्सों में बाल श्रम में कमी आई है, लेकिन कई क्षेत्रों में ठोस नीतिगत उपयोगों के अभाव में प्रतिरूप उलट गई या उलटाने का खतरा है. COVID-19 के आर्थिक असुरक्षा, स्वास्थ्य संगठन, स्कूल बंद होने और 2020 और 2022 के दौरान सेवाओं में व्यवधान के कारण बाल श्रम के जोखिम को बढ़ावा दिया है. बच्चे, विशेषकर लड़कियां, घर के भीतर भी काम करती हैं और अक्सर घरेलू कामों में बड़ों की मदद करने में लंबा समय बिताती है, जो कि अदृश्य और कम गिना जाता है. बच्चों के श्रम की ये मांगे चाहे सात्विक हो या अजैत्विक, स्कूल में उनकी भागीदारी और सिखाने को प्रभावित कर सकती है और उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और

भविष्य के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिसके तहत बच्चों के अधिगम, सामाजिकरण और विकास में सहयोग दिया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर शिक्षा के विस्तार का संबंध बाल श्रम में कमी से रहा है, फिर भी इस संबंध को और मजबूत करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक बच्चा स्कूल में पढ़े, ना कि खेतों या कारखानों में काम करे। सबूत क्या संकेत देते हैं? सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से नियमित और पर्याप्त नकद हस्ताक्षर प्रदान करने से एक ऐसा परिवारों की गरीबी दूर हो सकती है और स्कूली शिक्षा में भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे बाल श्रम उन्मूलन में योगदान मिलेगा। गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा में निवेश करना महत्वपूर्ण है। पर्याप्त छात्रवृत्ति या स्कूल में भोजन उपलब्ध कराने से स्कूली शिक्षा को अधिक किफायती बनाकर बच्चों के श्रम को कम करने में मदद मिलती है। स्कूल के दिन की अवधि बढ़ाने से स्कूल में बिताए गए समय में वृद्धि करके बाल श्रम को कम किया जा सकता है। शिक्षा और सुशिक्षा को संयोजित करना बड़े बच्चों को आपस स्कूल लाने और बाद में उनके रोजगार के अवसरों में सुधार करने में प्रभावी रहता है। सभी स्तरों की स्कूली शिक्षा तक पहुँचना और उसे पूरा करने में लौकिक असमानताओं को कम करना, लड़कियों द्वारा अवैतिक देखभाल और घरेलू कामों में योगदान को कम करने के लिए आवश्यक है। लड़कियां और लड़कों दोनों को शिक्षित करने से परिवार और उनके समुदायों को लाभ होगा और देशों के सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। माता पिता के लिए बेहतर वेतन और कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करना और औपचारिक बाजार संरचनाओं को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। औपचारिक अर्थव्यवस्थाओं अधिक कर राज्य उत्पन्न करती हैं, जो सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा के वित्त पोषण में सहायक हो सकता है। बाल श्रम को बच्चों पर दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे वे आकाश, खेल और शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। स्वस्थ बाल विकास और वयस्क में सुरक्षित संकरण सुनिश्चित करने के लिए हमें बाल श्रम की रोकथाम और उन मूल्यों में निवेश करना होगा। इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो पारिवारिक आजीविका को सुरक्षित करें, आर्थिक तनाव और सभी बच्चों के लिए सेवाओं में सुधार करने पर केंद्रित हो। सतत विकास लक्ष्यों SDG के लक्ष्य 8.7 को प्राप्त करने के लिए, जिसका उद्देश्य 2025 तक बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करना है, हमें अफ्रीका में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लानी होगी। अफ्रीकी देशों को अनौपचारिकता को दूर करके सभी को सामाजिक संवाद को मजबूत करने की आवश्यकता है। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। पहला, परिवार, नियोक्ताओं, स्कूल शिक्षकों और पूरे समुदाय में एकजुट करके बाल अधिकारों के लिए मजबूत समर्थन जुटाना। दूसरा, बच्चों के हित में एक ऐसा सामाजिक मानदंड स्थापित करना जो बाल श्रम और बाल विवाह की निंदा करता हो। तीसरा, राज्य से आग्रह करना कि वह प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकार के रूप में 18 वर्ष की आयु तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने में पूर्ण निवेश करें। बाल श्रम क्या है? बाल श्रम को एक ऐसी प्रथा के रूप में परिभाषित या समझा जा सकता है, जिससे बच्चों को आकांक्षित या पूर्णकालिक आधार पर किसी भी प्रकार की आर्थिक रूप से लाभकारी गतिविधियों में शामिल होने या नियोजित होने के लिए मजबूर किया जाता है। इस प्रथा में लगे बच्चे आमतौर पर स्कूली शिक्षा जैसे बुनियादी बचपन के अनुभवों से वंचित रह जाते हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से आग्रस्त हो जाते हैं। बाल श्रम के मुख्य कारणों में गरीबी, उचित स्कूली शिक्षा का अभाव और औपचारिकता अर्थव्यवस्था का विकास शामिल है। बाल श्रम के कारण पीड़ित बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण युक्त वातावरण से वंचित होना पड़ता है। उसे शारीरिक और मानसिक आघात भी सहना पड़ता है, जिसका गहरा प्रभाव जीवन भर रह सकता है। शिक्षा से वंचित रहने के अलावा बच्चों को कई प्रकार के दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है, जिससे वह एक खुशहाल और स्वस्थ वयस्क बनने से वंचित रह जाता है। बाल श्रम और भारत। बाल श्रम प्रथा बच्चों के मानसिक और

0: शारीरिक विकास में बाधक है, क्योंकि यह उन्हें उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण उनके बचपन से वंचित कर देती है। बाल श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवस्थाओं में नियोजित करना वर्जित है। खतरनाक व्यवस्थाओं को सूचित इसी अधिनियम में संकलित किया गया है। बाल श्रम की समस्या अध्ययन करने और उनसे निपटने के लिए गुरु द्वास्मी समिति की स्थापना की गई थी। 1986 बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम लागू किया गया है। भारत में बचाए गए बच्चों के पुनर्वास और उनके परिवार के साथ वापस भेजने के मामले में एक बहुत मजबूत प्रणाली है। साथ ही परिवार की गरीबी के जाल से बाहर निकालने के लिए कुछ सहायता भी प्रदान की जाती है। बाल श्रम निषेध एवं अधिनियम अधिकतम 1986 के अनुसार 14 वर्ष की आयु पूरी न करने वाले व्यक्ति को बच्चा माना जाता है। इसका उद्देश्य बाल श्रमिकाओं के कार्य घटकों और कार्य परिस्थितियों को विनियमित करना तथा बाल श्रमिकों को खतरनाक उद्योगों में नियोजित होने से रोकता है। बाल श्रम निषेध एवं अधिनियम संशोधन नियम 2016 वर्ष में संशोधित संविधान को मूल अधिनियम इस प्रकार है। बच्चों को सभी व्यवस्थाओं में नियोजित करने पर रोक लगाने और किशोरियों को खतरनाक वयस्कों और प्रतिक्रियाओं में नियोजित करने पर रोक लगाने तथा उनके संबंधित या अनुसंगित मामलों पर रोक लगाने का अधिनियम में इस संशोधन के अनुसार भारत सरकार अधिनियम का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के लिए कठोर दंड का प्रावधान करेगी। इसके अलावा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए किसी बच्चे या किशोरी को काम पर रखने वाले नियोक्ता का भी मानदंड किया जाएगा। यह अधिनियम सरकार को किसी भी खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले किशोरी के रोजगार पर रोक लगाने की अनुमति भी देता है। बाल श्रम निषेध दिवस 2026 की थीम है, बाल श्रम को रेड कार्ड, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल व वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अल्लापुर वार्ता सुनी। खेतों में ना कारखानों में बच्चे जाएं शिक्षालयों में, वार्ता का अच्छी श्रीमती ममता पाटनी।
2: क्या किसी कारणवश शिक्षा का सपना रह गया अधूरा, तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के साथ कीजिए पूरा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड, जो आपको बेसिक शिक्षा, OBE, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के 103 से अधिक कोर्स के साथ साथ प्रशिक्षण देकर भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए NIOS क्षेत्रीय केंद्र देहरादून से दूरभाष नंबर 01352532592 अथवा वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

0: श्रोताओ, कार्यक्रम में अल्लाह गढ़वाल गीत आप सुनो। गायक कलाकार श्री चंद्रदत्त सुयाल।
1: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: और श्रोताओ, आजकल कतु युवा हमारे जो पहाड़क छन, वहाँ पर पहाड़ों में अनेक रोजगार विकसित करने लग रही, जल उनके भल आय मिलने लग रहे, जिसकी होम स्टे छू और वीके दगड़ दगड़ पहाड़ों के जो उत्पाद हनी।

0: और ऊ इकट कर फिर बाजारों में बेच दी। और वीके दगर दगर जो हमार पहाड़क बंजर खेत पाछू ओके आबाद करने लग रही कृषि के माध्यमन। तो आओ आपको सुनानु यस एक स्वरोजगार करने वाल दो नागरिक युवा हर्ष रूप चौधरी दगर करी गई हमारे क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता।
1: मेरा नाम हर्ष रूप चौधरी है।
2: क्या करते हैं आप?
1: मैं यहाँ पे ये होम स्टे चलाता हूँ और एक पहाड़ी उत्पाद स्टोर जो हमारे यहाँ पे है गांव से कलेक्ट करके सब पहाड़ का आइटम वहाँ पर रखा जाता है।
2: अच्छा, ये बताइए कहाँ रहते हैं आप?
1: ये जगह जो है ये है द्वारहाट ब्लॉक के दुनागिरी क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ पे माँ वैष्णो देवी मंदिर, पांडव खोली, महाअवतार बाबा जी गुफा और भरतकोट ट्रैकिंग के लिए हो गया, मनसा देवी और सुखदेवी करके ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर आदमी आके अपना आराम से यहाँ पे स्टे करके और दो चार दिन इन यहाँ मतलब इन आध्यात्मिक जगहों में घूम के उसका लाभ प्राप्त कर सकता है।
2: अच्छा, ये बताइए जैसे ये होम स्टे आपने खोला है, कब खोला आपने
1: ये होम स्टे? हमने 2023 में स्टार्ट किया था, अभी इसे 3 साल हुए।
2: तो 3 साल जब आपने पहले खोला ना, तो आपने क्या सोच के खोला था?
1: ये रोजगार के पर्पज से, मतलब सरकार जो है इसमें काफ़ी वो चल रहा है और यहाँ मंदिर की ओर से लोग आते हैं, तो हमने कहा कि मतलब ये किया जाए तो मतलब ठीक है।
2: तो ये बताइए कि जैसे इसमें कुछ अनुदान भी दिया जाता है ना सरकार द्वारा, तो आपको भी कुछ मिला उसके थ्रू?
1: सरकार के द्वारा अनुदान तो हमने नहीं लिया था, क्योंकि जो बनाया था हमने अपने लिए बनाया था ये, तो हमने उस हिसाब से फिर कमरों को होम स्टे में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन सरकार अनुदान दे रही है, जो जिस हिसाब से बनाता है, जितने कमरों के हिसाब से बनाता है उस हिसाब से सरकार अनुदान देती है। 30 लाख लगभग इसमें लोनिंग देती है, जिसमें 50% सब्सिडी प्राप्त होती है।
2: तो आपने उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया?
1: नहीं, तो हमने ये पहले बनाया था, रहने के हिसाब से बनाया था, इसलिए हम तो जैसे रोजगार के हिसाब से था तो लोग थे तो अपने रोजगार के लिए मतलब स्टार्ट किया था, तो आज मतलब ठीक है, लोग आते हैं उनको अच्छा लगता है, कमरे अच्छे, खाना पीना अच्छा लगता है, तो जो जाते हैं वो वापस आते हैं।
2: अच्छा, तो आपको लग रहा है इसमें फ़ायदा है?
1: फायदे के रोजगार के हिसाब से अब जहाँ पे जैसे पब्लिक पे है कितना, जो कहाँ पर कितनी भीड़ है क्या है, लेकिन ठीक है, अगर है तो अपना आदमी घर पे है, उसके साथ साथ कृषि कर लेता है, गाय भैंस मतलब गाय वाय रख के उनका डेयरी में दूध दूध लगा सकता है, और होम स्टे है तो कुछ ना कुछ कहीं कहीं से थोड़ा बहुत होके अपना जीवन यापन कर सकता है।
2: मतलब घर पे बैठे बैठे आपका खेती भी हो जाती है और ये सब भी हो जाता है?
1: खेती, पशुपालन और होम स्टे, ये सब चीज़ें हो जाती है।
2: पहाड़ी उत्पाद
1: तो ऐसा है, उसमें ऊपर यहाँ पे मेरी एक मार्केट, जैसे ऊपर दुनागिरी पे एक मार्केट है, वहाँ पे एक स्टोर है जिसमें उसमें भी सरकार द्वारा सहायता प्राप्त की गई थी हमको, जो है लोकल उत्पाद गांव से ही खरीद के और जो जैविक हो ऑर्गेनिक तो उनको खरीद के वहाँ पर रखते हैं हम। जैसे उसमें हो गए पहाड़ी दालें, राजमा, भट, गहत, रेस और बाकी बुरांस का जूस, बाकी ये अचार जो घर पर बनता है वो सब चीज़ वहाँ पर उपलब्ध रहता है।
2: तो ये सब सारी चीज़ें आपके घर से ही होती हैं?
1: हाँ, ये सब घर से, जैसे चाचा ताऊ मतलब ये बनाते हैं, करते हैं इधर, जो भी है उस हिसाब से हम कलेक्ट करते हैं। बाकी जो दालें हैं वो हैं इधर गांव से या जहाँ पे जैसे जो चीज़ें उपलब्ध होती है वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं।
2: अच्छा, ये बताइए जैसे अगर कोई होम स्टे खोलना चाहता है ना, तो उसके लिए क्या क्या उसको प्रक्रिया करनी पड़ती है?
1: होम स्टे खोलने के लिए तो जैसे अगर उनको सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना है तो फिर उसके लिए पर्यटन विभाग से और बैंक से मिलके लोनिंग के लिए प्रोसेस करनी होती है, तो वहाँ से जैसे प्रोसेस फाइल पर पास हो जाती है तो फिर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं।
2: तो होम स्टे में जैसे कहा जाता है कि आप को वही रहना पड़ता है घर के, मतलब जैसे होम स्टे आपने करा है तो जिसने खोला है उसको भी वही रहना पड़ता है?
1: हाँ, ये है होम स्टे जैसे है, होम स्टे में कुछ शर्तें हैं। होम स्टे में अगर आप होम स्टे खोलते हैं तो उस होम स्टे में कोई दुकानें नहीं होनी चाहिए, कोई रेस्टोरेंट ही नहीं होना चाहिए, इस टाइप से सेम घर की तरह घर के चूल्हे का बना, मतलब घर से जो अपने लिए बनाते हुए गेस्टों के हिसाब से उस हिसाब से चलता है होम स्टे, और उसमें किसी भी प्रकार के कोई व्यवसायिक वो नहीं कर सकते हैं होम स्टे में।
2: तो इसके अलावा आपने खेती वेती भी कर रखी है?
1: खेती में यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर अभी आलू लगे हैं, यहाँ जो है यहाँ की दुनागिरी की सबसे फेमस जो होती है वो मूली होती है, तो मूली का सीजन अब आ रहा है जो खेतों में लग चुकी है, और मूली में भी अच्छा मतलब हो जाता है, बरसात होती है तो मूली अच्छी हो जाती है। बाकी राजमा, गढ़ेरी, ये दालें जो और चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मतलब यहाँ पर हो जाती है।
2: तो आप कितनी ज़मीन में करते हो खेती?
1: खेती हमारी है मतलब 5-7 नाली पर तो खेती होती है, बाकी गाय भैंसों के लिए घास होता है।
2: तो गाय वगैरह भी पानी?
1: हाँ, गाय है कुछ, तो जैसे गेस्ट आते हैं उनके लिए जिसने दही दूध कहा तो उपलब्ध हो जाता है, बाकी घर के लिए हो जाता है, कुछ डेयरी में चले जाता है।
2: अच्छा, डेयरी में भी देते हैं आप?
1: डेयरी में भी चले जाते हैं।
2: तो ये जो सारे उत्पाद आप होम स्टे में जो

0: आते हैं उनको खिलाते हैं, आपका घर का ही है
1: ये
0: सारा?
1: सब घर का होता है, जैसे सब्जियां हैं वो है, ये घर से ही घर का जो होता है वो ऑर्गेनिक वही करते हैं। अगर घर पर उपलब्ध नहीं है तो गांव से इधर उधर से कलेक्ट कर लेते हैं, अब जब नहीं हुआ तो तभी मार्केट से लाते हैं, नहीं तो अदरवाइज घर का
0: घर का
1: ही
0: ही हो जाता है।
1: लाते हैं।
0: तो ये होम स्टे में आप किस हिसाब से रूम वगैरह देते हैं और किस हिसाब से खाने का है?
1: रूम जैसे हमारे यहाँ पर रूम है 1000 रुपये भी है, जैसे 4 रूम इधर हैं उधर अटैच वाले हैं 2 रूम, तो वो 2000 के हैं, ये 1000 के हैं,
0: अच्छा,
1: 1000 रुपये।
0: हाँ
1: हाँ, और खाना हो गया उसमें जैसे 150 180, मतलब इस टाइप से बैठता है 150 200 के बीच में एक आदमी का।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और भी है आपके इधर जो आपने मतलब?
1: अब ये जो है देवनागरी क्षेत्र का, मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे पहला होम स्टे है
0: अच्छा,
1: देवनागरी क्षेत्र में।
0: हाँ
1: होटल इससे थे पहले, एक दो बड़े होटल थे, बाकी होम स्टे पहला है, और
0: हाँ
1: अब धीरे धीरे खुल रहे हैं इधर भी,
0: इधर
1: जैसे
0: खुल रहे
1: अभी
0: हैं ना?
1: वर्तमान में 4 5 होम स्टे हो चुके हैं इस देवनागरी क्षेत्र में।
0: देवनागरी क्षेत्र में। अच्छा, और इसके अलावा जी है ना, दाल वाल की खेती होती भी आप?
1: दाल भी होती है, जैसे भट बोते हैं, कोई कोई गहत बो लेते हैं, कहीं रेस बोया, किसी ने मूंग दाल बोई, तो वो मतलब होता है इधर। राजमा बोते हैं, राजमा काफ़ी मात्रा में हो जाता है
0: अच्छा,
1: जब बोते हैं, तो
0: राजमा सही मिलता है यहाँ,
1: राजमा अच्छा मिलता है, अगर किसी को चाहिए तो ऊपर दुकान से मतलब
0: ले
1: ले
0: सकता है।
1: सकते हैं।
0: अच्छा, ये बताइए, पानी का टैंक भी देख रही थी मैं, वो कैसे बनाया आपने, किस पर्पज़
1: पानी
0: से?
1: पानी का टैंक भी हमने, ये जैसे यहाँ पानी की समस्या काफ़ी है क्योंकि ऊंचाई की जगह पे है, तो ये जो पानी का टैंक बना ये 20,000 लीटर का है, कृषि डिपार्टमेंट से सरकार की सहायता से ही बनाया गया है।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: तो
1: तो
0: इसमें भी कुछ मिलता है आपको सहायता?
1: ये तो जो टैंक बना था ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाया था उस समय, जियो टैंक करके इसका वो है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार ने बनाया है। इसकी मेंटेनेंस भी 5 साल तक सरकार मतलब जो जिस कंपनी को उन्होंने दिया था
0: हाँ,
1: उसी की
0: वो
1: है।
0: ही करेगा।
1: हाँ,
0: तो ये कैसे बनाया जाता है?
1: ये जैसे वो इसको तो केवल असेंबल किया जाता है, सारा सामान रेडीमेड आता है, जैसे इसमें अंदर से एक हमने नीचे बेड बनवा दिया इसका, ऊपर से फिर ये कपड़ा लगाते हैं, पन्नी लगाते हैं, उसके बाद टिन लगा के, जाल लगा के, ऊपर से कपड़े से ढक के, मतलब पानी 20,000 लीटर का एक टैंक स्टोर हो जाता है
0: हो जाता है। तो
1: इसमें।
0: जैसे बारिश वगैरह होती है यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं देख रही हूँ बारिश हो रही ना,
1: हाँ,
0: तो वैसे भी कभी मतलब होती है बारिश सम फसल के अनुसार समय पर,
1: नहीं
0: या
1: ये
0: इसलिए बनाया है आपने कि जब बारिश ना हो तो टैंक का पानी यूज़ किया जा सके?
1: नहीं, ये तो जैसे हमारे स्रोत का पानी इसमें हम इकट्ठा करते हैं, हमारा स्रोत है तो वहाँ से इसमें पानी आ जाता है, और जब कमी हुई जैसे स्रोत डाउन हुए तो फिर बरसात का पानी भी इसमें कलेक्ट कर लेते हैं।
0: अच्छा,
1: और बरसात फसलों के हिसाब से, पर गर्मियों में तो नहीं हो पाता, लेकिन बरसात में जैसे होती है तो उसमें थोड़ी फसल अच्छी हो जाती है।
0: तो आलू भी लगा रखे हैं आपने, मैं देख रही थी ना, तो आलू की फसल कितनी हो जाती है उसमें?
1: आलू की फसल तो बरसात पर डिपेंड है, मेन आलू ही है, नहीं तो
0: अच्छा,
1: आलू अगर होगी तो जिस हिसाब से हम लगाते हैं तो मतलब काफ़ी मात्रा में हो जाता है, बिक्री के
0: हाँ
1: लिए होता है
0: देख, बहुत
1: काफ़ी।
0: ज़्यादा लगा रखा है
1: हाँ,
0: ना आपने,
1: मूली
0: हो
1: भी है तो जैसे 100 मन 150 मन ऐसे हो जाता है
0: जाते हैं।
1: काफ़ी। हाँ, पूरे क्षेत्र में देवनागरी क्षेत्र में ये सब्जियों का ही उत्पादन अधिक होता है।
0: अच्छा, मूली और ये आलू
1: मूली,
0: सब्जी।
1: आलू, गिलहरी, राजमा, और क्या कहते हैं बाकी शिमला, अदर सब्जियाँ भी हैं, और लोगों ने पॉली हाउस भी लगा रखे हैं, जैसे गर्मियों में जो सब्जियाँ तो पॉली हाउस में भी उत्पादन
0: तो
1: करते
0: पॉली
1: हैं।
0: हाउस भी आपने अपने थ्रू किया है या वैसे बाहर
1: नहीं,
0: से?
1: पॉली हाउस तो वो भी सरकार की
0: सरकार
1: सब्सिडी
0: के
1: से ही
0: सबसे,
1: लगे हैं,
0: ये सबके जितने भी
1: जितने
0: लगे
1: भी
0: हैं।
1: पॉली हाउस लगे हैं इस क्षेत्र में, सब सरकारी सहायता प्राप्त पॉली हाउस लगे हैं।
0: हाँ, तो उसमें क्या अनुदान दिया जाता है
1: उसमें भी अनुदान है, पहले तो ज़्यादा था, शायद अब 20-30% का रहता है उसमें
0: इसमें
1: भी।
0: ना?
1: हाँ, पॉली हाउस में
0: तो पॉली हाउस में अच्छी हो जाती होगी बेमौसमी साग सब्जियाँ भी या
1: बेमौसमी भी
0: फिर
1: होती है, थोड़ी पानी पे ही है, अगर बारिश होगी तो अच्छी होती है, नहीं तो फिर थोड़ा कम रहता है।
0: कम रहता है ना? अच्छा, कैसा लग रहा है फिर आपको होम स्टे खोल के, इतना बढ़िया आपका होम स्टे है, तो कैसा रिस्पॉन्स है आपका?
1: ये होम स्टे अच्छा है, काफ़ी इधर उधर से लोग आते हैं तो उनसे उठना बैठना होता है, फिर एक वो बन जाता है, तो मतलब काफ़ी जान पहचान हो जाती है, और बहुत बढ़िया मतलब वो है।
0: जैसे हम देखते हैं ना पहाड़ों से चले जाते हैं तब तो, लेकिन ये अगर ऐसे होम स्टे वगैरह खुले हो तो अपने काम के संग संग, खेती बाड़ी के संग संग ये होम स्टे भी हो सकता है ना?
1: तो हाँ, रोजगार के लिए भी काफ़ी हुआ है, जैसे आदमी कह ही रहा था कि जैसे होम स्टे हो गया, अपना कुछ और काम भी है, गांव में रह के एक दो गाय रख ली, थोड़ा खेती बाड़ी है, तो थोड़ा थोड़ा सबसे हो जाता है, अपना जीवन व्यापन अच्छे से चल
0: अच्छे से हो
1: जाता
0: जाता
1: है।
0: है,
1: हाँ
0: और इसके साथ साथ लोग बाहर भी नहीं जाते,
1: हाँ
0: जबकि देखो यहाँ का व्यू वगैरह है बहुत अच्छे हैं,
1: हाँ
0: तो लेकिन ये छोड़ के लोग बाहर चले
1: जी
0: जाते
1: जी
0: हैं
1: जी
0: ना, लेकिन इसी बहाने से क्या होता है, होम स्टे से थोड़ा लोग बाहर के भी आते हैं और अपना काम भी हो
1: बिल्कुल
0: जाता है। तो जैसे कई लोग बाहर जाते हैं ना, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि जैसे बाहर पलायन कर जाते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे कि अपना जो काम आपने इतना फैलाया है, तो इतना देखिए खेती भी है और खूब सारी खेती है आपके, होम स्टे चल रहे हैं, तो आप दूसरों से क्या कहना चाहेंगे?
1: नहीं, जो बाहर जा रहे हैं अब उनकी अपनी हुए, लेकिन यह है कि अगर उनके पास साधन है, संसाधन है, जैसे जमीन है, वो है, तो यहाँ पर पहाड़ में रह के भी मतलब अच्छा कर सकते हैं, जैसे वहाँ वो अपना

0: दिल्ली में रह के एक कमरे में रह के इतना होगा, तो ये पहाड़ में रह के वो मतलब अगर सिस्टम से करता है, सरकारी सहायता प्राप्त है, उनकी जानकारी लेके उनके मतलब काफी कुछ कर सकता है, कोई भी युवा हो तो आके अपना कर सकता है, रिवर्स प्लान करके अपना खेती बाड़ी घर आराम से यहाँ भी कर सकता
1: है। तो आपको कैसा लगता है, अच्छा लग रहा है होम स्टे से, मतलब अच्छी इनकम हो रही है आपको?
0: हाँ ठीक है, अपना जीवन यापन के लिए तो मतलब ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है।
1: चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा,
0: ठीक है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता अल्लापुर स्वरोजगार करने वाले युवा दूनागरी युवा हर्ष रूप चौधरी दगड़ करी गई हमारे क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता सुने।

श्रोताओं, अल्लापुल कार्यक्रम में भाषा पंथक गाई हुई यो गीत सुनो। ये के दगड़ हमर आजक उत्तरायण कार्यक्रम इतिके संपन्न हूँ। कार्यक्रम में अघिन आपू दगड़ फिर भेंट करूँ। तब तक आपू दगड़ी लता कपूर के आगे दियो नमस्कार।

0: अभी श्रोता उत्तरायण कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए

0: तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों ने विभिन्न जिलों में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई और देहरादून में 15 जून से 15 जुलाई तक वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आज देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की नीति तुष्टिकरण नहीं बल्कि संतुष्टिकरण की रही है। उन्होंने कहा कि जनधन योजना, आयुष्मान भारत और अन्य कई कल्याणकारी योजनाओं ने आम जन के जीवन स्तर को बेहतर बनाया है।
2: आज देश के अंदर 41 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 4 करोड़ ऐसे परिवारों को पक्के मकान मिले, 11 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला और अनेक योजनाएं, चाहे वो जनधन योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, इस सभी योजनाओं ने सामान्य आदमी के जीवन में एक जो परिवर्तन, एक वास्तविक बदलाव इन योजनाओं से आया और उनको आगे बढ़ने का अवसर मिला।
1: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों ने विभिन्न जिलों में पत्रकार वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बागेश्वर में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि देश निरंतर विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विश्वास, विकास और राष्ट्रवाद की भावना के साथ कार्य कर रही है।
3: उपलब्धि हमारी ये है कि हमने हर राजस्व गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, हर छोटे छोटे टोकों तक बिजली पहुंचाने का काम किया और इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हमने हर घर तक, हर राजस्व गांव तक रोड पहुंचाने का काम किया और इन 12 वर्षों में 2014 के बाद लकड़ी के चूल्हे गांव गांव में जलाए जाते थे, आज उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हर परिवार को हमने गैस के चूल्हे देने के काम किए, गैस सिलेंडर पहुँचाने का काम किया, ये हमारी उपलब्धि है। और इन 12 वर्षों में देश से आतंकवाद को हमने खत्म करने का काम किया।
1: उधर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पिथौरागढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और ऐतिहासिक उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त करने का कार्य किया गया है।
4: यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल अब पूर्ण हुए हैं और ये 12 साल की जो यात्रा रही है पूरी तरीके से विकासपरक रही है। इस यात्रा का हर एक व्यक्ति भारत के रूप में किसी न किसी योजना से, किसी न किसी प्रकार से, जन कल्याण से उस यात्रा में वो सहभागी रहा है।
1: उधर रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी और अल्मोड़ा में भी कैबिनेट मंत्रियों ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से साझा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे

0: पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। श्रीमती मुर्मू कल भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस बार की पासिंग आउट परेड ऐतिहासिक होने जा रही है। पहली बार महिला कैडेट्स पुरुष कैडेट्स के साथ कदमताल करती हुई नजर आएंगी। इस भव्य समारोह में 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स अंतिम पग भरकर भारतीय सेना के अधिकारी बनेंगे।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। देहरादून जिले की सभी 401 ग्राम पंचायतों और 7 स्थानीय शहरी निकायों में आगामी 15 जून से 15 जुलाई तक विभिन्न बैंकों के माध्यम से वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान संचालित किया जाएगा। ये विशेष अभियान केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक को बैंकिंग, बीमा और पेंशन योजनाओं से जोड़कर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
2: अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही बैंक खातों की रीकेवाईसी, नामांकन अद्यतन और डिजिटल वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने पर भी विशेष बल दिया जाएगा। अभियान का शुभारंभ देहरादून जिले में सहसपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत बुड्ढी से किया जाएगा। शिविर के दौरान बैंक अधिकारी लोगों को विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं की जानकारी देंगे। पात्र लाभार्थियों के नए बैंक खाते खोले जाएंगे तथा बीमा और पेंशन योजनाओं में नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी कराई जाएगी ताकि अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा का लाभ मिल सके। गौरतलब है कि इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा चयनित राज्यों की ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में वित्तीय समावेशन योजनाओं की 100% पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके तहत व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों और शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संतोष थपलियाल।
0: दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मूल रूप से उत्तराखंड निवासी जसपाल राणा के निधन की खबर से खेल जगत और उत्तराखंड में शोक की लहर है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जसपाल राणा के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि निशानेबाजी के क्षेत्र में जसपाल राणा का असाधारण योगदान, ऐतिहासिक उपलब्धियों और युवा खिलाड़ियों को दी गई प्रेरणा ने भारत को वैश्विक स्तर पर गौरवान्वित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन और जन जागरूकता के उद्देश्य से पौड़ी कलेक्ट्रेट सभागार में आज विशेष योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। साथ ही केंद्र सरकार के नमस्ते योग ऐप के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों को योग के महत्व, उसकी वैज्ञानिक उपयोगिता और दैनिक जीवन में योग को अपनाने के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र पांडे ने कहा कि योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखकर दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना आवश्यक है ताकि स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया जा सके।
3: आयुष मंत्रालय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के अनुसार हमने वाइब्रेक ऐप के बारे में जानकारी दी और हम लोगों ने सभी लोगों ने बैठ करके जिला अधिकारी कार्यालय में वाइब्रेक ऐप का योग किया और इसके कारण हम छोटे मोटे तनाव और मानसिक स्ट्रेस से निजात पा सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसको शामिल करेंगे जिससे हम लोग की लाइफ सुदृढ़ और आसान बन सके।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों ने विभिन्न जिलों में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई और देहरादून में 15 जून से 15 जुलाई तक वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

भक्ति संगीत कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं शर्मा बंधुओं की गाई पंडित रामानंद शर्मा की ये भक्ति रचना।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इसी भजन के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz पर ही आकाशवाणी अल्मोड़ा है। संध्या के 6:50 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे देहरादून केंद्र से सुनेंगे गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।

0: पहली खास खबर, केंद्र सरकार का 12 वर्ष पूरा होने का मौका पर प्रदेश का कैबिनेट मंत्रियों अलग अलग जिलों में सरकार की गिनाई सफलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्विदिनों का दौरा पर देहरादून पहुंची। श्री मुर्मू घोल भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में खास मेहमान का रूप में शामिल होली। दिग्गज निशानची और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा को निधन, देश का दगड़ी उत्तराखंड में दुख की लहर। और गैर कानूनी निर्माण तय लेकिन मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई एक सार जारी। खबर एक छोड़ बिटिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगुवाई में केंद्र सरकार का 12 वर्ष पूरा होने का मौका पर आज प्रदेश का कैबिनेट मंत्रियों अलग अलग जिलों में पत्रकारों दगड़ी हुई बथ छुई बथ कैरिकन सरकार की सफलता गिनाए। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैडन बागेश्वर में प्रेस वार्ता कैरिकन केंद्र सरकार की सफलताओं तय गिणान बेरिम बोली कि देश बिना रुकिया विकास और तरक्की का बाटो पर अग्नि चलण छ। उन बोली कि मोदी सरकार विश्वास तरक्की और देश भक्ति की भावना का दगड़ी कार्य करनी छ।
1: उपलब्धि हमारी ये है कि हमने हर राजस्व गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, हर छोटे छोटे टोकों तक बिजली पहुंचाने का काम किया और इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हमने हर घर तक यानी हर राजस्व गांव तक रोड पहुंचाने का काम किया। और इन 12 वर्षों में 2014 के बाद लकड़ी के चूल्हे गाँव गाँव में जलाए जाते थे, आज उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हर परिवार को हमने गैस के चूल्हे देने के काम किए, गैस सिलेंडर पहुँचाने का काम किया, ये हमारी उपलब्धि है। और इन 12 वर्षों में देश से आतंकवाद को हमने खत्म करने का काम किया।
0: उन्हें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्यन पिथौरागढ़ में रचे गए पत्रकारों दगड़ी बातचीत में केंद्र व राज्य सरकार की लोक भलाई की योजना और इतिहास में दर्ज अनोखी सफलताओं को लेखा जोखत है सामने रख। उन बोली कि पिछला 12 वर्षों में देशन उन्नति की नई मिसाल कायम करीन और समाज का आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति तय मजबूत करण कार्य करे गए।
2: यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल अब पूर्ण हुए हैं और ये 12 साल की जो यात्रा रही है पूरी तरीके से यादगारपरक रही है। इस यात्रा का हर एक व्यक्ति भारत के रूप में किसी न किसी योजना से किसी न किसी प्रकार से जन कल्याण से उस यात्रा में वो सहभागी रहा है।
0: उन्हें रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी टिहरी और अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्रियों केंद्र और राज्य सरकार की सफलताओं तय खुलकर बताए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपना द्विदिनों का दौरा पर देहरादून पहुंची। जौलीग्रांट हवाई अड्डा पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंगन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन दगड़ी अन्य बड़ा अधिकारियों ते स्वागत कारी। श्रीमती मुर्मू घोल भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में खास मेहमान का रूप में शामिल होली। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में घोल हूण वाली पासिंग आउट परेड में ही दफा बीजा बथों में इतिहास में दर्ज अनोखी होने वाली च पहली दफा महिला कैडेट्स पुरुष कैडेट्स का दगड़ी कदम ताल कर दी हुए नजर आली। ये बड़ू जलसा में 515 पुरुष और महिला कैडेट्स आखिरी कदम धैर्यकन भारतीय सेना का अधिकारी बनला। देहरादून जिला में खास गहरी जांच पड़ताल एसआईआर की मुहिम का भीतर

0: मतदाता सत्यापन को कार्य तेजी से चलणु च। जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग की टीम घर घर जैकन गिनती प्रपत्रों ते बटनी च। अभी तक जिला में 1,33,000 से अधिक गणना प्रपत्र बटे गए। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान बताई कि SIR मुहिम का भीतर घर घर जैकन गणना प्रपत्र बटे जाना छन और वोट दीण वालों को जांच परख करे जाना छ। उन बोली कि सरकारी तंत्र को पहल काम च कि संगति पात्र वोट दीण वालों तक पहुंचीकन तरीका से मजबूत ढंग से पूर्व करे जा।
1: SIR को लेके हम लोगों की मल्टीपल ECI के लेवल पे भी जो डायरेक्शंस मिले हैं या CEO ऑफिस की तरफ से डायरेक्शंस मिले हैं और नीचे डिसेमिनेट कर दिए गए, और हाउस टू हाउस सर्वे जो अभी हमारा स्टार्ट हुआ है तो इसको भी हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इस संबंध में कहीं कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो मेरे द्वारा ERO या SDMs को बता दिया गया है कि वो कंटिन्यूसली पॉलिटिकल पार्टीज के टच में रहें और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में और जो ECI की डायरेक्शन है उनके अकॉर्डिंगली ही फर्दर इस पूरे हाउस टू हाउस सर्वे को कंडक्ट करें।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: दिग्गज निशानची और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा को ब्याली रात नई दिल्ली में एक अस्पताल में मृत्यु हो गया। वे 49 वर्षों का छाई जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानची का गुरु का रूप में कार्य करना छा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जसपाल राणा की मृत्यु पर गहरू दुख जताई। मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला जसपाल राणा की मृत्यु की खबर से खेल संसार में और उत्तराखंड में दुख का सैलाब छ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंगन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जसपाल राणा का अचानक मृत्यु पर दुख जताई। उन बोली कि निशानची का क्षेत्र में जसपाल राणा को अनोखू गजब का योगदान, इतिहास में दर्ज अनोखी सफलता और जवान खिलाड़ियों ते दिया सीखण भारत ते संसार में देश को मान बढ़ा लो। गैर कानूनी निर्माण ते लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्यवाही एक सार चलनी छ। प्राधिकरण का उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने बताई कि गैर कानूनी निर्माण के अलावा गैर कानूनी तरीका से जमीन बटन और कारोबार कन वाला भवनों में लिफ्ट, आग पर काबू पाण वाला और CCTV की व्यवस्थाओं की स्थिति की जांच करे जाना चाहिए, जैसे सुरक्षा का मानदंड बढ़िया रहन और कै भी बुरी घटना से बचे जैसा।
3: दो तरह की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसमें, जैसा मैंने पहले भी बताया था, एक तो इस वर्ष की आपदा में जहाँ जहाँ नाले खालों में अतिक्रमण था और जो बारिश से क्षतिग्रस्त हुआ उस पर हमने बहुत सख्ती से कहा है कि जहाँ भी जल स्रोत है उस पर निर्माण कार्य न होने दिया जाए या अवैध निर्माण जो है उनको हटाया जाए। इसके साथ ही साथ जो अवैध प्लाटिंग है, अवैध प्लाटिंग के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारे व्यावसायिक निर्माण बड़े स्तर पर हो रहे हैं उनके जाँच के साथ ही साथ हमने जो उनमें लिफ्ट प्रयोग हो रही है, जो उनके फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, अग्निशमन की वहाँ पर व्यवस्था है कि नहीं, CCTV कैमरे ठीक हैं कि नहीं, उसका भी अलग से हमने निर्देश जारी किया है कि सभी लोग जितने भी इस तरह के कमर्शियल हैं जहाँ पर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा होती है वो सुरक्षा के जो पहलू हैं, जो मानक हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उनकी भी जांच करें।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल आयोजन और लाखों ते चैतवाल का उद्देश्य से पौड़ी कलेक्ट्रेट सभागार में आज विशेष योग जागरूकता कार्यक्रम रचे गए। ये मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों ते बनी बनी का योग आसन और प्राणायाम को रियाज करे गया। दगड़म केंद्र सरकार का नमस्कार योग ऐप का दगड़ी अधिकारियों और कर्मचारियों ते योग का फायदा, वे की वैज्ञानिक उपयोगिता और रोजमर्रा का जीवन में योग ते अपनाण का फायदों का बारे में खुली जानकारी दिए गए। जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र पांडेन बोली कि योग न केवल एक दिन तक सीमित रखिकन रोजमर्रा को अलग हिस्सा बनाण आवश्यक छ, जैसे स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र को निर्माण में सहयोग दिए जा सक।
4: आयुष मंत्रालय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के अनुसार हमने वाइब्रेक ऐप के बारे में जानकारी दी और हम लोगों ने सभी लोगों ने बैठ करके जिला अधिकारी कार्यालय में वाइब्रेक ऐप का योग किया और इसके कारण हम छोटे मोटे तनाव और मानसिक स्ट्रेस से निजात पा सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसको शामिल करेंगे जिससे हम लोग की लाइफ सुदृढ़ और आसान बन सके।
0: विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का अवसर पर आज पौड़ी जिला का सरस्वती शिशु मंदिर क्यों कालेश्वर में जिला बाल संरक्षण इकाई की तरफ बिटिक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करे गया। ये मौका पर छात्रों छात्राओं ते बाल अधिकारों, बाल संरक्षण कानूनों और बाल श्रम का

0: गलत परिणामों की खुली जानकारी दिए गए। दगड़म उतें अपना अधिकारों का प्रति चुस्त रहने की और समाज में जागरूकता प्रचारित करने को प्रेरित करेगा। वक्ताओं बोली कि जागरूक समाज और शिक्षित समुदाय ही बाल श्रम जनी कुप्रथाएं समाप्त कर सकता छ। अंत में खास समाचार एक बार दोबारा से। केंद्र सरकार का 12 वर्ष पूरा होने का मौका पर प्रदेश का कैबिनेट मंत्रियों अलग अलग जिलों में सरकार की गिनाई सफलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 दिनों का दौरा पर देहरादून पहुंची। श्रीमती मुर्मू घोल भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में खास मेहमान का रूप में होली शामिल। दिग्गज निशाणजी और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा को निधन। देश का दगड़ी उत्तराखंड में दुख की लहर और गैरकानूनी निर्माण ते लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई एक सार जारी। एका दगड़ी गढ़वली में प्रदेश को खबरों को युवक समाप्त हूं। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 7 बजे ही लीजिए अब सुनिए ग्राम जगत कार्यक्रम।

ग्राम जगत कार्यक्रम सुनने सब श्रोतन के गोकुल नमस्कार। श्रोताओं, आज एक बात प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आज के लिए हमारे लिए जरूरी होगो। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एक यश प्रक्रिया छ जय तहत पानी, जमीन, जंगल और खनिज और जो जंगली जानवर छन, ये संसाधनों विवेकपूर्ण सतत उपयोग करी जाएं। बढ़ती आबादी और अनाधुंध औद्योगिकरण युग में प्राकृतिक संतुलन बढ़ोन लीजिए आजक वक्त में सबसे ठुल अनिवार्यता और आवश्यकता छे। आज प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ये तो जरूरी किले और ये एक मुख्य कारण की छ। उनीवाल पीढ़ी लीजिए हम कतुक उपलब्धता धरनु, यानी कि कतुक न लीजिए कोयला, पेट्रोलियम, खनिज जस संसाधन जो हमारे पास सीमित मात्रा में छन, और आज बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए और अनाधुंध जो बोट न कटान होने लग रहा, जब बहुत सर ज़्यादा मात्रा में हम ये संसाधनों इस्तेमाल करने लग रहा, और अगर इसका हम इस्तेमाल करते रहो तो एक दिन जो हमारे उड़ी वाली पीढ़ी से उन्हें लीजिए नहीं बचल। परिस्थितिक तंत्र संतुलन जंगल न कटाई और अत्यधिक शिकारल जैव विविधता के नुकसान पहुँचने लग रहा। सही प्रबंधन खाद्य श्रृंखला और प्राकृतिक चक्र जैसे पानी चक्र और कार्बन चक्र का टूटना बचे जा सकूँ। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण पर रोक, जो जीवाश्म ईंधन न बहुत ज़्यादा मात्रा में जलनल ग्लोबल वार्मिंग जैस गंभीर समस्या पर ढूंढ लग रही। पर्यावरण अनुकूलन प्रबंधन या प्रदूषण

हम कम कर सकूं। आगे आर्थिक स्थिरता कृषि उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र पूरी तरह प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर छन। संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए स्थिरता सुनिश्चित होन चाहिए और करण चाहिए। हम अपनों के योगदान दे सकूं। पर्यावरण और संसाधन का बचाने के लिए हम 3R सिद्धांत का पालन हम उनका करण चाहिए। कम उपयोग, आवश्यकता अनुसार डीजल छ, पानी छ या जुले अन्य चीज छन उन्हें इस्तेमाल करूँ। अब हम कमरे में भय नहीं रहा और हम उन बिजुल जरवे हम भैरू नहीं गया या पंख चल रहा तो योले कहीं ना कहीं एक साबल नुकसान हम करण लाग रहा। उसके पानी के लिए हम देखनू कि पानी जो नल छन खुलिया रह जानी या टोटी जाग जाग कहते खराब है जाए तो हमारे कर्तव्य हो कि हम वो टोटी को बदल दूँ या पानी को बगड़ है बचूँ। उसके जैसी प्लास्टिक छ कांचक और धातु जैस सामग्री इनके हम रिसाइकिल कर भी नहीं बढ़ा सकूँ। हम के कहूँ कि बहुत सारी चीज़ हमारे पास होनी है, हम थोड़ा सा वो खराब हो गया हमको ठीक नहीं करूँ ना, या कोई चीज़ का कोई मतलब यही है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ अगर वो थोड़ा बहुत ख़राब रहे तो हम ठीक कर सकूँ। हम क्या करूँ फिर तुरंत हम उनका यार नया दूसरे लियाओ नहीं लियाओ तो बेकार हो तो उल्ला हम फिर खेलूँ तो उल्ला कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचूँ, पर्यावरण के लिए नुकसान पहुँचूँ। चीज इनके खेलने बजाय भी दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहें तब हम यो प्राकृतिक जो संसाधन छ जलवायु छ प्रबंधन छ ये हम एक बचा सकूँ। और हम सबने एक भूमिका है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों का हम ध्यान धरूं तो निश्चित तौर पर उन्हीं वाले जो समय छ अगर हम बर्बादी का अल्लब नहीं सोचूँ तो उन्हीं वाले वक़्त में हम उनके बहुत जो हमारे नानतिन छ उन्हें लीजिए बहुत ठूल समस्या हो सके। तो हमारे कर्तव्य हो कि हम आवश्यकता अनुसार कोई चीज़ों का उपयोग करूँ, बेवजह बर्बादी न करूँ। तो यह तो छे आज के बाद कार्यक्रम में आपको सुनू गीत गायक छन दीवान सिंह कनवाल।

मन की बात कहते कू अपनी मन की बात कहते कू मैं एक किसान कणी भल मनन फैग्यू कहते कू अपनी मन की बात कहते।

भूलू कैथे कू कैथे कू कैथे कू अपनी मन की बात कैथे कू कैथे कू कैथे कू कैथे कू अपनी मन की बात।

खेत का हसन विक ठसल हिटन विक झौक ने चा भेट जहई ज चमुखड़ी ज देखी ज खुशी है जा परा हो खेत के हसन विक ठसल हिटन विक झौक ने चा भेट जहई

0: कैथे कू अपनी मन की बात कैथे कू मैं एक किसान कणी भल मानन भैगू कैथे कू अपनी मन की बात कैथे कू अपनी मन
1: की। श्रोतावल्लभ यो गीत सुनी छ गायक छ दिवान सिंह कनुवाल। श्रोताओ कार्यक्रम में आपको सुनुनु परंपरागत खेती पर ग्राम

0: गुट विकासखंड हलवाग का कृषक श्री पान सिंह बिस्टी जी दगे क्षेत्र संगीत संकलित यह भेंटवार्ता।
1: श्रोताओं, आज हम बात करने लग रहे ग्राम गरगुट विकास खंड हलवागा कृषक श्री पान सिंह बिस्ट जुदगर। बिस्ट जी बताओ, जान हो खेत में की करना है आपको?
2: मैं पान सिंह बिस्ट गरगुट बुलाने मैं खेती तो करना छुपे हम थोड़ा बहुत लागरू इन का खेत खेत में खेत आजकल तो बानरों सब आग उजाड़ है और थोड़ा बहुत खेत हम करू इन का जरा सा मडू रखो और थोड़ा कहाड़ भी रखो। कहाड़ मतलब घर टू घर सोयाबीन इस टाइप का आइटम भी रखी।
1: अच्छा, मतलब कतू जमीन नहीं लगभग तुम्हारे पास?
2: जमीन तो दाई बहुत है लेकिन अब थोड़ा बहुत हम ये बाड़खड़ा में करूँ किले की पूरी जमीन में तो कर नहीं सकना किले की पूरी जमीन अब थोड़ा बहुत उसी बंजर कर है तो बानरों और तनर आतंक वजल और थोड़ा बहुत आजकल अब थोड़ा बहुत आदिम करना सुन इनका थोड़ा बहुत जो जो पुराण पुस्तक सुनू करना सुन थोड़ा बहुत अपने बाल पुराण को उनको उजागर कर लो।
1: मतलब शाक पात वगैरह सब हजार
2: वो शाक पात तो अब वही थी घर का बाढ़ करना पड़ने पे थोड़ा बहुत बानर उनका हकून पड़ने पे और मिर्च और तो टमाटर बूट तो बैगना बूट तो इस टाइप का आइटम लगा रखो। ककड़ा लगभग लगा रखिए आप थोड़ा बहुत होना शुरू।
1: मर्च का तो है लगभग
2: मर्च राज मर्च आप लगन पर तो है जाना हुना निकाल लिखा बोरी है जाए पे और अब सूखा बीर और हरी खुशियाने जो वो चीज बेचना लीजिए थोड़ा बहुत अपन खाना लीजिए है जाए थोड़ा बहुत बेचना लीजिए है जाए थोड़ा बहुत करूँ तो मेहनत तो करना पड़नी पे।
1: मतलब सीजन हिसाब से अपन साग सब्जी बेचा?
2: जी जी सीजन हिसाब पर है जैसे तो शिमला मिर्च और तनर सीजन छू आगे बात पूर्व में जब आ रहे जब तेल पाउंड लाई मेथी इस टाइप का आइटम ने।
1: अच्छा, धनी जो ये बेचा ही है बीज कम पे लिखा
2: बीज तो राजू कुछ तो घर बटी जो फल होनी जो बटी निकालू और कुछ बीज अगर बीज सक्सेस नहीं खाया जब फिर हम बाजार बटी लू बाजार पालन।
1: मतलब परंपरागत जो बीज छू आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते
2: हो? परंपरागत जो बीज छू जो हम घर बढ़ू जब गदुआ हो गए और लौकी हो गए तो जहाँ हो गए तो उनको लगन में छोड़ दी तो उन्होंने बीज बड़ा जब उन्होंने बीज भर लू बजाने बीज लो कोई सक्सेस होनी कोई नहीं है सकन।
1: अच्छा अच्छा, तो जो यो और खेत तुम्हारे मन में के और मडू मादिर
2: मडू मादिर बेनू मडू मादिर और मडू मादिर धान भी रखी है मडू मादिर भी रखो और कहाँ बड़ो थोड़ा जो बर्ड बहुत इस टाइप का लग रहा है
1: जैसे कि अब सरकार को नहीं ना मोटा अनाज को ज्यादा बढ़ाओ कबीर।
2: हाँ मोटा अनाज को बढ़ाओ कुने यहाँ तो पहाड़न में राजू तो सामूहिक खेल कम होने पर सामूहिक खेती है नहीं सकन पी लीजिए भारत सरकार अनुदान ले दें और यहाँ सीढ़ी नुमा नंदन खेत भयो अभी मैं अपना पर्सनल जगह जो करना सुन जो पुराण कृषक सुन।
1: जिले मतलब आपको बेचा थोड़ा बहुत आपको खाना लीजिए थोड़ा बेच दीजिए
2: थोड़ा बहुत होने पे थोड़ा बहुत दीदी थोड़ा बहुत बांट दी या तो बाजार ज्यादा हो गए जब बेच दी
1: मतलब सीजन हिसाब से आपको
2: खाना लीजिए और है जहाँ थोड़ा बहुत अगर कारण पर तो थोड़ा मेहनत करना पड़ने पर जरा बानर और सुअरा आतंक ज्यादा होगा पहाड़ में आजकल जो तो उनको जरा देखभाल ही करो जब तो दुख खेत नहीं रहे।
1: सरकारी योजना के लिए आपको लाभ लेना है?
2: सरकारी योजना लाभ तो अब वो दिन तो आ रही है सरकार लाभ आई हम इनको तो नहीं मिले सरकारी लाभ और लेकिन मिले ना वो तो दिनी तो 2000 रुपए जो सालाना दिनी तो 3 किस्त में
1: जैसे बात करनी की परम्परागत कृषि विकास योजना का हम बढ़ावा दिल और रसायन मुक्त बढ़ून छो
2: तुम रसायन तो मुक्ति करूँ ज्यादातर की
1: परंपरागत कृषि विकास योजना बारे में आपको क्यों कौन चाल
2: परंपरागत उसी परंपरागत खेती उर्वरक शक्ति ले खेत अगले बढ़े हैं। अगर तुम रासायनिक खेत कर तो तुम्हें खेत रासायनिक वो मांगनी क्योंकि मट्टी जो है मट्टी खराब हो जाएगी रासायनिक अगर तुम पदार्थ डाला जब खेत में अगर तुम उर्वरक या पर्स या चीज डाला जब लीजिए तुम्हारे खेत बरकरार हो तो लीजिए हानिकारक छो उसी खेत लीजिए हानिकारक छो खेत तो मिट्टी को भुरभुरा बढ़ जाए बिल्कुल खत्म कर जाए उर्वरक शक्ति।
1: और जो जैसे कोई दवा जैसे हम बात करू प्राकृतिक दवा जैसे आप इस्तेमाल कर
2: यूरिया डीएपी इस टाइप का धनी डालू लोग आ गए लेकिन वो चीज खत्म कर दे खेत को
1: जैसे कई लोग अपने घर में बढ़ाई हुई दवाई इस्तेमाल करनी है
2: उसी घर में बढ़ाई हुई करनी पर थोड़ा बहुत करनी जैसे यो परसों में ले लो तुम वो अपन खेती बाती जो डंगर पाला गौमूत्र हो गए और

0: मूत्र जो हूँ तो जो कीटनाशक होनी तो नंदन कीटनाशक जो मूत्र हूँ उनको अगर छिड़काव अच्छा जब गौमूत्र कीर्तन हो जानी
1: जैसे परम्परागत कृषि विकास योजना भर में सरकार को लग रहे ना तो उन लीजिए सामूहिक खेती के लिए बात करने
0: तो सामूहिक तो छह नहीं थी सब पर्सनल करनी सामूहिक यहाँ हेले नहीं सकें सामूहिक लेकिन खेत नंदन सिंह सब अपन अपन खेत पे कोई इति भयो कहकर दोहरा पे भी दोहराली तो सामूहिक में आजकल आदिम कर नहीं जान समूह वाल करनी उसी जो समूह जरूर बड़ रखो वो लोग अपन एक आध चेक लीज में तो हिसाब अपन चेकबंदी कर भी उन्हें खेत करनी प्लस तो मैदानी क्षेत्र में बड़ बढ़िया तरीका घूम सामूहिक खेती उनके लिए सरकार अनुदान ले दें तो उन्हें ज्यादा मात्रा में खेती है फिर हिसाब नंदन पुछा पुछड़ भी नई हिसाब यहाँ चालू
1: सरकार जैसे आजकल जो सामूहिक खेत करनी हुई सरकार अनुदान देने लग रहे हैं खाद दिन है बीज दिन है
0: हाँ वो लाभ उठोनी आज बहुत से लोग हम लोग उठोनो को खबर तो जब आप ब्लॉक में गए जब वहाँ जब किसान मेला लग रहा तो मैं अपन बीज जब पसंद है तुमको बीज लिए अपन बीज अगे खाद अगे वो हाथ बढ़ाई खाद बड़ दिली हूँ तो वो डालो जब मैं थोड़ा सा
1: मतलब कुल मिलाकर जो हमें परंपरागत कृषि बढ़ावा दिन से
0: बढ़ावा दिन से लेकिन उमे यश ना उमे की आपको कोई बीमारी नहीं लागो और उमे तुम्हें खेत ला बच रोल और तुम ला बच रोला परंपरागत खेती कर ला जब जस पहली बार कर ची बुजुर्ग लोग अपन घर वो खाद डाल ची घर बड़ू ची खाद उनको और एक एक मोहत को लागरूने पे डर जाती वो उनको मटर बेर उनको घर रखने पे फिर साल भर बाद भी परसों को फिर खेत में कितने पे तो वो उर्वरक शक्ति खेतने के लिए बढ़ूनी पे और खेत में शुद्ध अनाज और शुद्ध जो तुम यो साग सब्जी लगुना हाँ शुद्ध चीज होने पे और टाइम टाइम पर होने पे यो नहीं कि आजकल हर सीजन में खाड़ मिलना शिमला मिर्च तुमको हर सीजन में मिला धनी हर सीजन में मिला ने तो वो चीजों को सीजन लेवल में हिसाब होने पर वो मैं स्वाद लागू और वो चीज तुम्हें ताकतवर रहे
1: अब आजकल पॉली हाउस का अपना
0: बेल
1: लोग बहुत
0: सारे पॉली हाउस को अपना बेल करने बहुत से खेत करने वो आप रोजगार लीजिए स्वरोजगार लीजिए बढ़िया छू
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल आप स्वरोजगार लीजिए आप कर जैसा जब आप पॉली हाउस लगे बेल वो बितेर ये चीज लगो सा तुम लेकिन पॉली हाउस में मेहनत बहुत छू लेकिन वो एक मट्टी चेंज करना पड़े साल छह छह महीने में
1: अच्छा
0: मट्टी चेंज करो तब जब ये रूम में फल डालू कुछ छह महीने तक अगर तुम लगाए फिर में तुम दोहर वो लगा ला जब वो पैदावार कम कर दो वो मट चेंज करो
1: तो मतलब आप यही चाहते हैं कि परंपरागत कृषि विकास योजना हम सब उनका लाभ लेते
0: हैं सब को लाभ लेते हैं परंपरागत जैसे का हम पहली बार करते आए थे उसके कारण चाहिए रासायनिक खाद्य कम से कम करना चाहिए
1: तो बहुत बहुत जानकारी आपको लोगों को दी आपको बहुत बहुत धन्यवाद
2: श्रोता मल्ला आप सुनी छे परंपरागत खेती पर ग्राम गढ़गुठ विकास खंड हलबागा कृषक श्री पान सिंह बिस्टी जी दगर क्षेत्र संकलित यो बातचीत श्रोताओं हम बात करूँ कि प्रमाणित बीज न हम हमेशा उपयोग करना चाहें यह उच्च गुणवत्ता वाल बीज होनी और जनून के कृषि विभाग या बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा सख्त मान्यों में जांची जा और प्रमाणित करी जा और यह में आनुवंशिक शुद्धता और उच्च अंकुरण क्षमता ले हैं प्रमाणित बीजों जो लाभ छ पैदावार बहुत ज़्यादा हैं और जो हमारे कम से कम 15-20% यह में ज़्यादा उपज प्राप्त हैं और यह बीमारी हैं जैसे कीट और सामान्य जो बीमारी छ उन्हें लीजिए प्रतिरोधी होनी मतलब बीमारी पर लड़ने इन्हें में क्षमता है और फसल का खतरे है मतलब नष्ट होना या कम करनी पौधन में एक रूपता है या उगी फसल एक समान समय पर पकाएं और सब पौध एक जैस मजबूत होनी खरपतवार बलय में मुक्ति मिले प्रमाणित बीजों एक अन्य अनुवांशिक फसलों या खरपतवारों बीच न बराबर है मतलब बिल्कुल नहीं होनी और सरकारी योजनाओं लाभ प्रमाणित बीजों उपयोग कर भी किसानों के सरकारी अनुदान सब्सिडी और

फसल बीमा में बेहतर लाभ मिलूँ। तो हम उनके प्रमाणित बीजों के लिए प्रयोग करना चाहें जो हमारे खेत के उपज के ज़्यादा बढ़नी। आओ कार्यक्रम में आपको सुनो एक गीत, गायक सुरेश प्रसाद सुरीला।

0: अभी श्रोता ग्रामजगत कार्यक्रम सुन रहे थे FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारतीय ऐप न्यूज ऑन एयर पर। ये आकाशवाणी अल्मोड़ा है। संध्या के 7:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में हमारे देहरादून केंद्र से आप सुनेंगे कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के दगड़ मी ज्योति जोशी। पहली मुख्य समाचार। केंद्र सरकारक 12 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर प्रदेशक कैबिनेट मंत्रियों और अलग अलग जिलों में सरकारक उपलब्धियां गिनाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्विदी नौकली जी देहरादून पूजी। श्रीमती मुर्मू भोल भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन। देशक दगड़े उत्तराखंड में ले शोक एक लहर। और अवैध निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी। अब समाचार विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकारक 12 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों और अलग अलग जिलों में पत्रकार वार्ता कर सरकारक उपलब्धियां गिनाई। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैडाल बागशर में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकारक उपलब्धियों को गिने बेर को कि देश निरंतर विकास और प्रगति के बाट पर आगिल के बढ़नो। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विश्वास, विकास और राष्ट्रवाद की भावना के दगड़े काम करने।
2: उपलब्धि हमारी ये है कि हमने हर राजस्व गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, हर छोटे छोटे टोकों तक बिजली पहुंचाने का काम किया। और इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हमने हर घर तक यानी हर राजस्व गांव तक रोड पहुंचाने का काम किया। और इन 12 वर्षों में 2014 के बाद लकड़ी के चूल्हे गाँव गाँव में जलाए जाते थे, आज उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हर परिवार को हमने गैस के चूल्हे देने के काम किए, गैस सिलेंडर पहुँचाने का काम किया। ये हमारी उपलब्धि है। और इन 12 वर्षों में देश से आतंकवाद को हमने खत्म करने का काम किया।
1: वहाँ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्याल पिथौरगढ़ में भई पत्रकार वार्ता में केंद्र व राज्य सरकारें जन कल्याणकारी योजनाओं और ऐतिहासिक उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करो। उन्होंने कहा कि पिछड़े 12 वर्षों में ले देश विकासक नई प्रतिमान स्थापित करी चन और समाजक आखिरी पायदान पर ठाड़ मैसू को सशक्तकरण काम करी गई छू।
3: यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल अब पूर्ण हुए हैं और ये 12 साल की जो यात्रा रही है पूरी तरीके से विकासपरक रही है। इस यात्रा का हर एक व्यक्ति भारत के रूप में किसी न किसी योजना से, किसी न किसी प्रकार से, जन कल्याण से उस यात्रा में वो सहभागी रहा है।
1: वह रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी और अलमण में ले कैबिनेट मंत्रियों केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को खुलवेर बता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपन द्विदिनों के दौर में देहरादून पूजी। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दगड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारियों उनर स्वागत करो। श्रीमती मुर्मू भोल भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में भोल होने वाली पासिंग आउट परेड में यो बार बहुत मायने में ऐतिहासिक होने वाली छू। पहली बार महिला कैडेट्स पुरुष कैडेट्स का दगड़ कदम ताल करती हुए नजर आल। यो भव्य समारोह में 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स आखिरी पग भरवेर भारतीय सेना अधिकारी बनल। देहरादून जिला में विशेष गहरी जांच करणक SIR अभियानक भीतर मतदाता सत्यापनक काम झट चलणो। जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग की टीम घर घर जयबेर गणना कागज पत्र बांटने एल ताले जिलम 1,33,000 है ज्यादा गणना कागज पत्र बांटाली छन। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि SIR अभियानक भीतर घर घर जयबेर गणना कागज पत्र बांटने जानी और मतदाताओं सत्यापन करी जानो। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक प्राथमिकता छू कि हर पात्र मतदाता ताले पहुँच बने बेर प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी ढंग पूर करी जाल।
4: SIR को लेके हम लोगों की मल्टीपल ECI के लेवल पे भी जो डायरेक्शंस मिले हैं या CEO ऑफिस की तरफ से डायरेक्शंस मिले हैं वो नीचे डिसेमिनेट कर दिए गए हैं। हाउस टू हाउस सर्वे जो अभी हमारा स्टार्ट हुआ है तो इसको भी हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इस संबंध में कहीं कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो मेरे द्वारा ERO या SDMs को बता दिया गया है कि वो कंटिन्यूसली पॉलिटिकल पार्टीज के टच में रहें और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में और जो ECI की डायरेक्शन है उनके अकॉर्डिंगली।

श्रोताओं, अल्लाह आपको यह गीत सुनने चाह गायक छी सुरेश प्रसाद सुरीला। यह गीतगत अगर यह का आज ग्राम जगत कार्यक्रम इतिक संपन्न हूँ। प्रस्तुति छी संजय जोशी। गोकुल का आज्ञा दियो। नमस्कार।

0: फर्दर इस पूरे हाउस टू हाउस सर्वे को कंडक्ट करें।
1: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रहा। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
2: दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा बोल रात नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन है गयो। वो 49 वर्षक छी। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों प्रशिक्षकक रूप में कार्यरत छी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त कर रखो। मूल रूपल उत्तराखंड में रूणवाल जसपाल राणा के निधन खबरल खेल जगत और उत्तराखंड में शोक एक लहर छू। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल जसपाल राणा के अचानक निधन पर शोक व्यक्त कर रखो। उन्होंने कहा कि निशानेबाजी क्षेत्र में जसपाल राणा का असाधारण योगदान, ऐतिहासिक उपलब्धियों और युवा खिलाड़ियों को दी गई प्रेरणा भारत को वैश्विक स्तर पर गौरवान्वित करो। अवैध निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी छू। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी बता कि अवैध निर्माण को छोड़वेर अवैध प्लॉटिंग और व्यावसायिक निर्माणों को लेकर सख्तील काम करी जानो। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की टीमें व्यावसायिक भवनों में लिफ्ट, अग्निशमन और सीसीटीवी की व्यवस्थाओं की स्थिति की जांच लेकर ने जल सुरक्षा मानक बनी रहो और कोयला अप्रिय घटना से बची जा सको।
3: ये दो तरह के हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। जैसा मैंने पहले भी बताया था, एक तो इस वर्ष की आपदा में जहाँ जहाँ नाले खालों में अतिक्रमण था और जो बारिश से क्षतिग्रस्त हुआ उस पर हमने बहुत सख्ती से कहा है कि जहाँ भी जल स्रोत है उस पर निर्माण कार्य न होने दिया जाए या अवैध निर्माण जो है उनको हटाया जाए। इसके साथ ही साथ जो अवैध प्लाटिंग है, अवैध प्लाटिंग के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारे व्यावसायिक निर्माण बड़े स्तर पर हो रहे हैं उनके जाँच के साथ ही साथ हमने जो उनमें लिफ्ट प्रयोग हो रही है, जो उनके फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, अग्निशमन की वहाँ पर व्यवस्था है कि नहीं, सीसीटीवी कैमरे ठीक हैं कि नहीं, उसका भी अलग से हमने निर्देश जारी किया है कि सभी लोग जितने भी इस तरह के कमर्शियल हैं जहाँ पर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा होती है वो सुरक्षा के जो पहलू हैं, जो मानक हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उनकी भी जांच करें।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसक सफल आयोजन और जन जागरूकता के उद्देश्य पौड़ी कलेक्ट्रेट सभागार में आज विशेष योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करी गयो। यो मौक पर अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग अलग योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराई गयो। दगड़े केंद्र सरकारक नमस्ते योग ऐपक माध्यमल अधिकारियों और कर्मचारियों को योगक महत्व, वीक वैज्ञानिक उपयोगिता और दैनिक जीवन में योग को अपनोड़क लाभों के बारे में पूरी तरह बटी जानकारी दी गई। जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र पांडेल को कि योग को केवल एक दिन ताले सीमित नहीं रखवेर दैनिक जीवनक अभिन्न हिस्सा बनोड़ जरूरी छू, जैल स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्रक निर्माण में योगदान दी जा सको।
4: आयुष मंत्रालय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के अनुसार हमने वाइब्रेक ऐप के बारे में जानकारी दी और हम लोगों ने सभी लोगों ने बैठ करके जिला अधिकारी कार्यालय में वाइब्रेक ऐप का योग किया और इसके कारण हम छोटे मोटे तनाव और मानसिक स्ट्रेस से निजात पा सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसको शामिल करेंगे जिससे हम लोग की लाइफ सुदृढ़ और आसान बन सके।
2: विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर आज पौड़ी जिला सरस्वती शिशु मंदिर क्यूंकालेश्वर में जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर बटी विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करी गयो। यो मौके पर स्कूली चालचेलियों को बाल अधिकारों, बाल संरक्षण कानूनों और बाल श्रमक दुष्परिणामों पर जानकारी दी गई। दगड़े उनको अपन अधिकारों प्रति सजग ऋण और समाज में जागरूकता प्रचारित करण के लिए प्रेरित करी गयो। वक्ताओं को कि जागरूक समाज और शिक्षित समुदाय मिलबेर बाल श्रम जैसी कुप्रथा को खत्म कर सकनी। केंद्र सरकार खुदरा पेट्रोल पंपों थे संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदण में रोक लगे हैली। सरकार को कि इनको अपनी जरूरत तक पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों थे ही ल्यून होल। यो फैसल पश्चिमी एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में ए बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन कमी को रोकने के लिए ली जा रो। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक अधिसूचना में कहो कि यो प्रतिबंध 90 दिनों तले बनी रोल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार 12 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर प्रदेश कैबिनेट मंत्रियों अलग अलग जिलों में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्विदिनों के लिए देहरादून पूजी। श्रीमती मुर्मू भोल भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि रूप में शामिल हुई। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में

0: स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन। देशक दगड़े उत्तराखंड में ले शोक एक लहर और अवैध निर्माण को लेवेर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी। यह के दगड़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अल्मोड़ा है। संध्या के 7:40 हुई हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में आराधना फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की गाई आराधना फिल्म की इस गीत के बाद फिल्म संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हसरत जयपुरी की शब्द रचना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जवान मोहब्बत फिल्म से। धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए दिल तेरा आशिक फिल्म का गीत, अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल सरों में। गीत समीर का है, संगीत नदीम श्रवण का।

अलका याग्निक और कुमार सानू का गाया गीत हमने आपको सुनवाया था, दिल तेरा आशिक फिल्म से। गीत समीर का था, संगीत नदीम श्रवण का। इसी के साथ हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरस।

आज के ही सबरस कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं चंदन दास की गाई यामिनी दास की इस गजल से।

सबरस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेंद्र मलिक का कलाम। फनकार हैं नीना मेहता और राजेंद्र मेहता।

0: एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर अपडेट के साथ और हर मैच के ताजा हाल के साथ और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल के मैदान की हर बात। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के दिन भर के मुख्य समाचारों पर। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 मेक्सिको में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। पहले मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। ICC T20 महिला क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होगा। पहले मुकाबले में इंग्लैंड और श्रीलंका आमने सामने। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची और जाने माने निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं फुटबॉल के मेगा कार्निवल फीफा विश्व कप के साथ, जिसका आगाज कल मेक्सिको में शानदार रंगारंग कार्यक्रम के साथ हो गया है। विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर अपने अभियान का विजयी आगाज किया। वहीं दूसरे मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने चेकिया पर 2-1 से जीत दर्ज की।
1: विश्व के सबसे बड़े खेल फुटबॉल के सबसे बड़े कार्निवल फीफा विश्व कप की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर के फुटबॉल फैंस पहले ही दिन इस विश्व कप के मोस्ट अवेटेड टूर्नामेंट के लिए उत्साहित नजर आए। प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में बीती रात मेक्सिको में मेजबान टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर फीफा विश्व कप 2026 का धमाकेदार अंदाज में आगाज किया है। एस्टेका स्टेडियम में घरेलू दर्शकों के सामने मेक्सिको का पूरी तरह दबदबा देखने को मिला। मुकाबले की शुरुआत से ही मेक्सिको ने गेंद पर नियंत्रण रखा और लगातार दक्षिण अफ्रीका के डिफेंस पर दबाव बनाया। फीफा विश्व कप 2026 और मैच का पहला गोल गिव नो नेस ने किया। हाफ टाइम तक मेक्सिको 1-0 से आगे था। दूसरे हाफ की शुरुआत में साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका लगा। टीम के खिलाड़ी याया सिथोल ने गोल की तरफ बढ़ रहे मेक्सिको के ब्रायन गुटिरेज को रोकने के चक्कर में उन्हें गिरा दिया, जिसके बाद रेफरी ने तुरंत उन्हें रेड कार्ड थमा दिया। गुटिरेज को रेड कार्ड मिलने के बाद अफ्रीका को दूसरे हाफ में 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इसका फायदा उठाते हुए अनुभवी स्ट्राइकर राहुल जिमेनेज ने शानदार गोल दाग कर मेजबान टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया और टीम की जीत लगभग तय कर दी। मेहमान टीम की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। टीम के खिलाड़ी थेम्बा जवाने को हिंसक व्यवहार के कारण रेड कार्ड दिखाया गया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ 9 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। मैच के अंतिम क्षणों में मेक्सिको को भी झटका लगा जब डिफेंडर सीजर मोंटेस को एक लापरवाही चुनौती के लिए रेड कार्ड दिया गया। हालांकि इस फैसले का मैच के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ा और मेक्सिको की टीम मुकाबले को 2-0 से अपने नाम करने में सफल रही। वहीं दूसरे मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने चेकिया पर 2-1 से रोमांचक जीत दर्ज की। रोमांच से भरपूर मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने दूसरे हाफ में 1-0 से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। मैच के शुरुआत से कोरिया और चेकिया की टीम को गोल करने के कई मौके मिले, लेकिन दोनों ही टीमें इसे बुनाने में नाकाम रहीं। दूसरे हाफ की शुरुआत से ही चेकिया ने आक्रामक खेल दिखाया और टीम को मैच के 59वें मिनट में लाडिस्लाव क्रेजकी ने हेडर के जरिए शानदार गोल करते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद दक्षिण कोरिया ने शानदार वापसी करते हुए 67वें मिनट में हांग इन ब्योम के गोल की मदद से स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। ओ ह्योन ग्यू ने 80वें मिनट में गोल करके दक्षिण कोरिया को मुकाबले में बढ़त दिला दी। इसके बाद कोरिया ने चेकिया को वापसी का कोई मौका नहीं दिया और टीम विश्व कप 2026 का आगाज जीत के साथ करने में सफल रही। विश्व कप में आज सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो फुटबॉल के सबसे बड़े मेगा कार्निवल का आगाज हो चुका है और ऐसा ही एक मंच सजने को तैयार है क्रिकेट का, इंग्लैंड और वेल्स में, जहां आज से ICC T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का आगाज होने जा रहा है। इस बार T20 विश्व कप में 12 टीमें भाग लेंगी, जो इस खिताब के लिए अगले 24 दिनों में 33 मुकाबले खेलेंगी और 5 जुलाई को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर ये फाइनल होगा कि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट का नया चैंपियन कौन बनने जा रहा है। कप्तान हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में विमेंस इन ब्लू यानी भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपना पहला T20 विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। सुनिए विश्व कप।

जसवंत सिंह और कविता पौडवाल की गाई जमीर काजमी की इसी गजल के साथ हमारा आज का सबरस कार्यक्रम संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8:30 होने वाली हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से रिली होगा।

0: toughen you up and make you a bit stronger. That's the highlight for me.
1: 35 साल के विलियमसन ने 2010 में टेस्ट और वनडे में और 2011 में T20 में डेब्यू किया था। तीनों फॉर्मेट मिलाकर 378 मैचों की 452 पारियों में 48 शतक और 103 अर्धशतक की मदद से विलियमसन ने 19,346 रन बनाए। विलियमसन ने 110 टेस्ट की 195 पारियों में 33 शतक और 38 अर्धशतक लगाते हुए 9,515 रन बनाए। 175 वनडे की 167 पारियों में 15 शतक और 47 अर्धशतक लगाते हुए 7,256 रन बनाए। इसके अलावा 93 T20 की 90 पारियों में 18 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 2,575 रन बनाए हैं। फॉर्मेट के हिसाब से विलियमसन टेस्ट में पहले, T20 में दूसरे और वनडे में न्यूजीलैंड के चौथे सबसे सफल बल्लेबाज हैं। वो 2015 में ICC के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और 2019 में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर रहे। विलियमसन न्यूजीलैंड के सफलतम कप्तान भी रहे हैं। दाएं हाथ के इस धाकड़ बल्लेबाज ने 40 टेस्ट, 91 वनडे और 75 T20 में न्यूजीलैंड की कप्तानी की है। उनकी कप्तानी में कीवी टीम ने 2019 वनडे विश्व कप का फाइनल खेला था। विलियमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। कीवी टीम उनकी कप्तानी में 2021 T20 विश्व कप का फाइनल भी खेल चुकी है। वहीं विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर 2021 टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था। 2025 में T20 क्रिकेट से संन्यास के बाद आज पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने की विलियमसन की घोषणा के साथ ही न्यूजीलैंड क्रिकेट में एक युग का अंत हो गया। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
2: जाने माने निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का कल निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। सुनते हैं निशानेबाजी के इस गोल्डन बॉय पर हमारी ये रिपोर्ट।
3: 28 जून 1976 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जन्मे जसपाल राणा को बचपन से ही निशानेबाजी में रुचि थी। पिता नारायण राणा सेना के पूर्व अधिकारी थे और वे ही जसपाल के पहले कोच बने। 1988 में महज 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। इसके बाद 1994 में जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में राणा के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें पहचान दिलाई। जसपाल ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि वे ओलंपिक में पदक जीतने में सफल नहीं हुए, लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया और कुल 15 पदक जीते, जिनमें 9 स्वर्ण पदक शामिल है। 2002 के मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 6 पदक अपने नाम किए थे। 2006 के दोहा एशियाई खेलों में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया था और 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में 590 अंक हासिल कर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। खिलाड़ी के रूप में सफलता हासिल करने के बाद जसपाल राणा ने कोच के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उन्होंने अनेक युवा निशानेबाजों को प्रशिक्षित किया और भारतीय निशानेबाजी की नई पीढ़ी को निखारा। उनकी देखरेख में मनु भाकर ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बनी। मनु भाकर ने ओलंपिक पदक जीतने के बाद अपने कोच को लेकर क्या कहा था, आइए सुनते हैं।
4: So I was in the team, I was doing good, but I was not happy with my sport. I was not happy in shooting. So I think he was the one to make me have faith in myself again. I would say that he makes me really happy in my sport and I really enjoy shooting again after like 2 years or so.
3: जसपाल राणा को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पद्मश्री और कोचिंग में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत सरकार तथा खेल जगत की तमाम हस्तियों ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनका निधन खेल जगत के लिए अपूरणीय क्षति है और भारतीय निशानेबाजी में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
2: और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें sportscan@air.gmail पर हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में

0: विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1,000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2,500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितुवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानियत को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक

0: बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 235,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या AFCAT

0: www.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's effort

इंद्रधनुष कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, मेरे जीवन साथी फिल्म से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

इंद्रधनुष कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज के युगल स्वरों में आदमी खिलौना है फिल्म का गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक के गाए आदमी खिलौना है फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष संपन्न हुआ।

अभी आप फिल्म संगीत इंद्रधनुष सुन रही थी। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुई हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का साप्ताहिक कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

साहिल के सुखों से किसे इनकार है, साहिल के सुखों से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। आपके अनुरोध पर कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को आपके दोस्त राजेंद्र खड़ायत का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी दोस्त अपनों के साथ बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे इस कार्यक्रम सुनने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो हमें भी बहुत इंतज़ार है आपकी पसंद के चंद गीत आपको सुनवाने का। तो दोस्तों, गीतों का ये सुरीला सफ़र बस कुछ ही पलों में, पहले थोड़ी सी बातें आपसे। दोस्तों, कहते हैं कि मनुष्य की सामर्थ्य उसकी परिस्थितियों से कहीं अधिक व्यापक और मजबूत होती है। हमारी परिस्थितियां निश्चय ही जीवन पथ में रुकावट पैदा कर सकती हैं, किंतु वे हमारी नियति की अंतिम निर्धारक नहीं होती। दोस्तों, हमारा साहस, संकल्प, धैर्य और कर्म ही हमारे भविष्य की दिशा और दशा तय करते हैं। जीवन का प्रत्येक चरण हमें ये सीख देता है कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। चाहे लक्ष्य कितना ही दुर्गम या कठिन क्यों न लगता हो, यदि उसे पाने का सही प्रयास किया जाए तो सफलता का द्वार अवश्य खुलता है। दोस्तों, प्रतिकूल परिस्थितियां ही मनुष्य के धैर्य, परिश्रम और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा लेती हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि विपत्तियां मनुष्य को निर्बल नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर सुप्त पड़ी क्षमताओं को जागृत करती हैं, यानी उनको जगाती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना साहस और विवेक के साथ करते हैं, तभी हमारा वास्तविक व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। दोस्तों, इसीलिए हमें परिस्थितियों का रोना कभी नहीं रोना चाहिए, बल्कि चुनौतियों को अवसर में बदलना चाहिए। हमें परिस्थितियों से भयभीत होने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास कर आगे बढ़ना चाहिए। और दोस्तों, जब हम अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, वो लक्ष्य हमें अवश्य हासिल होता है। और दोस्तों, इस समय हमारा लक्ष्य है आपको आपके पसंद के गीत सुनाना और आपका मनोरंजन करना। तो चलिए, क्यों देर की जाए। तो इसी क्रम में सबसे पहले जो फरमाइश हमें मिली है, वो हमें भेजी है हमारे बहुत पुराने श्रोता, और ये श्रोता हैं धरनलाल मोड़ा से, ब्रजेश डसीला, दिया डसीला, प्रसून और चीनू। लाला बाजार अल्मोड़ा से हैं हमारे दोस्त बाबा फरहान, खुशबू, संजू, सामिया, आफिया, मुमताज जमान, माही, नीलोफर, शन्नू और सब्बू। इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें मिली है टकाना पिथौरागढ़ से हमारे दोस्त देवराज मर्तोलिया और राकेश ग्वासिकोटी की। तो आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार, गीत गुलजार का है, संगीत खय्याम का। क्यों हिचकियों से मुखबिरी कराते हो हमदम, क्यों हिचकियों से मुखबिरी कराते हो हमदम, कह क्यों नहीं देते हमसे, तुम्हें याद आते हैं हम।

आपके अनुरोध पर कार्यक्रम में अगला गीत हमारे इन सभी श्रोता दोस्तों की पसंद पर। हमारे दोस्त हैं ग्राम खड़िया नौली जयंती अल्मोड़ा से, तीनू नगर कोटी, पंकज नगर कोटी, धीरज नगर कोटी, अमर सिंह नगर कोटी, दीपक।

नगर कोठी, पूजा नगर कोठी और यश ग्राम कनेड़ा बेरीनाग पिथौरागढ़ से ही निखिल रौतेला, सरस्वती रौतेला, राजेंद्र रौतेला, गुड़िया, पृथ्वीराज सिंह बाफीला, बसंती बाफीला, हर्ष बाफीला, ग्राम दौली कौली डीडीहाट पिथौरागढ़ से हैं जानकी देवी, माया खड़ायत, जयवर्धन, त्रिलोक सिंह, रेखा, साक्षी, कान्हा और उनके परिवार वाले। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से हैं जीवन सिंह सलाल और उनके ढेर सारे दोस्त। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं रंग फिल्म का गीत। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और कुमार सानू। समीर के बोलों को शुरू में पिरोया है नदीम श्रवण ने। सुकून के सिवा ये दिल कुछ और चाहता नहीं, सुकून के सिवा ये दिल कुछ और चाहता नहीं, और तुम्हारे बिना सुकून अब कहीं आता नहीं।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का साप्ताहिक कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। दोस्तों, यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हों तो लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम आपके अनुरोध पर, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी अल्मोड़ा, पिन कोड है 263601। हमारा ये कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार को रात्रि 9:30 से रात्रि 10 बजे तक प्रसारित होता है। अब कार्यक्रम में अगली पेशकश हमारे इन सभी दोस्तों की पसंद पर। तैलीबाग लखनऊ से हैं दुर्गा सिंह बिष्ट, चंपा बिष्ट, विक्रम बिष्ट, पुष्कर बिष्ट। गोपेश्वर चमोली से हैं प्रेमा रावत, नीरू रावत, जयपाल रावत, किशन नेगी और कीर्तिवर्धन नेगी। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। आप सभी दोस्तों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया जंगली फिल्म का गीत। गायिका हैं लता मंगेशकर। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, कि फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते।

आपके अनुरोध पर कार्यक्रम में जो गीत हम अब पेश करने जा रहे हैं उसे सुनना चाहते हैं। महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल। मंडलसेरा बागेश्वर से हैं प्रकाश कालाकोटी, हेमा कालाकोटी, नन्नू, प्रेमा परिहार और उनके परिवार वाले। टनकपुर से हैं सरिता बिष्ट और उनके दोस्त। इस गीत को सुनना चाहते हैं पौड़ी गढ़वाल से हमारे दोस्त ममता बिष्ट, प्रेमा बिष्ट, नितिन बिष्ट और उनकी दोस्त। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के युगल स्वरू में अप्रैल फूल फिल्म का गीत। शब्दकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। तुम्हारा इश्क मेरे लिए हवा जैसा है, तुम्हारा इश्क मेरे लिए हवा जैसा है, जरा सा कम हो तो सांसें रुकने लगती हैं।

आज के आपके अनुरोध पर कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश हम पेश कर रहे हैं हमारे दोस्त राजेश कुमार धन जी, राहुल कुमार धन जी, विशाल कुमार धन जी, शीला धन जी और गायत्री धन जी की पसंद पर, और ये इन्होंने हमें भेजा है अपना खत। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से इसी गीत को सुनना चाहते हैं चंपावत से हमारे दोस्त प्रकाश मेहरा और उनके परिवार वाले। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर और आशा भोंसले का गाया प्रोफेसर फिल्म का गीत। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीत शंकर जयकिशन का। एक पल को भी सुकून न हासिल हुआ वहां, एक पल को भी सुकून न हासिल हुआ वहां, शहरों से अच्छा गांव का छप्पर लगा मुझे।

लता मंगेशकर और आशा भोसले के गाए प्रोफेसर फिल्म के इसी गीत के साथ अपने दोस्त राजेंद्र खड़ायत को आज के आपके अनुरोध पर कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। अगले हफ्ते इसी समय और इन्हीं मीटर बैंड्स पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: अभी आप फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये साप्ताहिक कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए पेश है सुगम संगीत कार्यक्रम।
1: पेश कर रहा हूं

सुगम संगीत कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली की गाई इब्ने इंशा की ये गजल।

गुलाम अली की गाई इब्ने इंशा की इस गज़ल के बाद सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अहमद फराज का कलाम, फनकार हैं मेहदी हसन।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम। इस समय हमारा ये प्रसारण आकाशवाणी पिथौरागढ़ से मीडियम वेव 187.3 मीटर अर्थात 1602 KHz पर और FM 101.5 MHz पर आकाशवाणी बागेश्वर से भी रिले किया जा रहा है। सुगम संगीत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले का गाया ये गीत।

अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है राम तेरी गंगा मैली फिल्म से, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के गाए राम तेरी गंगा मैली फिल्म की इस गीत के बाद फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं जवानी दीवानी फिल्म का गीत किशोर कुमार और साथियों के स्वर में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

फिल्म संगीत में आपने सुना मुकेश का गाया संगम फिल्म का गीत। हसरत जयपुरी की बोल थे, धुन शंकर जी किशन की। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए येसुदास और चंद्रानी मुखर्जी के युगल स्वरों में कॉलेज गर्ल फिल्म का गीत। शब्द रचना भरत व्यास की है और धुन बनाई है बप्पी लहरी ने।

अलका याग्निक और कुमार सानू की गाई साजन चले ससुराल फिल्म के इस गीत के बाद फिल्म संगीत के समापन में हम आपको सुनवा रहे हैं। मोहब्बत इसको कहते हैं फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के युगल सरू में। मजरू सुल्तानपुरी की बोल हैं और खयाम की धुन।

आँखों की बुझा लूं तो चले जाएगा, कह दिए हो शुभ आलू।

0: मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गाए मोहब्बत इसको कहते हैं फिल्म की इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz पर यह आकाशवाणी अल्मोड़ा है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20

0: से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata.